0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सरिता पाठक यजुर्वेदी द्वारा गाया राग अलहैया बिलावल सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honor the veteran actor Anant Nag and Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film. The Best Actor honor is shared by Mamuti for Brahm Yugam and Kartik Aaryan for Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy earned the Best Direction for Amran, while Kalki 2898 ED was named Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment. Randeep Hooda won the Best Debut Director for Swatantraveer Savarkar. In the non-feature category, the Marathi film Bhangar was named Best Non-Feature Film, while director Anand L. Rai was selected for the Best Direction for Statue of Unity Ekta Ka Prateek. Raviraj Murmu took the Best Debut Director Non-Feature Category honor for the Santhali film Angan. With Chirag Buraniya from Ekta Nagar, Aparna Khont, Akashwani News, Ahmedabad.
3: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the 3rd National Conference of Anti-Narcotics Task Force NTF, ANTF, Heads of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme, United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of Narcotics Control 2026-2029. The Ministry of Home Affairs said during the event, Mr. Shah will release television commercials, TVCs, to spread awareness amongst people about drug abuse. It was informed that the Home Minister will also lay the foundation stones for the new complexes of Narcotics Control Bureau, NCB, zones in Lucknow and Dehradun. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. The commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The Commission is likely to apprise the Court of the need for more tribunals during the hearing. Karam Festival, a vibrant celebration of Jharkhand's rich tribal culture, nature and the bond between brother and sister, is being celebrated across the state today with traditional fervor and enthusiasm. Special cultural and state level programs are being organized across Jharkhand to mark the auspicious occasion. In women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games in Nishin, Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. IST. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. सुबह सवेरे की सभा में आप सभी का स्वागत है. स्वीकार कीजिए मेरा यानी सिमरन कौर का प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत का वंदना.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत का वंदना, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज चिंतन में सुनते हैं शब्दों के फूल।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता शब्दों के फूल। आलेख और प्रस्तुति है जसप्रीत कौर सेखों की। शब्दों के फूल नित खिलते हैं लेकर नया रूप, कार्यक्रम निर्माताओं के स्पर्श से महके, ध्वनि तरंगों पर से लपके, हर दिशा में सहज सज जाएं, श्रोताओं का मन चहकाएं। शब्दों के फूलों से आकाशवाणी दशकों से श्रोताओं के जीवन को महका रही है। बहुत अच्छा लगता है ना, जब आकाशवाणी से किसी मधुर आवाज में, खूबसूरत अंदाज में प्यार भरे शब्द हमारे कानों तक पहुंचते हैं। आकाशवाणी के इतिहास में बहुत सारी बुलंद आवाजें रही हैं, जिनकी गूंज और महक आज तक बनी हुई है। बरस दर बरस आवाजें बदलती रही, लेकिन आकाशवाणी की बगिया में बहार सदैव बनी रही। शब्द भी हमारे जीवन में बहार लाते हैं। हमारे शब्द किसी को सुकून दे सकते हैं, किसी का हौसला बुलंद कर सकते हैं, किसी की पीड़ा कम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे शब्द दिल से निकले हों, सच्चे हों। बिना सच्चाई के कहे शब्द तो कृत्रिम फूलों जैसे होते हैं, खूबसूरत लेकिन बिना महक के। शब्द जीवन में बहार ला सकते हैं तो तूफान भी। कुरूप शब्दों के कारण ही रोज कितने रिश्ते टूटते हैं, बिखर जाते हैं। कभी कभी घाव इतना गहरा होता है कि खेद प्रकट करने वाले शब्द भी घाव को भर नहीं पाते। जीवन में सदैव बहार बनी रहे, इसके लिए तो हमेशा शब्दों के फूल खिलाने पड़ेंगे। फूल की कोमलता में ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह हिंसा से नहीं, प्रेम से जीतता है। मदर टेरेसा ने कहा था, दया से भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, लेकिन इनकी गूंज कालजयी होती है। भगवान ने हमें इन कोमल लेकिन शक्तिशाली फूलों की सौगात दी है। श्री औरोबिंदो ने कहा था, फूल ब्रह्मा की मुस्कान है। फूलों की खूबसूरती ही नहीं, विनम्रता भी देखते ही बनती है। फूल बड़ी विनम्रता और सहजता से हर मौके के अनुकूल हो जाते हैं।

0: सुंदरता के लिए, खुशियां मनाने के लिए, माहौल को सजाने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, स्वागत करने के लिए, हर मौके के लिए वही फूल अनुकूल होते हैं। फूल की क्षण भंगुरता में काल जयिता छिपी है। फूलों की खूबसूरती हमारी कल्पना में स्थापित रहती है, उसकी महक हमारे एहसासों में कैद रहती है। फूल यह शब्द सुनते ही हमारे मन और एहसासों में सकारात्मकता और जीवंतता की रिमझिम बारिश होने लगती है। फूलों की सुंदरता दृष्टि का सुख नहीं, वह आत्मा का सौंदर्य भी जगाती है। फूल शब्द तो पर्याय है खूबसूरती का, मधुरता का, महक का, रंगों का, समर्पण का, त्याग का। फूलों रहित प्रकृति की कल्पना करना ही भयभीत करता है। परमात्मा ने मानव को फूलों की सौगात दी है। परमात्मा को प्रतिदान के रूप में मानव भी फूल खिला सकता है। शब्दों के फूल, विचारों के फूल, रिश्तों के फूल, एहसासों के फूल। शब्द, विचार, रिश्ते, एहसास तो फिर खूबसूरत ही होंगे, क्योंकि हम उनसे फूल खिला रहे हैं। शब्दों के फूल खिलाने का वायदा आकाशवाणी ने अपने अस्तित्व लेते ही अपने श्रोताओं से कर दिया था। मैं आकाशवाणी हूँ, शब्दों के फूलों की बगिया हूँ, सदैव खिलती रहूंगी और आपके जीवन को खिलाती रहूंगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस अयोध्या कांड 56।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानी की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोक से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: परिष्कारं समेत्य स्वकीय दृष्टेः परस्परं विनिमयं कृतवन्तौ। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः शुल्क मुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पेभ्यः तथा हस्ततन्तु शिल्पकारेभ्यश्च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एशिया क्रीडासु भारतस्य क्रीडकैः ह्यः जापान देशस्य आइची नागोया नगरे 6 पदकानि विजितानि, येषु 4 रजतपदकानि, 2 च कांस्य पदके स्तः। पुरुषाणां 10 मीटर मितायां एयर राइफल स्पर्धायां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजत पदकं विजितं, रुद्रांक्ष पाटिलेन च कांस्य पदकं प्राप्तम्। अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दल स्पर्धायामपि भारतेन रजत पदकं प्राप्तम्। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 किलोग्राम मिते वर्गे कांस्य पदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुरूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची

0: विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in India cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema, as part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting. The awards are being held outside the national capital. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। आकाशवाणी दिल्ली का यह इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है आपकी पसंद यानी कि आपकी फरमाइश का, और साथ में आपके फरमाइश के साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और आपकी यही तो फरमाइश है कि आपके मनपसंद गीत हम लेकर आएं। और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या खोज रहे हैं? खुशी, आनंद हम सदियों से तलाश कर रहे हैं और ये अभी तक हमें नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर खुद है और हमें इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है।

दोस्तों, हंसी सिर्फ हमारी चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि मन को भी हल्का करती है। जब हम खुल के हंसते हैं तो तनाव कम होता है और हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराती रहिए।

तो इसीलिए ज़िंदगी को इन गंभीरता से लेने के लिए बातों के लिए छोड़ दीजिए, बच्चों की तरह खेल खिलाइए, दोस्तों के तहत हंसी, अपनी पसंद का संगीत सुनिए और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं।

क्यों है? क्यों बताइए, क्यों है? क्योंकि आप मुस्कुराते नहीं, इसीलिए है। आप सुन रहे हैं गीता भरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ। अब बात करते हैं कुछ मुस्कुराहट की। जब मुस्कुराहट की बात जब हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि जब आप रास्ते में किसी अनजान इंसान से मिलें, उसे देखकर हल्के से मुस्कान दीजिए। हो सकता है वो इंसान किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है उसे कई दिनों से मुस्कुराया ही ना हो उसने, तो इसीलिए आपकी छोटी सी मुस्कुराहट शायद उसके उन्हें उस दिन को खूबसूरत और भी ज्यादा बना दे।

दोस्तों, कभी आपने सोचा मुस्कुराहट छोटी सी प्यारी सी अगर आपके चेहरे पर हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि इसके कुछ पैसे नहीं लगते। लेकिन हाँ, प्यार में लड़ाई झगड़े, थोड़ी थोड़ी बातें, ये तो सब होती ही रहती हैं। कभी हंसते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन हंसी हंसी होती है, मुस्कुराहट मुस्कुराहट होती है। और कहते हैं ना कि हम जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां तो ढूंढते रहते हैं, महंगे तोहफे, बड़ी सफलता, बहुत सारा पैसा, लेकिन कभी कभी छोटी सी खुशी सिर्फ एक मुस्कुराहट से आने से ही, यानी कि चेहरे पर अगर सजी हो तो फिर आपके सब गमों को दूर कर देती है।

बात तो ठीक है कि हंसाना और रुलाना तो चलता ही रहता है, लेकिन देखिए ना, एक छोटा सा काम कीजिए अगले कुछ समय के लिए, यानी कि मतलब मुस्कुराने से है। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी भी हो, फिर भी मुस्कुराइए और अपने फ़ोन को एक तरफ रखिए, गहरी सांस लीजिए और बस मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए, क्योंकि पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कुराहट किसी के दिल तक मुफ्त में पहुंच जाती है। तो फिर देर किस बात की, बस मुस्कुरा दीजिए।

आप यूं ही सुनते रहिए हमें, खास तौर पर गीतों भरी कुटपानी के साथ। और फिर कभी आगे मैं ऐसे ही खूबसूरत सी गीतों भरी कुटपानी लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ पर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
4: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्य

0: बिल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
5: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
6: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाएगी।
5: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
7: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दूषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
5: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
8: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की डाली स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने के जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सोरे घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू प्रेजेंट 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट एकता नगर इन केवाड़िया दिस इवनिंग। Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The President will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report.
11: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: said, the regular meetings and telecons enable both countries to maintain the momentum of special global strategic partnership. He said that during the meeting, regional and global issues, specifically the Ukraine and Gulf crisis, were discussed. Both the leaders also exchanged views on multilateral issues, including the reform of UN Security Council. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh has requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, a new front in the wider war that began with US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Britain and Saudi Arabia have been close military allies for decades, with Britain serving as one of the kingdom's largest arms suppliers. Earlier this year, Britain deployed its Sky Sabre air defense system to Saudi Arabia to help protect it from Iranian missile attacks during the US-Israeli conflict with Iran. In Bihar's Jamui district, police have detained three accused in connection with an incident involving the alleged molestation and indecent behavior with a minor girl student. We have a report.
1: Jamui Superintendent of Police Vishwajit Dayal said that an FIR has been registered under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sahita and the POKSO after a detailed investigation of the viral video. He said that a special investigation team constituted under the leadership of Sub-Divisional Police Officer Deepti Monali is conducting raids to arrest other absconding accused. He added that the action is also being taken to remove the uploaded video from the social media platforms.
2: अभी तक जो है वीडियो के आधार पर के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सभी जो है मड़वा गांव है, यहीं पे जमुई थाना क्षेत्र में वहीं के लोग हैं।
1: स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड जमुई एमएलए श्रेयसी सिंह हैज आल्सो कंडेम्ड द इंसिडेंट। शी सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन इन द मैटर।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं, जो आज भी खुला घूम रहे हैं, उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी न्यूज, पटना।
0: करम फेस्टिवल, अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ झारखंड्स रिच ट्राइबल कल्चर, नेचर एंड द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट टुडे विद ट्रेडिशनल फेवर एंड एंथुजियाज्म। स्पेशल कल्चरल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस झारखंड टू मार्क द ऑस्पिशियस ओकेजन। हियर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: Karam Festival, one of the most significant celebrations of Jharkhand's folk culture and nature worship, is being celebrated across the state today with great enthusiasm. Governor Santosh Kumar Gangwar attended the program on the eve of Karam Festival, organized in Bero Ranchi, as the chief guest and extended his greetings to the people of the state. He also delivered a message on nature conservation. Yesterday, a seminar cum cultural program was organized at Audrey House in Ranchi, where the entire premises came alive with Jharkhand's cultural spirit to the beats of drums, nagadas and mandar, accompanied by traditional Karam songs. A program was also organized yesterday evening at the Deekshant Mandap in Morabadi, where a tribal fashion show was the main attraction. Karam Festival is considered a symbol of crop protection, respect for nature and the enduring bond between brothers and sisters. On this occasion, sisters observe a Nirjala fast, praying for the well-being and long life of their brothers. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: On to sports now. In women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games in Nice in Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. IST. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. Sri Lanka had secured their place in the title clash with a win over Pakistan. A deep depression over the West Central Bay of Bengal is likely to intensify further into a very deep depression during the next 24 hours and move west-northwestwards. The Alipur Met Office said the system is likely to cross the coast between Vishakhapatnam and Gopalpur later tonight or by Wednesday morning. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
5: Thank you, Saira. The Hindu headlines, India-New Zealand FTA to come into effect on October 20. In the Sun Times headlines, Delhi court revives complaint against Sonia in voter list case, while the Pioneer says Sonia voter roll row broke probe revived. The Indian Express informs IIT Bombay removes professor named in student suicide from dean post, while Hindustan Times says IIT Bombay suspends dean as student stir rages. The Times of India notes grounds in writing a must during arrest even in UAPA, says Supreme Court. The newspaper also writes swept away elephant calf saved by fishermen, adding that the newborn elephant calf had nothing left above water but its trunk. And finally, the Pioneer says, keep faith, drop cruelty. Delhi urges temples to swap live jumbos for mechanical ones. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड्स सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं। इत्तलात नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड्स दिए जाने की ये तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंतनाग को 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
7: तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है, क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सिनेमा के इस अजीमशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्म साजों और तकनीकी माहिरीन ने तकरीब का पहुंचना शुरू कर दिया है। ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है। फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है। बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है। राजकुमार पेरास्वामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि काल्कि 2898 एडी को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रिया वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता। रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया। एकता नगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
6: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جناب امیت شاہ لکھنؤ اور دہرادون میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو کے زون کے نئے کمپلیکسز کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
8: یہ دو روزہ کانفرنس متحدہ عزم اور مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی ہے اور اس میں منشیات مخالف ٹاسک فورسز کو سونپے گئے مقاصد کی پیش رفت اور ملک میں منشیات کی سمگلنگ اور اس کے بے جا استعمال کی لعنت سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب امیت شاہ اس موقع پر منشیات کی لعنت کے خلاف

0: इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्सेस के सरबरा शिरकत करेंगे। इस तबादले ख्याल से इसमें शिरकत करने वाली रियासतों, महकमों और एजेंसियों को अगले 3 साल में पूरे मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग से मौसर अंदाज से निमटने की समत नए अहद के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: इंतखाबी कमीशन मगरबी बंगाल में ट्राइब्यूनल की तादाद में इजाफा करने का इरादा रखता है ताकि उन अफराद की दरखास्तों पर तेजी के साथ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके जिनके नाम SIR अमल के दौरान वोटर फहरिस्तों में शामिल नहीं किए गए हैं। रियासत में फिलहाल 19 ट्राइब्यूनल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि उम्मीद है कि इंतखाबी कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में अपने इस मौकिफ को पेश करेगा कि रियासत में हर लोकसभा हलके के लिए एक ट्राइब्यूनल मुकर्रर करके इनकी तादाद बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी से मुतालिक 13 दरखास्तों की समाअत होनी है। उम्मीद है कि चुनाव कमीशन समाअत के दौरान अदालत आलिया को मजीद ट्राइब्यूनल की जरूरत से वाकिफ कराएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि कुदरती खेती के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत और दुनिया भर में सिक्किम न सिर्फ अपनी खूबसूरत झीलों और बर्फीली पहाड़ों के लिए बल्कि अपने बड़े पैमाने पर ज़रई पैदावार के लिए भी मशहूर है। साल 2016 में सिक्किम को पहली नामियाती रियासत करार दिया गया था। सिक्किम बड़ी इलायची, अदरक, बकवीट वगैरह के लिए मशहूर है। यहाँ बड़ी इलायची की तकरीबन 90% पैदावार होती है जो ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक में बरामद की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सिक्किम में कुदरती काश्त के लिए के सिलसिले में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में सिक्किम का दौरा किया था और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
2: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा बकवीट की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। ये रियासत की तीसरी सबसे बड़ी फसल और दूसरी सबसे आम अनाज की फसल है जिसे GI सर्टिफिकेशन हासिल है। गैंगटॉक से मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा SJ शंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कल रात फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के लिए भारतीय वफ्द की सरबराही करते हुए इतवार को न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के पोडियम से उमूमी बहस के दौरान आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। फ्रांस के वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाकायदगी से मीटिंगों और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों को खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी की रफ्तार बरकरार रखने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर, खासतौर पर यूक्रेन और खलीज के बहरान पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात समेत कसीर रुखी मामलात पर भी बातचीत की। बरतानिया ने ईरान की पुष्टपनाही वाले हौसियों के हमले से निमटने की खातिर सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तफाक किया है। हौसी यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। सऊदी अरब ने उनकी तरफ से हमलों में इजाफे के बाद बरतानिया से मदद तलब की थी। इस साल फरवरी में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से जारी जंग के दौरान ये एक नई महाजराई है। आने वाले दिनों में बरतानिया फजा में ही लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने की खातिर एक वॉयजर तैयारा तैनात करेगा। برطانیہ اور سعودی عرب دہائیوں سے قریبی فوجی اتحادی رہے ہیں اور برطانیہ سعودی عرب کو

0: हथियार सप्लाई करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक नाबालिग तालिबा के साथ मुबैना छेड़छाड़ और नाशाइस्ता बर्ताव के एक वाकये के सिलसिले में 3 मुलजिमों को हिरासत में लिया है। दीगर मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जमुई के पुलिस सुपरिटेंडेंट विश्वजीत दयाल ने बताया है कि वायरल वीडियो की तफसीली छानबीन के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: इधर बिहार के खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन अप्सरा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन की एक टीम बहुत जल्द मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी।
3: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की है, और भी गिरफ्तारी हो जाएगी और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
1: खेलों के महकमे की वजीर और जमुई की मेंबर असेंबली श्रेयासी सिंह ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि इंतजामिया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हूँ और ये चाहती भी हूँ कि आगे भी इस गति में कोई कमी ना आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
1: पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: झारखंड में करम त्यौहार आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर झारखंड की कबायली सकाफत और फितरत का जश्न मनाया जाता है और भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर झारखंड में खसूसी सकाफती और रियासती सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: करम त्यौहार आज रियासत भर में पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार झारखंड की लोक सकाफत का जश्न होता है और इस त्यौहार पर फितरत की पूजा की जाती है। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने करम त्यौहार के मौके पर रांची के बेरो में एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और रियासत के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत सोने के तमगे के लिए फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 शुरू होगा। भारतीय खवातीन की टीम बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत ने कल मुख्तलिफ जुमरों में चांदी के 4 और कांसे के 2 तमगों समेत 6 तमगे जीते। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का तमगा जीता, जबकि रुद्रांश पाटिल को कांसे का तमगा मिला। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
6: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने तजारत व सनअत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदा ATF 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, PM सूर्य घर स्कीम के लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। रियासतों की इंसदाद मनशियात टास्क फोर्स के सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज वजीर दाखला अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। अखबार इंकलाब ने केरलम में तोदे गिरने से 9 अफराद की हलाकत की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क की कई रियासतों में आंधी तूफान व बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की खबर भी अखबारात में नुमाया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس

0: इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान के पुश्तपनाही वाले हौसियों के हमलों से निमटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तफाक कर लिया है। और ख्वातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। इसके अंतर्गत सुनते हैं विदुषी उमा कर्क का गाया राग वैरागी। तबले पर संगति है दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर है प्रमिता मुखर्जी और सारंगी पर है एहसान अली।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आपने सुना विदुषी उमा गर्ग का गाया राग बैरागी। तबले पर संगत दी थी दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर थी प्रमोता मुखर्जी और सारंगी पर एहसान।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और दोस्तों आपको बताते हैं 10:10 पे आप सुन पाएंगे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपकी पसंद। इसमें आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आपके पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2026 को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत भारतीय मानक समय को देश भर के सभी कानूनी, प्रशासनिक और कमर्शियल कामों के लिए एकमात्र आधिकारिक टाइम रेफरेंस बना दिया गया है। इस वन नेशन वन टाइम के मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस किस तरह के क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, इसके लिए जो तकनीकी और फैसिलिटी कार्यान्वयन किस तरह के किए जाएंगे, इस सब को लेकर के विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं CSIR के नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान, वहां की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम अरोड़ा। पूनम अरोड़ा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले ये जो अभी अधिसूचना जारी की गई है समय को लेकर के, एक देश एक समय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
3: जैसा कि आपने कहा कि हम भारत का माप विज्ञान केंद्र हैं, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतरराष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है हमारी जो स्पेस एजेंसी है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफ कोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
2: निश्चित रूप से, और इससे शायद जो मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जानकारियां होती है, या इसरो जब

0: सेटेलाइट छोड़ना चाहता है या कुछ आकलन करना चाहता है, उसमें भी कुछ फायदा और हो सकता है।
1: इसरो पहले से ही जुड़ा हुआ है, अब और बाकी क्रिटिकल सेक्टर्स भी अगर जुड़ जाएंगे और इसी समय को सब लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों ही बेटर होगा।
0: एक है, चूंकि अधिसूचना जारी हुई है तो इसकी क्या कोई समय सीमा तय की गई है इसे लागू करने की, तो ये क्या है? और दूसरा है कि अगर कोई अधिसूचना के विरुद्ध कोई संस्था या व्यक्ति कार्य करता है, क्या उसमें कुछ जुर्माना या सजा का भी प्रावधान किया गया है? कुछ इस तरह की बात है इसमें?
1: एक तो अधिसूचना में ही लिखा गया है कि 180 दिन का समय दिया जा रहा है। ये इसीलिए है ताकि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो अपने आप को इससे अवगत करा पाएं, इसमें क्या प्रावधान है उनसे अवगत करा पाएं, और फिर उनको जो भी जरूरतें हैं, जिस एक्यूरेसी से जिसको समय चाहिए, तो उसका वो प्रावधान कर पाए कि मुझे इस टेक्नोलॉजी से समय लेना है, मुझे अपने कंप्यूटर को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, ये मुझे अपने पूरे सिस्टम को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए 180 दिन का समय दिया गया है। अब बात आती है कि इसके लिए जुर्माना क्या होगा। तो हम जो सीएसआर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, हमारा काम है स्टैंडर्ड बनाना, तो हम समय को निर्धारित करते हैं, हम समय को संजो के रखते हैं, इंटरनेशनल टाइम से हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम एनफोर्समेंट जो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये उनके अधीन आता है ये कार्य। तो निश्चित तौर पर जब ये गाइडलाइन बनाई जाती है तो इसके बाद उसका भी प्रावधान किया जाएगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाए, तो उसके लिए ऑडिट भी होंगे एंड उसके प्रावधान भी लाए जाएंगे।
0: अंत में जानना चाहेंगे कि एक जब टाइम जोन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इससे पहले कुछ इस पर जो है तकनीकी कार्यान्वयन या प्रैक्टिस की गई होगी, तो वो किस तरह का था? खास करके जो बेंगलुरु फैसिलिटी और तकनीकी जो कार्यान्वयन है, जैसे चर्चा आई है कि एक व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी या NAVIC का उपयोग, तो इसको लागू करने से पहले वहाँ पे ये चीज की गई थी, मतलब इस पर एक वर्कशॉप या कुछ पूरे जो कार्य किए गए थे, तो उसमें क्या आप लोग, आपकी संस्था जुड़ी हुई थी?
1: जी, अब हर एप्लीकेशन या हर सेक्टर की एक अलग जरूरत है। कुछ लोग मिली सेकेंड एक्यूरेसी से भी काम कर सकते हैं और कुछ लोगों को नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, जैसे कि हमारा जो स्पेस एजेंसी है उसको नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हमसे समय लेते हैं। आम जनता मिली सेकेंड में काम कर सकती है तो वो इंटरनेट के थ्रू भी ले सकती है। अब कुछ और क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, क्योंकि आप जब समय ले रहे हैं सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं, अगर सैटेलाइट में कुछ बाधा आ गई उसके सिग्नल में तो आपका लिंक रुक जाएगा। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी लें तो जो क्रिटिकल सेक्टर है उनके लिए ये ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो टाइम देना और उससे हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, तो ये अभी के लिए जैसे हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क बनाया गया और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया और ये बताया गया कि हाँ ये संभव है और ये अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और अभी ये है कि आगे आने वाले समय में हम इस नेटवर्क को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं जिन सेक्टर्स की जरूरत है उनके लिए स्पेशली, बिकॉज इतना आसान नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर आपको जो डेडिकेटेड लिंक चाहिए वो बहुत महंगा भी पड़ता है। सो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो अलग अलग माध्यमों से टाइम लेना चाहेंगे ताकि एक माध्यम में कुछ रुकावट आती है तो दूसरा माध्यम से टाइम मिलता रहेगा, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरत होगा।
0: स्टैंडबाय अरेंजमेंट्स रखना
1: पड़ेगा। जी जी जी।
0: इसके लिए कुछ और लैब्स भी बनाए जाएंगे, क्योंकि CSIR NPL है तो सबसे उनको जुड़ना पड़ेगा अगर देश के विभिन्न भागों में इस कार्य के लिए अलग अलग लैब बनाए जाते हैं।
1: तो ये अलग अलग लैब ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये जरूरत जब महसूस हुई कि हमें समय को एक लीगल स्टेटस देना है तो उससे पहले हमें ये भी निर्धारित करना है कि समय सब तक पहुंच पाए। अब सिर्फ अगर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली से ही सिर्फ समय का प्रसारण होगा तो शायद उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और इसरो और NPL ने मिलकर के ये कार्य शुरू किया और 5 लैब्स में ऑलरेडी हमने सेकेंडरी टाइम स्केल्स लगा दिए हैं और जो कि हमारे भारतीय मानक समय से ही जुड़े हुए हैं, ट्रेसेबल हैं। तो अब ये जो 5 लैब्स हैं जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फरीदाबाद में बनाए गए हैं और जो भारतीय मानक समय से जुड़े हुए हैं, यहां से भी अब समय का प्रसारण किया जा सकेगा। तो हमने जो समय की उपलब्धता पहले और ज्यादा सुनिश्चित की है और वो भी अलग अलग जगह से, सिर्फ एक ही जगह से ना रहे, लोगों के पास माध्यम रहे कि हम अलग जगह से भी ले सकते हैं और अगर एक जगह कुछ समस्या आती है तो दूसरी जगह से टाइम मिलता रहेगा। तो आप पहले उसको एनफोर्स करने से पहले आप ये तो करेंगे कि सब लोगों के पास उपलब्धता हो समय की, उसके लिए ये कार्य किया गया,
0: ये सारी फैसिलिटी पहले तैयार की गई निश्चित रूप से। और हमें याद है कि पहले हम लोगों का जो समाचार सेवा प्रभाग समाचार देता था तो उससे पहले 6 बीप आते थे 6 सेकंड के और उनकी घड़ियां जो है वो आपके प्रयोगशाला के एटमिक घड़ी से जुड़ी हुई होती थी। अब बचपन से हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो निर्धारण करता है हमारे जो वेट का करता है, टाइम का करता है, साथ ही हमारे मीटर जो लेंथ का भी करता है। इसके साथ बाद में आपकी संस्था ने बहुत सारे केल्विन और वो सबका करंट एम्पियर सबका भी कुछ साल पहले किया है। निश्चित रूप से ये वन नेशन वन टाइम, इसका उद्देश्य जैसा कि आपने बताया कि ये कोई नया टाइम जोन बनाना नहीं है बल्कि देश के

0: डिजिटल और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में समय की सटीक और एक समान सिंक्रोनाइजेशन व्यवस्था को लागू करना है। इसके जरिए विदेशी जीपीएस टाइम सोर्स पर निर्भरता भी कम होगी और देश की डिजिटल संप्रभुता व सुरक्षा मजबूत होगी। डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने वन नेशन वन टाइम, इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है, इससे जो आने वाले लाभ है, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं रूपाली गायकवाड़ आज आपके साथ स्थिरता और हरित क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनर्जी यानी ऊर्जा ने दुनिया भर में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। 19वीं सदी के मध्य से हाइड्रोकार्बन ईंधन ने औद्योगिक क्रांति की रफ्तार को तेज किया है। हालांकि इनके साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आई। कोयला और गैस एनर्जी के सबसे सस्ते पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जहरीले वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और हमारे वायुमंडल की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास सीधे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा है। अगर इन पर सही समय ध्यान न दिया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन की जगह लेने के लिए ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता विकल्प है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है बल्कि ऊर्जा की लागत और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। आज हरित उद्योग टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इसके लिए हरित उद्योग के प्रति हमारे नजरिए में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालते हुए इंसानों की भलाई को बेहतर बनाती है। इंसानी तरक्की को औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में वापस तो नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार विकास के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हमारा मुख्य मकसद कई तरह के साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों के साथ देश में टिकाऊ विकास करना है। हरित उद्योग को ऐसे आर्थिक विकास की तलाश करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसका समाधान है सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करना, साथ ही मौजूदा संसाधनों को ज्यादा कुशल बनाना और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करना जिनसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिन्ह कम हो, ऊर्जा की बचत हो और कचरा कम निकले। इसके अलावा समाधान प्राकृतिक सामग्रियों को अपनाने और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग के लिए क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन बनाने में भी है। औद्योगिक क्षेत्र में टिकाऊपन की ओर बदलाव भारत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने वाला ग्रीन सीमेंट क्लिंकर यानी धातुमल उत्सर्जन को कम कर रहा है। सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और उसे अनिवार्य बना रही है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ग्रीन हाइड्रोजन और बायोब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य बना रहा है। सरकार ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। रीस्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाने में कर्मचारियों को एनर्जी मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के तरीकों और डिजिटल तरीके से वेस्ट कम करने का प्रशिक्षण देना शामिल है। इन प्रोग्राम्स का मकसद टेक्निकल और सिस्टम्स की समझ से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाना है ताकि कर्मचारी कम कार्बन उत्सर्जन वाली मशीनें चला सके, सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर सके और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन कर सके। रणनीतिक स्तर पर यूएन 2035 तक उत्सर्जन में 55% की कटौती करने और 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने का समर्थन करता है। पेरिस समझौते का नेट जीरो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। 130 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो लक्ष्य अपनाए हैं जिन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर हासिल किया जाना है। इस रणनीति की सहायता करने के लिए नई नेट जीरो टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का प्रकल्प किया है। तब तक भारत में ज्यादातर आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका होगा। एक अहम पड़ाव के तौर पर भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया जा सके। इसके लिए जिन क्षेत्रों पर काम करने की योजना है उनमें कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, कार्बन हटाने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल करना और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए प्रयास करना शामिल है।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: और आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज के इस प्रोग्राम च असी सुनांगे कविता पाठ ते इस तों इलावा कुछ गीत भी सुनाए जाणगे। अज असी गल करांगे कौमांतरी संकेतक भाषा दिहाड़े दी जो पूरे विश्व च 23 सितंबर नूं मनाया जांदा है। असी अक्सर ही अपने मन दीआं भावनावां ते जज्बातां नूं बयान करन दे लई किसी भाषा का इस्तेमाल करदे हां। एक दूजे दे नाल गलबात करन लई भाषा संचार दा सब तो वधिया साधन है। हर सूबे दी अपनी भाषा हुंदी है, जिवें मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, भोजपुरी। पर जो लोग सुन जां बोल नहीं सकते वह अपने भावां नूं इशारियां नाल प्रगट करदे ने, जिस नूं संकेतक भाषा कहा जांदा है। जो व्यक्ति सुन जां बोल नहीं सकते उन्हां लई संकेतक भाषा संचार दा सब तो वधिया जरिया है। इह उन्हां व्यक्तियां नूं देश ते विश्व मुख धारा दे नाल जोड़दी है। संकेतक भाषा ज़्यादा औखी नहीं ते इस दी शब्दावली भी सीमित हुंदी है। बस सिखाउण वाला अध्यापक पेशेवर होना चाहीदा है। संकेतक भाषा दी गल कीती जावे तां पहली वार 16वीं सदी च स्पैनिश पेड्रो पोंस डी लियोन नामक व्यक्ति ने अपाहज लोगों लई संकेतक भाषा बनाई सी। इस तो बाद बोले लोगों भाव जो सुनने तो असमर्थ सन उन्होंने इस भाषा की वरतों करनी शुरू कर दिती ते अपने विचारां दा आदान प्रदान किया। वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ डैफ के मुताबिक विश्व भर च 70 मिलियन तो ज़्यादा लोग सुन नहीं सकते। तकरीबन 300 तो वध किस्म दीआं भाषावां दी वरतों की जाती है। हर व्यक्ति अपने दिल दे जज्बात नूं गलबात राहीं प्रगट करदा है। अंतरराष्ट्री संकेतक भाषा दिहाड़ा सानूं इह वी याद दिवाउंदा है कि गलबात करना हर इंसान दा बुनियादी हक है। दिल दीआं भावनावां जिवें प्यार स्नेह नूं बयान करन दे लई शब्दां च परोणा ते फिर हर एक नूं झूमण ला देना, इह वी भाषा दी ही ताकत है। ते गायक हरजीत हरमन इश्क दी मर्ज़ ला के उसनों किस तरह बयान कर रहे ने, आओ सुनते हैं इस गीत च। नी मैं दिल मर जाने नू अड़ियो मर्ज़ इश्क दी ला ली, जिदे बोल लिखे ने प्रगट सिंह ने ते संगीत बद कीता है अतुल शर्मा ने।

0: कि संकेतक भाषा बिना अजिहे लोग समाज च अपने आप नूं अधूरे समझते ने ते ओह होरां लोकां नालों अपने आप नूं घट समझते ने। संकेतक भाषा सीखण दे नाल बोलण ते सुनण तों असमर्थ लोकां च बराबरता ते समानता ते जीवन पद्धर नूं उच्चा चुकण लई रुजगार दे मौके मिलते ने। मन दीआं भावनावां नूं उजागर करना भाषा तों बेहतर कोई साधन नहीं ते भावें ओह संकेतक भाषा ही क्यों ना होवे, क्योंकि सारिआं नूं अपनी गल कहण ते रखण दा अधिकार है। ते जगतार सिंह अपने कविता पाठ राहीं सानू की सिक्ख्या दे रहे ने, आओ सुनदे हाँ कविता पाठ च।
1: मेरी पहली कविता है बदली। अंबर तुरद्यां तुरद्यां, अंबर तुरद्यां तुरद्यां, आ ठहरी हाँ हुने हुने तेरी हरी भरी बुकल सौन लई, पर नींद किथे नसीब इस देही नूं, तू देखदा रही हर खिन मेरा बदलदा शरीर। बुलियां संग तुरद्या ठहरद्या एक कुर कुर पानी हो जावेगी, बुलियां संग तुरद्या ठहरद्या एक खुर खुर पानी हो जावेगी, अनेक अनेक बूंदा का रूप लै हरे पत्तियां नूं प्यार दिया, कुछ मिट्टी च रल जाणगियां, कुछ धार का हिस्सा बन तुर पैणगियां उस दिशा वल जिथे मेरा जन्म होया सी, जिथे मेरा जन्म होया सी। इस कविता का सिरलेख है मोर। आपे मटक मटक के तुरिए, चित हुलार जद खावे, आपे मटक मटक के तुरिए, चित हुलार जद जद खावे, उड़िए कदे आसमाना वल कदे धरा ते पहला पाइए, अपनी मौज विच आपे हसीए आपे रोइए आपे नच नच चुप कर जाइए। इसका सिरलेख है पत्थर। प्यार रहन दिंदा पत्थरां नूं, प्यार रहन दिंदा पत्थर नूं पत्थरां नाल, जिवें दा सी उवें ही जे सुत्ता सी सुत्ता रहन दिंदा, उसनूं जगाया तां देख लो, उसनूं जगाया तां देख लो, आदम ने आदम विचाले लकीर खिच दित्ती, अखां सामने विशे राहां दे रंग लाल कर दित्ते। इस कविता दा सिरलेख बदल। लिखियाकार इबारत मेरे वांग, लिखियाकार इबारत मेरे वांग, अनंत फैले आसमान ते गुआचिया रहिंदा ऐ लभदा रहिंदा ऐ, कदे कागज़ कदे कलम ते दवात मेरे वांग होंद विचा, चल पै जिथे जिधर आसमान मेरे वांग होंद विचा, चल पै जिथे जिधर आसमान तुरद्या तुरद्या अखर बना, लगा मात्रा सत्रां बना किसे दी पकड़ चाहन तो पहला, किसे दी पकड़ चाहन तो पहला, बना बन के विसर जा देखन वाला कोई देखे या ना, पढ़न वाला कोई पढ़े या ना, तू हो सिर्फ हो के बिनस जा, तू हो सिर्फ हो के बिनस जा। इसका सिरलेख भी बदल है। एक नार ने पौड़ियां चढ़ के जा बदल नू फड़िया, पानी भरे नू कपड़े वांग पकड़ के टुंग दिता तनी तार ते, अपने साथी नू दूरों अपने साथी नू दूरों तार ते टंगिया देख

गायक हरजीत हरमंदी आवाज एक गीत तुसी सुन रहे सी। गीत बोल लिखे सन प्रगट सिंह ने ते संगीत बद कीता सी अतुल शर्मा ने। इस गीत नूं सुन तो पहला असी गल कर रहे सी कुमांतरी संकेतक भाषा दिहाड़े दी। इस दिवस नूं मनाउण दा उद्देश ये भी है कि जो व्यक्ति बोलन ते सुन तो असमर्थ ने उन्हां दे अधिकारां दी रक्षा करना ते संकेतक भाषा प्रति आम लोगों को जागरूक करना है।

0: बदलते बदल चढ़ आया, गरज लिशक के चुड़ा साथी नू अपने नाल लेके तुर गए, अपने नाल लेके तुर गए। इस कविता का सिरलेख भी बदल ही है, तुरे फिरदे हो जिधर चित करे, तुरे फिरदे हो जिधर चित करे, सारा अंबर थोड़ा है, अजब गजब रूप तार, अजब गजब रूप तार, बेरोक हर राहों गुजर जाओ, जमीन दी खलकत तो दूर, उना दे दुखां सुखां तो दूर। ठीक कहंदे हो कहन वालियो, ठीक कहंदे हो कहन वालियो, अपनी पटकन असी ही जानिए, किथे जमिए किथों तुरके, किथे किथे जा वरिए, जानिया असी ना हले तीकर, जानिया असी ना हले तीकर, ना ही सानू देखन वालिया। इस कविता का सिरलेख है तेरे हिस्से दी, तेरे हिस्से दी जमीन किथे, तेरे हिस्से दा सूरज किथे, पौन पानी बरसात किथे, एवें होन दा दंभ लै, एवें ही होन दा दंभ लै, गलियां सड़कां पहाड़ां नू मिलदा है, किसे कोल तेरे होन दा ना परिवार दा सिरनामा किथे, जद तक हैं अपने कोल रह, जद तक हैं अपने कोल रह, अपने धड़ ते अपना सिर रख, जितों भी गुजरे जद भी गुजरे अपने होन दा ख्याल रख के गुजर। एक कविता है गुलाब। रड़े मैदान विच खिड़े गुलाब ने, रड़े मैदान विच खिड़े गुलाब ने, उच्चा हथ कर उड़े जांदे बदल नू जरा कु रोक के कहा, मेरे कोल खुशबो है, मेरे कोल खुशबो है, तेरे कोल पानी, असी दोवें मिलके जी सकते हाँ। उड़दियां उड़दियां ही उसने अपने पिछे आंदे बदल दे कन विच कहा, मैं मजबूर हाँ, मैनू धक रही है पौन, तू ही अटक जा, देर तक चलदा रहा यह सिलसिला, देर तक खिड़िया गुलाब उड़ीकदा रहा हुंगारा, देखदियां देखदियां लंघ गया सारे दा सारा काफला, उजली धुप विच रह गया नंगा नीला आसमान, ते मुरझांदा जा रहा गुलाब, मुरझांदा जा रहा गुलाब। धन्यवाद।
1: कविता पाठ तुसीं सुन रहे सी जगतार सिंह होरां कोलों। ते हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे वधाउंदे होए सुनदे हां गीत, ते गायक ने सुरजीत पिंदरखिया।

ये तुसी सुन रहे सी गायक सुरजीत बंदरखिया दी आवाज़ च। आओ हुण अगला गीत सुनते हाँ गायक बब्बू मान दी आवाज़ च।

बब्बूमान की आवाज़ च ये गीत तुसी सुन रहे सी। आस है कि मिट्टी की महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी की महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नू इजाजत दिओ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप पहले हिंदी में

0: फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: victory over Bangladesh. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 10:10 और पूरे 17 सेकंड्स, और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आप सभी के और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइश का. और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना. स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में. कार्यक्रम की शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये संदेश.
2: Hey girls, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए.
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे.
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम.
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं.
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान.
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार.
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक. मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं.
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो आपकी फरमाइश। कहते हैं ना दोस्त, जिंदगी बहुत तेजी से भागती है, सुबह खुलते ही काम, फिर ऑफिस, घर, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, और इसी भाग दौड़ में ना हम कई बार उन छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आज जरा रुकते हैं दोस्त और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबकी जिंदगी में हर वक्त शामिल है। इस गाने में ना उसका हिंट है, और अगर आप उस हिंट को पहचान गए हैं तो आप बता दीजिए। दो मिनट और मैं प्ले करती हूँ इस सॉन्ग को, तब तक आप भेजिए अपने संदेश। ईमेल आईडी आपको पता ही है, ipradiodelhi@gmail.com पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फटाफट भेजिए, अदरवाइज मैं तो हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए, और ढेर सारे गीतों के साथ भी हूँ यहाँ पर। खूब सारी गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, गीत भी सुनेंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं।

रोशन देवांगन जी का संदेश मिला है, रिगार्डिंग तो नहीं है बट मिला है एज यूजुअल, जैसे वो शामिल होते हैं हमारे इस कार्यक्रम में अपने संदेश के जरिए। ये कहते हैं वाह अर्चना जी क्या बात है, शानदार गीत से कार्यक्रम का एक ऐसा फिल्मी आगाज की रेडियो की आवाज सीधे दिल तक पहुंच गई, 1 से 10 तक बस गिनती है लेकिन आपके गीतों के मिठास का कोई हिसाब नहीं है। लिख रहे हैं हमें बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। वाकई में गिनती तो है इसमें लेकिन एक और हिंट है, वहाँ आज हम गिनती के बारे में नहीं बात करेंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आज हम बात करेंगे इंतजार की। जी हाँ, इस फिल्म इस गीत में भी ना जो हीरोइन है वो हीरो का इंतजार कर रही है और गाते गाते कर रही है। तो दोस्तों इंतजार आज का टॉपिक है। वो कहते हैं ना कभी किसी इंसान का इंतजार, कभी किसी फोन कॉल का इंतजार, कभी छुट्टी का इंतजार, कभी बारिश का इंतजार और कभी इस बात का कि बस अब थोड़ा सुकून मिलेगा। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं बस इसके बारे में हमें बताइए। और अगर ऐसा कोई इंतज़ार आप कर रहे थे या आपने पास्ट में किया है और उसे उस इंतज़ार का जो सुखद अंत हुआ हो ना, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो चीज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उस एहसास को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक है इंतज़ार। अगर आप इंतज़ार करते हैं तो आप किस किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं। फिलहाल आज इस वक्त आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एक तो ना कॉमन है अपने मेल्स पढ़ने का, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा और क्या इस वक्त इंतज़ार हो रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है वो भी आप हमें बताइए।

0: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह।
1: देखिए हमारे एक संदेश हमें मिला है रविंद्र सिंह छाबड़ा जी का, हमारे रेगुलर लिसनर हैं और ये कहते हैं इंतज़ार के बारे में आज हम इस जो कार्यक्रम है ना उसमें बात करेंगे। वाकई में आपने इस गीत को सुनकर बड़ा थॉरली आपने इस गीत को सुना है और जज कर लिया है, गेस कर लिया है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इंतज़ार और ये लिख कहाँ से रहे हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। साथ में इनके हैं इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, और ये कहते हैं हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से आपके कार्यक्रम को सुनते हैं। गुजारिश है कि आपसे अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बिल्कुल आप याद रखने की चीज़ नहीं सर, हमेशा हमारे दिल में रहते हैं तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि आप हमेशा ही हमारे साथ हमारे दिल में रहते हैं।

अगला संदेश हरजिंदर सिंह भाटिया जी का मिला है और ये कहते हैं आज हम किसी के इंतजार के बारे में बात करेंगे। वाकई में बड़े अच्छे हमारे श्रोता हैं,

अगला संदेश हमें मिल रहा है संदीप मक्कर जी का, और ये कहते हैं कि मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब लोग एक दूसरे से दिल से प्यार करेंगे, सत्कार करेंगे। आज ऐसा समय है, किसी पर विश्वास नहीं है, किसी के दिल में क्या है पता नहीं चलता। वाकई में वक्त तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हम किसी दूसरे टाइप के इंतज़ार की बात कर रहे हैं दोस्त। ये तो चीज़ है ही, खैर उस वक्त का इंतज़ार हमेशा ही रहेगा कि जब लोगों के दिलों में प्यार होगा, विश्वास होगा, एक दूसरे पर भरोसा कर सकने का जो है ना एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे। लेकिन आप फिलहाल, आपका ऐसा कौन सा इंतज़ार था जो बहुत ही सुखद रहा हो, जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई और जिसको मतलब जिसके ख़त्म होने पर आपको सुकून महसूस हुआ हो, बस उस इंतज़ार के बारे में आज हमें बताइए आप।

अगला संदेश हमें मिल रहा है नीटू मल्होत्रा जी का, और ये लिख रहे हैं खैल बाजार पानीपत पद से, साथ में है लक्ष्य लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद, पीयूष सिक्का, गोयल सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू सिक्का, ये हमें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नमस्कार जी, आरजे बताया है जी शामिल भी करें, दीदी जी इंतजार में इंतजार है शायद शीर्षक। हाँ बिल्कुल, शीर्षक आपका जो आपने गैस किया है ना वो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, इंतजार है आज का टॉपिक, इंतजार है। और आपको देखो आज तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ा होगा अपने मेल को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करवाने के लिए। देखा ऐसे होता है, ऐसे मजा आता है इस कार्यक्रम को पेश करने में जब आप लोग ना रिगार्डिंग हमारे हमें मेल्स भेजते हैं और उस कार्यक्रम के साथ दिल से कनेक्ट करते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके साथ दिल से कनेक्ट हो रहे हैं और कहते हैं ना कि आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं, आपको खुश कर पा रहे हैं, आपका दिल भी जीत पा रहे हैं।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से, और ये कहते हैं कि खास दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं जिसमें पुराने कॉलेज के दोस्त हैं। वाह, ये तो ना कहते हैं बहुत अच्छी सी बात है। आप पुराने अपने दोस्तों से आप मिलने का वक्त निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल ना वक्त नहीं है। मैं भी बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलने की, बट कहते हैं ना प्लान नहीं बन पाता, वक्त ही नहीं मिल पाता। और साथ में लिख रहे हैं खास दोस्तों का इंतजार तो कर रहे हैं जिसमें पुराने कॉलेज के दोस्त हैं। हमारी एक गेट टुगेदर होनी है दिवाली से जरा सा पहले, इस इवेंट का इंतजार है। हालांकि 2-3 साल में ये गेट टुगेदर चलती रहती है जिसमें दोस्त लोग कपल फॉर्म में मिलते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत आपका आइडिया है ना, ये जो है ना वो आपने बहुत ही अच्छा एक कहते हैं कि प्लान कर रखा है कि अगर आप दिवाली के आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, गेट टुगेदर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त, पता है दोस्तों से मिलने का वक्त हमेशा निकालना चाहिए, और ये इंतजार इतना खूबसूरत होता है ना जब आपके दोस्त आपसे मिलते हैं। वाकई में उस पल की जो खुशी है ना वो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। लेकिन फिलहाल आप सुनिए खूबसूरत सा गीत ओम शांति ओम फ्रॉम द मूवी गर्ल्स।

0: चलिए अगले संदेश की ओर चलते हैं। ये मिला है हमें सतीश अनेजा जी का और ये कहते हैं, नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में कहा, जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में कहा। इंतजार में भी मोहब्बत छुपी होती है, तभी तो इंतजार करते हैं। हम भी शिद्दत से इंतजार करते हैं कि आज फिर से टॉपिक पर अपनी बात लिखेंगे। इंतजार तो श्रोताओं के खून में है, जो सारा दिन इंतजार ही इंतजार, इंतजार खत्म होते ही प्यार बेशुमार। वाकई में बहुत खूबसूरत संदेश आपने भेजा है और ये जो एक अच्छी सी लाइन लिखी ना आपने कि जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में कहा, वाकई में कभी कभी इंतजार करना इतना सुकून देता है ना, क्योंकि हमें पता होता है उस इंतजार के बाद जो खबर हमने हमें मिलने वाली है वो हमारी शायद जिंदगी बनाने वाली है या फिर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव लाने वाली है कि जिससे और भी सुकून भरी हो जाएगी हमारी लाइफ। बस इसी तरह हमें हमारे साथ ना आप सब जुड़े रहिए, भेजते रहिए अपने संदेश और भी अगर खूबसूरत खूबसूरत बातें इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपने संदेश हम तक पहुंचाने के लिए।
1: रोग का नहीं है इलाज दुनिया।

अगला संदेश हमें मिल रहा है धर्मेंद्र छीपा जी का, ये लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, साथ में है कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ये कहते हैं, आदरणीय मैडम जी नमस्कार, आज आप चर्चा कर रहे हैं इंतजार विषय पर। अब इंतजार करना भी कठिन होता है और इंतजार का फल मीठा होता है। अब हम तो आपके कार्यक्रम और मैसेज का इंतजार करते हैं और आनंद उठाते हैं। देखिए, आज आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा होगा क्योंकि आपने बिल्कुल राइट वक्त पर, सही टाइम पर ना जो है ना, अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया और शामिल भी हो गया। और आई एम श्योर कि आप सुन भी रहे होंगे कि हम आपका मेल शामिल कर चुके हैं, आपको इस कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। बस इसी तरीके से आप हमें सुनते रहिए और अपने संदेश हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए।

उधर से। अनिल जैन जी का हमें संदेश मिल रहा है अगला, और ये कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आई होप आप भी बहुत बढ़िया होंगे। और ये कहते हैं, दी मुझे दीपावली फेस्टिवल बहुत पसंद है, उसका अभी से बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मलिया सरधना मेरठ से ये लिख रहे हैं, साथ में हैं जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन, और बहुत खूबसूरत संदेश आपने भेजा है। वाकई में फेस्टिवल्स का ना एक ऐसा इंतजार है जो हम सभी को रहता है, स्पेशली बच्चों को तो इतना ज्यादा रहता है ना, कि चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, खूब सारे कलर्स खेलने को मिले, खूब सारे पटाखे फोड़ने को मिले, खूब सारी मिठाइयाँ खाने को मिले, तो बच्चों का तो ना यही रहता है कि बहुत इंतजार करते, इंतजार तो छोड़िए वो इंतजार भी नहीं करते, बीच पहले से शुरू हो जाते हैं। तो बस आज हम बात कर रहे हैं कि हम जो बड़े लोग हैं, अपनी लाइफ में आपने ऐसा कैसा कौन सा इंतजार किया है जिसे खत्म होने पर आपको सुकून मिला हो, कोई बढ़िया सी खबर मिली हो, कोई अच्छा सा फोन कॉल आया हो, कुछ अच्छा सा कहते हैं ना, कहीं से किसी की तरफ से गिफ्ट आने वाला हो, सरप्राइज गिफ्ट आने वाला हो, कुछ इस टाइप का आपको अगर कभी

इंतजार करते हुए खत्म हुआ हो, वो गिफ्ट मिलकर, वो फोन कॉल रिसीव कर, वो रिप्लाई पाकर। तो बस ऐसी ही कुछ और प्यारी प्यारी यादों के साथ अपने संदेशों को भेजिए, बताइए कैसा इंतजार था आपका वो।

0: एक बड़ा सा फनी सा जो है ना संदेश हमें मिला है चरणदास जी की तरफ से। ये कहते हैं, इंतजार बस अड्डे पर जाकर रिश्तेदार का करते थे, बीच में खाना खाने आ जाते थे, दोबारा अड्डे पर जाकर फिर से रिश्तेदार का इंतजार करते थे। ऐसा भी होता है क्या सर? चलिए, बहुत ही सुखद इंतजार रहता होगा, क्योंकि जिन रिश्तेदार का इंतजार आप इतने बेसब्री से कर रहे हैं और जब वो आ जाते हैं तो आपको वाकई में सुखद एहसास भी होता होगा। आप लिख रहे हैं चौधरी वास हिसार हरियाणा से, साथ में राजू अग्रवाल, प्रीति और निर्मल हैं आपके।
1: बन गया दीवाना, ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत

0: अगला संदेश हमें मिल रहा है मोहम्मद सईद अब्बासी जी का। ये लिख रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। ये कहते हैं इंतजार का भी अलग ही मजा होता है। किसी को मौसम का इंतजार होता है और कोई उसी हसीन मौसम अपने उस हसीन महबूब का जो हजार वादे करने के बाद भी नहीं आता। वाकई में ये होता है, कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है इंतजार का, बट मोस्ट ऑफ टाइम ना पॉजिटिविटी आपको मिलती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो अगर वो सुखद होता है, हैप्पी होता है, तो वाकई में उस इंतजार का इतना मायने नहीं रह जाते कहीं पे भी कि आपने कितना लंबा इंतजार किया है। आपके साथ लिख रहे हैं कौन, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहाना, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार।
1: दुनिया में और कोई

0: चलिए अभी इस गीत को यहीं रोकते हैं और सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। और कार्यक्रम यहां चल रहा है आपकी फरमाइश, बोल चुकी हूं मैं एक बार और से बोल दिया जैसे हो जाता है कभी कभी। और वक्त यहां पे हो चुका है 10:34

चलते हैं अपने संदेशों की ओर और अगला संदेश हमें मिल रहा है फारूक अली खान जी का। ये कहते हैं, इंतजार अपने नाम सुनने का भी अलग ही होता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि अपना नाम सुनने का इंतजार भी एक अलग ही होता है। किसी ने मुझसे मिलने का बहुत इंतजार किया और जिस दिन मैं उनसे मिलने के लिए निकला तो एक गीत जुबां पर आ गया कि गीत आज उनसे पहली मुलाकात होगी। लिख रहे हैं आप कस्बा गुन्ना।

और यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा। वाकई में वो पहली मुलाकात का जो इंतजार होता है ना, वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। और उस खूबसूरत एहसास को आज आपने संदेश के जरिए हमारे साथ शेयर किया है, हम तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच।

अगला संदेश हमें मिल रहा है उत्तम सिंह जांघेल जी का, और ये लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़, साथ में है मोरस जांघेल, अनिल कुमार, रजित कुमार, आयुष जांघेल और नंदिनी जांघेल। ये कहते हैं आज का विषय इंतजार, हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, दोस्तों के अलग अलग समीक्षा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गीत भी अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, जिमी जिमी आजा आजा। वाकई में देखा आपने आज मेरा दिन बना दिया वाकई में दोस्त, क्योंकि पता है बड़ी बड़ी खुशी होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, मतलब जेन्युइनली सुन रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट करके हमें संदेश नहीं भेज रहा है और हमारे इस कार्यक्रम को दिल से सुनकर उसमें दिल से जुड़ रहे हैं। तो वाकई में थैंक यू सो मच ये खूबसूरत सा संदेश भेजने के लिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है तुलसी मस्किन जी का, और ये कहते हैं, मैडम जी नमस्कार, हम भी अपने मेल का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नो रिप्लाई। जिमी जिमी आ जा, प्रूफ दे दिया आपने कि आप हमें सुन रहे हैं वाकई में। देखो वैसे ये बढ़िया तरीका है आपसे सच उगलवाने का कि वाकई में आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, साथ में आप जो गाना हम लास्ट प्ले करते हैं ना उसके वर्डिंग जरा लिख कर भेज दीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो। हमारे दो श्रोताओं ने तो ऐसा कर दिया। आप लिख कहाँ से रहे? बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। साथ में है वीना मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सुधाकर जाधव जी का। ये लिखते हैं कालेगांव जाफराबाद से। साथ में है प्रशांत राजे जाधव, जुगताई राजे जाधव, स्वाति ताई, वर्षा ताई, पूजा ताई, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वद हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार। और ये कहते हैं कि हम तो हमारा मैसेज आपके प्रोग्राम में कब से शामिल मतलब भेज चुके हैं, आप कब शामिल करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। वाकई में आपका इंतजार देखिए दोस्त मैंने खत्म कर दिया है और आपका जो मेल है अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। होप आप अब सुन रहे होंगे हमें कि हमने आपको ले लिया है अपने इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है रामेश्वर जी का, ये कहाँ से लिख रहे हैं जरा इनके ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हमें लिख रहे हैं। ये कहते हैं आपके फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं बहन जी अर्चना जी, क्या बहन जी मेरा मेल शामिल नहीं करेंगी? हम कब से इंतजार कर रहे हैं मेल शामिल होने का, प्लीज बहन जी जरूर जरूर जरूर शामिल करें। बहुत सारे जरूर इन्होंने लगा दिए अपने मेल में, और ये साथ में है बेद बाबू कठेरिया समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में लिख रहे हैं। और रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया। दोस्त आपके इस जो संदेश में ना इंतजार शामिल था वो इंतजार खत्म हो चुका है। आई होप आपने सुन लिया होगा अपना नाम कि हमने आपका जो संदेश है ना शामिल कर लिया अपने इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें संदेश भेजा। मुकेश गोस्वामी जी का हमें संदेश मिल रहा है अगला। ये कहते हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं, कहते थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वाकई में इंतजार में मेरा थोड़ा सा मजा होता है दोस्त। तो ये कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो हम भी मजा लें अपने नाम सुनने का। गीत सुन रहे हैं अपनी तो जैसे तैसे। वाकई में आप सुन रहे हैं दोस्त, हमें वाकई में विश्वास हो गया। आप लिख कहाँ से रहे हैं? उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, साथ में आपके मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी। सुनते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए और संदेश भेज सकते हैं, भेजिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है गुलाब दास मानिकपुरी जी का, लिखते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी इनके साथ है। कहते हैं अर्चना जी, मुझे बड़ा इंतजार था अपने पुत्र और पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से करो और ये इंतजार ईश्वर ने पूरा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में अगर आपके इस इंतजार का सुखद अंत हुआ है तो हम समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि कई बार इंतजार बहुत लंबा हो जाता है और कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। तो अगर इंतजार लंबा रहा सो रहा, लेकिन अगर उसका अंत पॉजिटिव हुआ, सुखद हुआ, तो बहुत बहुत बहुत बधाई आपको।

अगले संदेश की ओर चलते हैं। बब्बल 363 का संदेश हमें मिला है, कहते हैं नमस्कार, प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं और प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, कृपया मेल को प्रोग्राम में शामिल करें। ये ऑर्डरली संदेश हमें मिला है एक्चुअली में, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ऑर्डर पास कर दिया हमें कि हम इनके मेल को शामिल कर लें, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। अभी है 15 मिनट दोस्त, है आप सुनिए। मोहाली पंजाब से आप लिख रहे हैं, साथ में ओम प्रकाश मल्होत्रा, बब्बल मल्होत्रा है।

सत्येंद्र चंसोलिया जी का संदेश हमें मिल रहा है। ये कहते हैं, मैं भी लाइव सुन रहा हूँ, आपको शामिल करने की कृपा करें। दोस्त अगर सुन रहे हैं तो प्लीज बताते ना, आपने कोई इंतजार किया उसका क्या अंत हुआ? बताया नहीं आपने, सिर्फ संदेश भेज दिया। एनीवेज ये भी भेजा, बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिख रहे हैं ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, साथ में है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया।

0: मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं,
1: हम भी पूछ रहे हैं आपसे, इंतजार कैसा था आपका और कैसे उसका अंत हुआ, जरा बताइए हमें। अगला संदेश जो है वो मिल रहा है हमें पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और शांति गुप्ता का ज्योत प्रसाद जी हमें संदेश भेज रहे हैं। कहते हैं, दीदी मैं सिलाई करती हूँ और मैं ग्राहक का इंतजार करती हूँ, ग्राहक के इंतजार में रहती हूँ कि कब ग्राहक आए, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरा भी मेल शामिल हो। कृपया मेरा भी मेल शामिल करें और प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सो मच, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और वाकई में आपने हमारे इस कार्यक्रम के रिगार्डिंग जो मेल भेजा है ना कि आप किसका इंतजार करते हैं, आपने बताया है, और वाकई में वो जो आपका इंतजार होता होगा ना दोस्त, वो बहुत सुखद होता होगा, क्योंकि ग्राहक का आना तो भाई दुकानदार के लिए बहुत ही जरूरी होता है और एक बहुत सुखद एहसास भी देता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना संदेश हमारे इस कार्यक्रम में भेजा।

अजीत कसाना जी का संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं राधे राधे नमस्कार सिस्टर्स जी, आज का टॉपिक लाजवाब है, इंतजार इंतजार, प्रोग्राम में अपने नाम शामिल होने का कर रहे हैं इंतजार। आप इंतजार खत्म हो चुका है आपका, बहुत ही प्यारा और सुखद इंतजार आपका खत्म हुआ है। और ये लिख रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से। अगला संदेश हमें मिला है रोशन देवांगन जी का, ये कहते हैं इंतजार भी बड़ी कमाल की चीज होती है, घड़ी की सुइयां चलती रहती है लेकिन दिल बस एक ही आवाज का इंतजार करता है कि हम भी रोज आपकी लाइव आवाज सुनने के लिए रेडियो के पास इंतजार में रहते हैं। आज आपकी शानदार प्रस्तुति सुनकर मन आनंदित हो गया और गीत

संगीत सुरताल की महफिल में दिल भी झूम उठा। अभी हम अपनी तो जैसे तैसे ई कट जाएगी सुन रहे हैं, और सच कहें तो आपका कार्यक्रम शुरू होते ही लगता है इंतजार खत्म और सुरों का सफर शुरू। मिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता लता डिम्पल देवांगन हमें लिख रहे हैं। वाकई में मेरी तारीफ में इन्होंने इतना सारा जो लिख दिया है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और वाकई में एक तारीफ तो बनती है ना, और वो तारीफ पाने का इंतजार जो है ना वो मेरा खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।

बोधराज खोरवाल जी का संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं हंसी आपकी कभी कम ना हो, खुशियां कभी आपसे दूर ना हो, हर सुबह नई लेकर आए और हर दिन यादगार बन जाए। साथ में है कमला रानी भानु और गीतिका खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से ये हमें संदेश भेज रहे हैं।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सुदर्शन मुखी जी का, साथ में अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से हमें लिख रहे हैं। ये कहते हैं, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं AKP, आई डोंट नो व्हाट इज AKP। हम तो आशा और इंतजार करते रहते हैं कि हमेशा हमारा स्वास्थ्य और समय अच्छा बना रहे। वाकई में वैसे कि आश मतलब इसके लिए विश होता है कि लग आप विश कर रहे हैं, लेकिन हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं दोस्त। बट आपने अगर ऐसा लिखा है और ऐसा अगर करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा समय तो सभी को चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा समय होगा तभी तो सब कुछ आप अच्छा अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में।

अगला संदेश हमें मिला है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा का। ये कहते हैं शानदार प्रस्तुति। तो ये तो हमें मालूम है हमारी शानदार प्रस्तुति होती है क्योंकि आप हमें सुन रहे हैं, बस इसी से सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है। लेकिन आप रिगार्डिंग मेल्स भी भेजिए ना, जो चीज पूछी है, जो क्वेश्चन आज जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके बारे में भी अगर कुछ लिख देंगे ना, दो चार शब्द, तो मजा आ जाएगा। कार्यक्रम में चार चांद लिख जाएंगे और ये बस ये लिखकर भेज दे देंगे, हमारा मेल शामिल कर लीजिए, हम अपना मेल में नाम सुनने का इंतजार कर रहे हैं दीदी। चलिए, वैसे तो आज का जो टॉपिक है ना वो इंतजार है, तो मुझे तो 101% श्योर था कि हमारे जितने भी श्रोता है ना वो इंतजार में यही लिखेंगे कि भाई हमें तो अपना नाम सुनना है, हमें तो अपना फेवरेट गाना सुनना है, हमें तो बस नाम सुनने के लिए आपका कार्यक्रम सुनना है। तो वाकई में अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कार्यक्रम किसको सुनाएंगे? आप सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपका इंतजार खत्म होता है, आपका मेल शामिल होता है।

वक्त हो चुका है 10:54 और 43 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं आपके फरमाइश, बस कुछ ही पल बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ, और आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अगली बार हमसे मिलने का इंतजार।

डॉल राणा हमें संदेश भेज रही है, कहती है नमस्कार, इंतजार सबको होता है, हमें भी अपने मनपसंद कार्यक्रम का इंतजार रहता है। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें लिख रही है।

महेंद्र कुमार तिवारी हमें संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं रेडियो सुनने का इंतजार भी बड़ा सुहाना होता है, जैसे ही घड़ी कार्यक्रम के समय के करीब आती है कान रेडियो की आवाज और दिल आपकी प्रस्तुति का इंतजार करने लगता है। रेडियो की खूबसूरती ही यही है कि गीत संगीत सुर और ताल के साथ अनजान श्रोता भी एक खूबसूरत एहसास से जुड़ जाते हैं। आवाज रेडियो से आती है लेकिन अपनापन सीधे दिल तक पहुंचता है। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो, रेडियो बजे और गीत संगीत की महफिल सज जाए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमें ये लिख रहे हैं संदेश, और साथ में है श्रीवास गेंदू भाई कृष्ण कुमार यादव। बहुत खूबसूरत संदेश है आपने हमें भेजा और इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।

जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की इंतजार के बारे में अपने इस कार्यक्रम में। और एक इंतजार ही होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान की दूरियों को खत्म भी करता है। बस यही दूरियां खत्म करते रहेंगे हम, आते रहेंगे आप सबसे यूं ही मिलने के लिए। और जाने से पहले ना, क्योंकि वक्त जो है ना 10:57 और पूरे 50 सेकंड्स हो चुके हैं और हमारे यहाँ से जाने का भी हो चुका है, लेकिन जाने से पहले चाहती हूँ आपसे ये बात कहना कि आई एम श्योर कि आपको ये कार्यक्रम जो ना बेहद पसंद आया होगा, आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। और बस इसी तरीके के और टॉपिक्स लेकर, बातें लेकर, गीत संगीत को लेकर जल्द हाजिर होंगी मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बस तब तक आप अपना ना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात स्वच्छता रखिए। और बस थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा इंतज़ार जो है ना वो हमारा करते रहिए। और जिन सभी श्रोताओं ने हमें संदेश भेजे उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हुए, उन सभी श्रोताओं से माफ़ी चाहते हुए कि जिनका संदेश हम शामिल नहीं कर पाए हैं आज के इस कार्यक्रम में, अगली बार ज़रूर करेंगे इसका वादा लिए। आपसे इजाज़त चाहती है आपकी आज की दोस्त, रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। की आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब से कुछ देर में नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है

0: जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
1: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ AI फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि AI मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल पहली V4+ भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक V4 की मौजूदा स्लोवाक अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और भाईचारे की भावना से जुड़ा है। एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नागोया में आज दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है। एशियाई खेलों में श्रीलंका के साथ महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 64 अंक बढ़कर 74,724 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 34 अंक बढ़कर 23,440 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 11:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन। माफ कीजिएगा, 11:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11:30 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे शेख फरहान अमीन द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

0: ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषज्ञ समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force ANTF Heads of States and UTs in New Delhi. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and union territories are attending the conference being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, based on the theme of the United Resolve, Shared Responsibility. The conference is focusing on progress of targets assigned to states and UTs, ANTFs, in recently released vision document on narcotics control 2026-29. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction, and harm reduction. Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the precise usage of water and highlighted that it should be conserved. He outlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management.
3: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing, we have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
2: Jal Shakti Minister C.R. Patil highlighted the importance of water conservation and said the government is committed in providing safe and sufficient drinking water to every citizen in the country. The theme of this year's Water Week is climate resilient water management.

0: आंगन।
1: नमस्कार साथियों, दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज ठीक सिर के ऊपर लगता है और हवा का रुख बदलने लगता है, तब यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, बातें करते हैं और दिन को थोड़ा हल्का बनाते हैं। आप सुन रहे हैं घर आंगन, मैं हूँ श्रुति पुरी और ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है FM गोल्ड की 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल से ये कार्यक्रम मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो हमें YouTube चैनल AIR न्यूज़ लाइव 24x7 पर भी सुन सकते हैं। और अब एक छोटा सा रोचक सा प्रश्न आपके लिए। हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी एक छोटी सी आदत या नुस्खा ज़रूर होता है जो दादी नानी या माँ

से हमें विरासत में मिलता है। हो सकता है वो चाय बनाने का कोई ख़ास तरीका हो, या फिर मौसम बदलने पर कोई घरेलू नुस्खा, या फिर कोई ऐसी बात जो घर के बड़े अक्सर दोहराया करते हैं। आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी एक आदत या नुस्खा है जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपना जवाब हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com। और आपके भेजे किससे हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन जिस महान व्यक्तित्व की जयंती का है, वही आज के सुविचार की प्रेरणा भी हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव वलंगईमान में जन्मे भारत के महान समाज सुधारक और कूटनीतिज्ञ V.S. श्रीनिवास शास्त्री की आज जयंती है। शास्त्री जी सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक बेहतरीन वक्ता और मध्यस्थ भी थे। विदेशों में बसे भारतीयों की सेवा के लिए भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे थे सच में एक प्रेरक व्यक्तित्व। V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी का एक सुविचार आज के लिए। शास्त्री जी कहा करते थे कि हमारा काम सिर्फ अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता मत करना, ये हमारा काम नहीं है। यानी मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए और नतीजा अपने आप संवर जाएगा।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे गीता मेरा नाम फिल्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं देश के उत्तर पूर्व की ओर मणिपुर में। मणिपुर में एक अनोखा उत्सव आज के दिन मनाया जाता है जिसे हेइक्रो हिडोंगबा कहते हैं। ये मणिपुर का प्रसिद्ध नाव उत्सव है। ये मणिपुर कैलेंडर के लागबन माह के 11वें दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत महाराजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। इम्फाल के जो विजय गोविंदा मंदिर के पास बनी खाई है उसमें दो लंबी नावों के बीच ये दौड़ होती है और इससे पहले भगवान विष्णु और विजय गोविंदा की पूजा अर्चना भी की जाती है। दौड़ के दिन 108 आंवलों की माला और 108 चावलों के दाने जो होते हैं उसकी एक और माला भगवान को अर्पित की जाती है। सदियों बाद भी ये परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज ही डोल 11 मनाई जा रही है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है जिसे परवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं इसीलिए इसे परवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुंदर डोल यानी झूले में सजाकर पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जहां नदियां हैं वहां नौका विहार कराया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा माहौल अब भक्तिमय हो जाता है और इसी भक्ति को समर्पित है ये गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब सूरज खुद ही दिन और रात को आधा आधा बांट देता है। जी हाँ, आज के दिन शरद विषुव यानी

ऑटम इक्विनॉक्स है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं और ये आज या कल के दिन के बीच में ही होता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। साल में ये सिर्फ दो बार होता है, जब सूर्य की किरणें धरती के भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और दुनिया के हर कोने में दिन और रात की लंबाई लगभग समान हो जाती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती हैं, सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खाली खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक सीख भी है। जैसे दिन और रात का संतुलन जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी काम और आराम का संतुलन भी बना रहना चाहिए। हमारे पुरखे भी मौसम के इस बदलाव को बहुत बारीकी से देखते थे और अपने खान पान और दिनचर्या को उसी हिसाब से ढालते थे। तो चलिए आज सूरज की इस सीख को अपने जीवन में भी उतारते हैं और अपने दिन में भी काम और आराम का हिसाब उतना ही बराबर रखने की कोशिश करते हैं जितना आज प्रकृति ने खुद बना दिया है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी सच्चाई। और श्रोताओ, अब वो बात जो मेरा पसंदीदा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, वो ये कि जब मैं आप लोगों की मेल पढ़ती हूँ, आप लोगों के किस्से सुनती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, रोचक बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आता होगा। तो आज की इस मेल जो हमारे पास आई हैं उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सा नुस्खा या ऐसी कौन सी बात है जो दादी नानी के ज़माने से अब तक चली आ रही है, घर के बड़े अभी तक उस बात को बार बार दोहराते हैं और आपके आने वाली पीढ़ी में भी वो विरासत के तौर पर पहुँच रही है। तो वो प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हमें भेजा है नवीन भाटिया जी ने मोती नगर दिल्ली से। ये लिखते हैं, घर आते ही सीधा पानी ना पीने की बजाय कुछ बिस्किट वगैरह खाकर ही पानी पीना चाहिए और यही वो आदत है जो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है। और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी आदत है और ये हमारे जैसे कई घरों में ये आदत आज भी अपनाई जाती है। और पंकज बिंदल जी का ये बेल हमें आया है, लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल जी चौधरीवास से, पंकज बिंदल जी, केशव, प्रयाग, प्रयांशी और विवेक। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हमारे घर में पूर्वजों के समय से ही घर पे आने जाने वाले का बहुत आदर किया जाता था। मेहमानों को हम भगवान की तरह मानते हैं। आप भी कभी आइए, हमारे आकाशवाणी के सभी परिवार को ये सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार राजू अग्रवाल जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी जो भारतीयों की ये परंपरा भी है कि हम जब घर में कोई अतिथि आता है तो उसको देव समान मानते हैं, नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं। और एक मेल हमें आया है अफरोज़ शेख जी का, ये सोपुला बिहार से लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि सत्तू को पानी में घोलकर हमारे घर में पिलाया जाता था और चुकंदर का छिलका पानी में उबालकर जो उसका पानी छाना जाता था उसमें नींबू निचोड़कर अगर हम पीते थे तो हमारे घर में सभी कहते थे कि चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया आपने अफरोज जी, ये तो हम सभी के काम का नुस्खा है और सत्तू को तो सुपर फूड भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं और घर में बुज़ुर्ग इस तरह की चीज़ों की आदत अक्सर ही डाल दिया करते थे। एक और मेल हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बड़ों की शिक्षा है कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आपका मेल आया है सुदर्शन मुखी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुछ घरों में ये बात आज भी कही जाती है कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। और ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्राणवायु को अपने अंदर ले पाते हैं। तो एक मेल और आया है हमारे पास, ये मेल हमें लिखा है गौरी शंकर जी ने नांगलोई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि राम राम, हमारे जो दादी दादा और नानी नाना का जो कहना था वो ये था कि जो तजुर्बा वो हमें सारी जो हम ग्रहण करते हैं, दादा दादी और नाना नानी का जो अनुभव हम लेते हैं वो हमें सारी ज़िंदगी काम आता है। कई बार मैं काम में परेशान हो जाता था तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये एक ज़िंदगी का तजुर्बा है जो तुम्हें अपने जिसमें तुम्हें पास होना है, फेल नहीं होना है। और वो इतनी हिम्मत बढ़ाती थी
काम में सफलता मिलती थी, और आज भी जब भी मुझे कभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे उनकी ये सारी बातें याद आती हैं। ये तो एक बहुत ही प्रेरक बात है गौरी शंकर जी, क्योंकि घर में जितने भी बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमेशा बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, और आज भी हमारे बड़े हमारे साथ हमें प्रेरणा ही देते हैं। जब भी हम उदास होते हैं, जब भी हम किसी काम से थक जाते हैं, तो उनकी प्रेरणा हमें अक्सर याद आती है। और अब समय है आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने का।

लोफर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह घर से निकलिए तो हॉर्न की आवाजें, लंबा जाम और धुएं से भरी हवा। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या जयपुर, हर शहर की सुबह अब कुछ ऐसी ही होती चली है। और शायद इसीलिए आज का दिन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी निकालना वाकई ज़रूरी है। आज विश्व कार

महत्व दिवस है जिसका मकसद बस इतना सा है कि साल में कम से कम एक दिन हम अपनी गाड़ी को आराम दें और पैदल चलें, साइकिल उठाएं या मेट्रो या बस से सफ़र करें। हमारे यहाँ तो ये बात और भी मायने रखती है। शहरों में बढ़ते वाहन सबसे बड़ी वजह है उस प्रदूषण की जिससे हम हर सर्दी में जूझते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे शहरों में आज भी ज़्यादातर सफ़र छोटी दूरी के होते हैं। सब्जी लेने जाना हो, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना हो या पास के बाजार तक जाना हो, ये सब तो पैदल भी हो सकता है। बस इतना है, याद छूट गई है। और सच कहूँ तो जब सड़कों से गाड़ियों का शोर कम होता है तो वही सड़कें अपना स्वरूप बदल लेती हैं। बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती है, पड़ोसी रास्ते में रुककर एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। हम में से कितने ही लोग होंगे जिनको अपने बचपन के वो मोहल्ले याद होंगे जहां गलियां गाड़ियों से नहीं बल्कि हंसी के ठहाकों से भरी होती थी। तो क्यों ना आज एक छोटी सी कोशिश करें, एक काम ऐसा चुनिए जो बिना गाड़ी के आप कर सकें। हो सकता है कि उस थोड़े से पैदल रास्ते में आपको अपना वही पुराना मोहल्ला फिर से मिल जाए।

दोस्तों, शायर कमर जलालवी का एक मशहूर शेर है कि तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो, तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। फूलों को तो देखो, कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। बरसों पुराने इस एक शेर में शायद पूरे गुलाब की कहानी छुपी है। हम सब गुलाब को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस गुलाब की कहानी उससे भी कहीं गहरी है। गुलाब जितना कोमल दिखता है उतना ही मजबूत भी होता है। सूची एक नाजुक सी पंखुड़ी कांटों के बीच खिलती है और फिर भी अपनी खुशबू और अपना रंग नहीं छोड़ती। ये अपने आप में हिम्मत की मिसाल है। जीवन में भी तो यही होता है। मुश्किलों के कांटों के बीच ही तो इंसान का असली रंग निखरता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ता, वही तो असली गुलाब है। और गुलाब तो कई तरीके की दवाइयों और सुगंध में भी काम आता है। गुलाब के इतने उपयोग हैं कि उनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। यही वजह है कि आज गुलाब सिर्फ प्रेमियों के बीच नहीं बल्कि योद्धाओं के बीच भी उतना ही सुंदर लगता है। ये प्यार की भाषा बोलता है और हौसलों की भी, और शायद यही कारण है कि गुलाब हर मौसम हर मौके पर अपनी जगह बना ही लेता है।

बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में अभी आप अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज को सुन रहे थे। श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हाथ में कोई रैपर या पन्नी हो और आसपास कोई डस्टबिन ना दिखे तो बस वहीं जमीन पे डाल दिया? सच कहूँ तो ये आदत इतनी आम हो चुकी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने घर में कागज का टुकड़ा भी फर्श पर नहीं गिरने देते, लेकिन बाहर निकलते ही वो सतर्कता कहीं गुम हो जाती है, जिसका एक छोटा सा हल है। बस एक इतना सा हल है कि बस उस पन्नी या रैपर को जेब में या बैग में रख लीजिए और अगला डस्टबिन मिलने तक उसमें डाल दीजिए। ना कोई मेहनत, ना कोई खर्चा, बस सिर्फ एक आदत जो थोड़ी सी सजगता मांगती है। और सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ इतना ही कर ले तो हमारे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन कैसे बदल जाएंगे? सफाई एक कर्मचारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हर उस हाथ की जिम्मेदारी है जो कचरा पकड़े हुए है। तो अगली बार जब हाथ में कुछ फेंकने लायक हो तो एक पल रुकिए, डस्टबिन तक का छोटा सा सफर पूरा कीजिए और देश की सेवा में

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बहारों के सपने। तो दोस्तों, आज की ये 50 मिनट की सोहबत भी अब अपने आप में एक पूरा सफ़र बन चुकी है। कुछ बातें दिल को छू गईं, कुछ ने सोचने पर मजबूर कर दिया और कुछ ने बस यूं ही होठों पर मुस्कुराहट ला दी। सच कहूं तो ये बातचीत की यही तो खूबसूरती थी कि हम हमेशा अपने बातचीत के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, कोई ख्याल, कोई एहसास जो शायद फिर याद आ जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइएगा और हाँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी तो श्रुतिपुरी को दीजिए घर आंगन से अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के

0: पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और 1 उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 3rd National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water and highlighted the need for its conservation.
4: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing. We have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
3: The theme of this year's Water Week is Climate Resilient Water Management. The 5-day international event will provide a multidisciplinary platform bringing together all stakeholders to deliberate upon the pressing challenges of water management. The Election Commission has announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. The Commission also announced by-poll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of next month. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of next month. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes, work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a 3-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in public sector banks from the 28th to the 30th of this month. They have called a strike in support of two principal demands, implementation of 5-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The Union Finance Ministry said, following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said, the government has taken several measures aimed at improving the working environment, transparency and welfare of bank employees. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, marking a new front in the wider war that began with the US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Indian Eves opener Smriti Mandhana has created history by becoming the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti achieved this milestone during the Asian Games final against Sri Lanka at the Korogi Sports Park in Nishin, Japan. In women's cricket, chasing a target of 217 runs, Sri Lanka were at 54 for 7 wickets in 11 overs against India in the final in the Asian Games at the IEG Prefectural Korogi Sports Park, Japan, when reports last came in. Early opting to bat first after winning the toss, India scored 216 runs for 3 wickets in 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, कभी कभी कोई पुरानी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आती है। एक दौर जब मोहब्बत को कहने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं बस एक गीत काफी हुआ करता था। आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम लौट रहे हैं 1957 की ओर, एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसका नाम ही अपने आप में फूलों जैसी खुशबू लिए हुए है, चंपा गली। जी हाँ, ये फिल्म है जिसको हम फिल्मी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं कार्यक्रम के साथ। मैं अर्चना गोयल, नमस्कार दोस्तों।

कितना खूबसूरत है ना ये गीत। इस गीत के शब्दों में जैसे 50 के दशक के सिनेमा की पूरी मासूमियत समाई हुई है। इस गीत को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे। हेमंत कुमार का संगीत अपने आप में एक खास पहचान रखता था। सादगी, मिठास और धुन में ऐसी सहजता कि गीत सुनते हुए लगता था कि जैसे धुन बहुत पहले से हमारे भीतर कहीं मौजूद थी। फिल्म में थे भारत भूषण, सुचित्रा सेन, प्राण, शोभा खोटे, मुबारक, एस एल पुरी और मुमताज बेगम जैसे कलाकार। फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंत लाल ने। फिल्म की कहानी एक बंजारा कबीले के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बांसुरी की धुन, प्यार और सांप के काटने जैसे ड्रामेटिक ट्विस्ट शामिल थे। आपको बता दें कि निर्देशक नंदलाल इससे पहले नागिन, अनारकली, सनम, आम्रपाली जैसी हिट फिल्में दे चुके थे।

छुपे गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

चंपा कली को 1957 की हिंदी फिल्मों की सूची में रोमांटिक फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। फिल्म में भारत भूषण ने माधो और सुचित्रा सेन ने राजू की भूमिका निभाई। भारत भूषण उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनके अभिनय में रोमांस के साथ साथ एक नरम भावनात्मक रंग दिखाई देता था। दूसरी ओर सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा, खासकर बंगाली सिनेमा की बेहद महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके करियर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्मों में नजर आई उनमें उनकी स्क्रीन उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। चंपाकली में उनका किरदार राजू का था। यही वजह है कि आज जब हम इस फिल्म के गीत सुनते हैं तो वे सिर्फ पुराने गीत नहीं लगते, वे हमें सुचित्रा सेन, भारत भूषण के उस दौर की सिनेमाई जोड़ी की याद दिलाते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है चंपाकली और कार्यक्रम के साथ मैं हूं अर्चना गोयल।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, चंपाकली से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जो इस फिल्म के संगीत को और रोचक बना देती है। फिल्म में ओ ग्वालिन क्यों मेरा मन मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। इस गीत को लेकर पुराने गीत संग्रह में एक दिलचस्प टिप्पणी मिलती है कि इसे भारत भूषण और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया। इसे सुनकर यह बात खास तौर पर ध्यान खींचती है कि भारत भूषण के लिए इस फिल्म में हेमंत कुमार की अपेक्षा रखने वाले श्रोताओं को यहाँ रफी साहब की आवाज सुनाई देती है। यही पुराने सिनेमा का आकर्षण है। ये भी गौर करने वाली बात है कि हेमंत कुमार के संगीत में अलग अलग भावों को अलग अलग गायकी के रंग से सजाया गया।

बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का। और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पिपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। बलारी छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया जालंधर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निर्मित आहूजा। और ये हैं फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, दिवांशी, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। और ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम नाहर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांचल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। आपके साथ ही हैं जग्गा राम साहू और ये लिख रहे हैं कि फिल्म चंपाकली की मधुर सदाबहार गीत संगीत कहानी और फिल्म से जुड़ी रोचक बातों का आनंद ले रहे हैं और प्रोग्राम की शानदार मनभावन लाजवाब पेशकश के लिए इन्होंने हमें बधाई दी है। तो जगाराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमसे जुड़े हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म चंपा कली की कहानी सुन रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है जो जानकारी आप दे रहे हैं। तो राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली खान हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव और ये लिख रहे हैं कि चंपा कली की बारे में सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छेपा, कपिल छेपा, ईशान छेपा और पूजा परिहार और ये लिख रहे हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म चंपा कली के बारे में, बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, गीत छुप गया कोई रे बहुत सुना चाहता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और अब बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। चंपाकली की चर्चा हेमंत कुमार के बिना अधूरी है। उन्होंने फिल्म का संगीत तैयार किया। गीतों में विरह, प्रेम, सावन, शरारत, भक्ति, कई अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। जरा कल्पना कीजिए 1957 का समय, न आज जैसे रिकॉर्डिंग तकनीक, न डिजिटल एडिटिंग, न ऑटोट्यून, फिर भी आवाजों में जो गर्माहट थी वो आज भी कानों से सीधा दिल तक पहुंचती है।

0: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के,
1: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से।
0: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के,
1: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है बिरम घाट गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का। ये लिख रहे हैं कि इस फिल्म में दिग्गज संगीतकार रवि की शुरुआत हुई। इस फिल्म का मुख्य संगीत मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार ने दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में उनके असिस्टेंट सहायक के रूप में रवि काम कर रहे थे। रवि ने बाद में चलकर हिंदी सिनेमा को स्वतंत्र रूप से चौदहवीं का चांद और वक्त जैसे ढेरों यादगार गाने दिए। फिल्म में महान अभिनेता प्राण ने वीरा नाम के विलेन का किरदार निभाया था, जो बाद में कहानी में लव ट्राइंगल और ड्रामा पैदा करता है। तो अजीत जी, आपने ये बहुत सुंदर जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल, मलकापुर महाराज से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष। आप हैं फारूक अली खान, इनका भी जगह का नाम नहीं मालूम चल पाया है। और आप हैं मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गॉड, और इनको गाने और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। खजाना गेट अमृतसर से आप हैं प्रेम सागर और शुभलता। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान। भवतपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और नेहा जगदीश देवांगन। गुरमी सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों, चंपा कली के गीतों की सूची पर नजर डालें तो हमें एक दिलचस्प बात दिखेगी, वो है अलग अलग भाव यानी विविधता के गीत। कहीं मन की उमंग, कहीं इंतजार और पुकार, कहीं सावन और प्रेम, शरारत के साथ कृष्ण भक्ति और भक्ति का रंग। एक ही फिल्म में संगीत

तो दोस्तों, 1957 की फिल्म चंपा कली हमें सिर्फ एक फिल्म की याद नहीं दिलाती, हम उस दौर के फिल्म संगीत की एक झलक देखते हैं, जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकार शब्दों से दृश्य रचते थे और हेमंत कुमार उन शब्दों को धुन देते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे गायक उन भावनाओं में आवाज़ भर देते थे। शायद 6-7 दशक गुजर जाने के बाद भी जब कोई गीत रेडियो पर कहता है छुप गया कोई रे, तो हमारे भीतर कोई पुरानी खिड़की खुल जाती है। तो ये था हमारा आज का एक ही कलाकार एक ही फिल्म से कार्यक्रम। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दिस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का आगाज किया। पानी की सूझबूझ नाल वरतों ते संभाल ते दिता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलों के मुखियां की तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नूं मनाउण लई 30 नवंबर तो 4 शोभा यात्रावां कढ़न दा कीता फैसला। एशियाई खेडां च भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले च श्रीलंका नूं 147 दौड़ां नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। भारतीय सिनेमा विच इक नवा अध्याय सिरजते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 1954 च स्थापित पुरस्कारां नूं भारतीय सिनेमा दे सर्वोच्च सन्मानां विचों इक मन्निया जांदा है, जो फिल्म, फीचर फिल्मां, गैर फीचर फिल्मां ते सिनेमैटोग्राफी समेत वख-वख श्रेणियां च कलात्मक ते तकनीकी उत्तमता नूं मानता दिंदे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दी इक नवीं नीति दे हिस्से वजों पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी तों बाहर प्रदान कीते जा रहे ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत दे दृष्टिकोण नूं दर्शाउंदे होए एकता नगर विखे समारोह च देश भर दीआं सिनेमैटिक प्रतिभावां शामल होणगीआं। राष्ट्रपति तजर्बेकार फिल्म अदाकार अनंत नाग नूं साल 2024 लई दादा साहब फालके पुरस्कार वी प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अज नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने पानी की सूझबूझ नाल वरतों ते संभाल ते जोर दिता। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल हफ्ता जल प्रबंधन दीआं चुनौतियां ते सारे हिस्सेदारां

0: पहली दसंबर तो बठिंडा तो शुरू होगी सारियां यात्रावां। गुरु रविदास जी नाल संबंधित हुशियारपुर जिले के धार्मिक स्थान खुरालगढ़ साहब विखे समाप्त होणगियां। उन्होंने कहा कि श्री अखंड पाठ साहब 4 दसंबर नूं खुरालगढ़ विखे शुरू होणगे ते 6 दसंबर नूं भोग पैणगे।
1: चार शोभा यात्रावां जिहड़ियां नेगियां ओह लगातार वख-वख देश दे वख-वख हिस्सेयां च हुंदियां होईयां खुरालगढ़ साहिब पहुंचणगियां और उस तों बाद 4 दसंबर नूं श्री अखंड पाठ साहिब दे शुरुआत होगी और उस तों बाद 6 तरीक नूं भोग पाए जाणगे। सो उस दिन जिहड़ा मुकम्मल कार्ज होणगे।
0: श्री चीमा ने कहा कि साल भर चलन वाले जश्ना के हिस्से वजो सूबे भर में कीर्तन दरबारा समेत कई प्रोग्राम पहला ही चल रहे ने। इस मौके कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सौन ते सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों के सलाहकार दीपक बाली भी मौजूद रहे। केंद्रीय सेहत सकत्तर पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने आधार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ते आभा आईडी राही एक मजबूत ते व्यापक डिजिटल सेहत प्रणाली कायम की है। न्यूयॉर्क विच ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क ते चर्चा च बोलदिया उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों दी जरूरतों मुताबक प्रभावशाली हल प्रदान करने लई स्थानक ते वख-वख डेटा के आधार ते एआई मॉडल बनाए जाने चाहिए ने। एशियाई खेडां विच भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका 147 दौड़ा नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की टीम 217 दौड़ा के टीचे का पिछा करते हुए 15.4 ओवर 69 दौड़ा बना के आउट हो गई। इस तो पहला भारत ने निर्धारित 20 ओवर 3 विकटा से 216 दौड़ा बनाईया। सुमति मंधाना ने 79 दौड़ा की शानदार पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 दौड़ा पूरिया करके इतिहास रच दिता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गए। मंधाना ने पहले 4 ओवर 3 छक्के ते 4 चौके लगा के भारत नूं मैच च मजबूत शुरुआत दवाई। उन्होंने भारत की साबका कप्तान मिताली राज के 10,868 दौड़ा के रिकॉर्ड नूं भी पिछे छड्ड दित्ता। उधर भारत की महिला टेबल टेनिस टीम थाईलैंड नूं हरा के एशियाई खेडां दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। इस दौरान भारतीय कबड्डी टीम मर्दा दी टीम ने भी अज जापान के नागोआ च एशियाई खेडां दे ग्रुप ए दे मैच विच दक्षिणी कोरिया नूं 63-31 नाल हरा दित्ता। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज गुजरात विखे 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का किया आगाज। कहा सूझबूझ नाल वरतो ते संभाल ते दिता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलां दे मुखियां दी तीजी राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन। एशियाई खेडां च भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट दे फाइनल मुकाबले च श्रीलंका नूं 147 दौड़ां नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6 बजे।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की मनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहान की 2 रोज़ा तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है। नायब सदर सी पी राधा कृष्णन ने कहा है कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक ऐसा अहम प्लेटफॉर्म है जहां सभी मुतालिका फरीकैन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों से निमटने पर बातचीत के लिए यकजा हो सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। मगरब वस्ती और मुत्तसिल शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव में अगले 24 घंटे के दौरान शिद्दत आ जाने का इम्कान है। और भारत की क्रिकेट खवातीन की टीम ने एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर पहला सोने का तमगा जीत लिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तारीख रकम की है। वो ऐसी पहली खातून क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने बैन अलावा क्रिकेट में अपने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स ANTF की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मनशियात की लानत से आइंदा नस्लों को बचाने के लिए ताकतवर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। 36 रियासतों और मरकज के जिला इंतजाम इलाकों के ANTF सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जिसका इनकाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कर रहा है। मुत्तहदा अज़्म मुश्तरका जिम्मेदारी के मौजू पर मबनी इस कॉन्फ्रेंस में उन मकासद पर की गई पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जो मनशियात के कंट्रोल से मुतालिक 2026 से 29 तक के विजन दस्तावेज में बयान किए गए हैं और जिन्हें हाल ही में जारी किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मनशियात की सप्लाई में कमी,

0: जंग में कमी और नुकसानात में कमी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के इकदाम को मजीद मुस्तहकम बनाने की मुनासिब हिकमत अमली की निशानदही और उसे इख्तियार किए जाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में पानी से मुतालिक नवें भारत बैन अल-अक़वामी हफ्ते 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पानी के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया और ख़ासतौर पर कहा कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक अहम प्लेटफॉर्म है जिस पर तमाम मुतालिका फरीकैन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों पर बातचीत कर सकते हैं।
1: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These water week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: जल शक्ति के वजीर सी आर पाटिल ने पानी के तहफ्फुज़ की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को पीने का पानी महफूज और वाफर तरीके से फराहम करने की पाबंद है। पानी से मुतालिक इस साल के हफ्ते का मौजू है आबो हवा से मुतासिर ना होने वाला पानी का बंदोबस्त। 5 रोज़ा इस बैन अल-अक़वामी तकरीब में कसीर जहती प्लेटफॉर्म फराहम होगा जिसमें पॉलिसी साज, पानी के मैदान में आलमी रहनुमा, माहरीन, मुहक्किकीन, प्रैक्टिशनर्स, सनत, सिविल सोसाइटी और नौजवान पेशावर अफराद तबादले ख्याल, इख्तरा और शराकत दारी के लिए यकजा होंगे। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इनमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश से और एक सीट उत्तराखंड से है। मरकजी वुजरा हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजी और दीगर 6 अराकीन की राज्यसभा मुद्दतकार 25 नवंबर को ख़त्म हो रही है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल से राज्यसभा की एक सीट के ज़िमनी इंतखाब का भी ऐलान किया है। ये सीट टीएमसी रुकन पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे की वजह से खाली हो गई थी। इस महीने की 29 तारीख से कागजात नामजदगी दाखिल करने की शुरुआत होगी जबकि वोटिंग 16 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 सीटों के लिए एमएलसी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और वोटिंग 23 अक्टूबर को होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला साल 1954 में शुरू हुआ था जिनसे सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी होती है। इत्तला और नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड्स की यह तकरीब कौमी राजधानी के बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। इत्तला और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी से तहरीक हासिल करते हुए कौमी फिल्म अवार्ड्स की मेज़बानी मुल्क के सरकर्दा सियाहती मकाम पर की जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डा पहुंचने के बाद जनाब वैष्णव ने खास तौर पर कहा कि एकता नगर जहां दुनिया भर में मशहूर मुजस्समा इत्तेहाद कायम है, यहां सदर जमहूरिया और मुमताज़ फिल्म शख्सियतों की मौजूदगी में मुनक्किद होने वाली तकरीब से आलमी सियाहत से मुतालिक बेदारी में इजाफा होगा।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: मरकजी वजीर ने सभी रियासती सरकारों से कहा कि वो इस सिलसिले में अपनी अपनी तजावीज भेजें जिसमें वो सियाहत से मुतालिक बेहतरीन मकामात का जिक्र करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह पीएलआई स्कीम के जरिए ये तस्वूर हकीकत में बदला है।
3: कर्नाटक भारत के सरकर्दा सनती मकामात में से एक बनकर उभरा है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर तरक्की की जा रही है। पैदावार से मरबूत तरगीबात की स्कीमों के सिलसिले में रियासत का मकसद यह है कि भारत सेमी कंडक्टर का मरकज बन जाए। सेमी कंडक्टर से मुतालिक आलात और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों में बड़े पैमाने पर सरमाकारी की जाए। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले में कर्नाटक का मंसूबा है कि वो ज़्यादा कीमत वाले कपड़ों में अपनी बरामदाती सलाहियत में इजाफा करे, जिसमें टेक्निकल और स्मार्ट फैब्रिक्स भी शामिल है। कर्नाटक भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी तैयार करने और कलपुर्जे तैयार करने में मदद मिलती है। भारतीय हुकूमत की मसनूआत की तैयारी से मरबूत तरगीबात की स्कीम कारकर्दगी से मरबूत तरगीबात हैं, जिनके तहत घरेलू कारखानों में तैयार की गई मसनूआत की फरोख्त के लिए कंपनियों को सिला दिया जाता है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी वस्ती और उससे मुतसिल शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर बने दबाव में अगले 24 घंटे में मजीद शिद्दत आ सकती है। इस दौरान ओडिशा ने महकमे मौसमियात की जानिब से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई के बाद अपनी तैयारियों में इजाफा कर दिया है। जापान के आइची प्रेफेक्चुरल कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर सोने का तमगा जीत लिया है। भारतीय खवातीन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। वहीं श्रीलंका की पूरी टीम 15 ओवर्स और 4 गेंदों में महज 69 रन बनाकर आउट हो गई। इस दौरान भारत की खातून सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने तारीख रकम की है। वो दुनिया में ऐसी पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने खवातीन के बैन अलावामी क्रिकेट में 11,000 रन बना लिए हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड एशियन गेम्स के फाइनल में कायम किया। उन्होंने निशिन में कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए ये रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के साबिका कप्तान मिथाली राज के 10,868 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक ऐसा अहम प्लेटफॉर्म है जहां सभी मुतालिका फरीकैन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों से निमटने पर बातचीत के लिए यकजा हो सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात की लानत से निमटने की खातिर आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सरकार ने बैंक मुलाजमीन पर जोर दिया है कि वह हड़ताल पर जाने से गुरेज करें। हुकूमत ने कारकर्दगी से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मौकूफ रखने से इत्तफाक कर लिया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates Third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep the performance-linked incentive scheme in abeyance. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. IMD forecasts very heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win first ever gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the judicious use of water and highlighted that it should be conserved. He underlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management. He said no single institution, sector or state can address the challenges related to water in isolation and called for greater cooperation and a coordinated approach.
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These water week celebrations have proved to be significant.

0: left shelters, rescue teams and machinery ready, and directed district administrations to closely monitor vulnerable areas. All schools and Anganwadi centers in several districts have been ordered closed from today for 3 days as a precaution. Fishermen have also been advised not to venture into the sea. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Heavy rain will continue in Madhya Pradesh for the next few days. The weather department has issued an alert for several districts. A report.
2: Spell of heavy rain will begin in Madhya Pradesh from 23rd of September. According to the weather department, the system will be more active on 24th and 25th of September. In next 2 days, heavy to very heavy rain is likely in 17 districts. Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar divisions will be affected the most. Bhopal and Narmadapuram divisions are also on alert. The weather department says a low pressure area is behind this. The state has received an average of 33.7 inches of rain so far. The southwest monsoon soon will start withdrawing from the last week of September, but heavy rain is expected before that. Abhinav Goyal, Akashvani Samachar, Bhopal.
1: In women's cricket, India thrashed Sri Lanka to win the first ever gold medal in the final in Asian Games 2026 at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan. Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs as India completed a comprehensive victory by 147 runs. Batting first, India posted a commanding 216 for 3 in 20 overs. And India's women's opener, Smriti Mandhana, created history as she became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
4: Water should be used preciously where the requirement should be.

0: We met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
4: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम

0: के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
1: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
2: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
7: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ एक्ट्रेस ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। इनकी खूबसूरती के साथ, इनकी मासूमियत, एक्टिंग की सहजता और पर्दे पर दिखाई देने वाली सादगी इन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती थी।

जी हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे आज हम किस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। ये एक्ट्रेस थी रंजीता कौर। आज ही के दिन यानी 22 सितंबर 1956 को पंजाब में जन्मी रंजीता कौर के पिता गवर्नमेंट अफसर थे और माँ हाउसवाइफ। इनकी पढ़ाई शिमला के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। बेहद कम उम्र में ही इन्होंने हीरोइन बनने के सपना देख लिया था। इसी वजह से अपनी एजुकेशन पूरी करते ही ये पुणे चली गई और यहाँ आकर इन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से एक्ट

एक्टिंग का कोर्स किया और किस्मत देखिए, कोर्स पूरा करते ही इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई और रच दिया इतिहास। आकाशवाणी की तरफ से रंजीता जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इनकी लाइफ के अनसुने किस्सों के बारे में आगे हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म आँखियों के झरोके से का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को, और अभी आप जो सुन रहे हैं कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं रंजीता कौर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे एक्सट्रेस एक्ट्रेस

रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद इनके लिए फिल्मों के दरवाजे तेजी से खुलने लगे और फिर आया वो दौर जब रंजीता कौर का नाम लगातार बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ने लगा। फिल्म लैला मजनू के बाद इनकी दो ऐसी फिल्म आई जिन्होंने इन्हें दर्शकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। पहली थी आंखियों की झरोखों से, जिसमें इन्होंने सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया, और दूसरी फिल्म थी पति पत्नी और वो, जिसमें संजीव कुमार जैसे अनुभवी अभिनेता के साथ काम किया। दोनों ही फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। 70 के दशक के आखिरी तक रंजीता एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी जिनके नाम से दर्शकों को एक खास तरह की फिल्मों की उम्मीद होती थी, रोमांटिक, भावनात्मक और पारिवारिक कहानियाँ। इन्होंने ऋषि कपूर, सचिन, संजीव कुमार, राज बब्बर, राज किरण, विनोद मेहरा, अमोल पालेकर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन इनकी एक ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी जिसे हिंदी सिनेमा के दर्शक लंबे समय तक याद रखने वाले थे। उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म का ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म आदत से मजबूर फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं रंजीता कौर, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 80 का दशक रंजीता कौर के फिल्मी करियर का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। इस दौर में इन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदारों को निभाया। रंजीता ने अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी जोड़ी खास तौर से फेमस हुई। दोनों ने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, घर एक मंदिर, बाजी और गुनाहों के देवता जैसी कई फिल्मों में के साथ काम किया। फिर 1942 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता भी इनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही। फिल्म में ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, लेकिन हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने करियर की रफ्तार से अलग जिंदगी के दूसरे पहलुओं को प्राथमिकता देता है। रंजीता के जीवन में भी एक ऐसा ही समय आया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर अभी सुने इनकी फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये बेहतरीन सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रंजीता कौर की और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। किसी कलाकार के लिए कैमरे से दूर होना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन जिंदगी सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं है। एक्ट्रेस रंजीता ने अपने फिल्मी करियर के एक महत्वपूर्ण दौर के बाद एक्टिंग से दूरी बनाई। 1990 में फिल्म गुनाहों के देवता इनके शुरुआती फिल्मी दौर की अंतिम फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद इन्होंने कुछ टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स जैसे अजूबे साहिल और घुटन और नूरजहां में भी काम किया, पर इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार और निजी ज़िंदगी को समर्पित रहा। रंजीता ने बिजनेसमैन राज मसंद से शादी की और इनका एक बेटा स्काई है। फैमिली के साथ इन्होंने अमेरिका में भी कुछ समय बिताया। बाद में फैमिली पुणे में आकर रहने लगी। बावजूद इसके कि रंजीता जी के लिए सिनेमा भी इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा और यही वजह है कि 15 साल बाद इन्होंने कमबैक किया। इनकी कमबैक स्टोरी भी जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म जुल्म की पुकार का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कुछ प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनका भी नाम पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन्स मुंगेली से है मोहम्मद खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं गोत्र गोट कारची से अमर रमेश कुमार, टेलर मास्टर किशन लाल और जफर सादिक, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुरावाला से स्वर्णजीत गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुन्नूर गुलाल और अविराज सिंह, और संदीप जी, ज्योति, मन्नत, भारत, सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से तुलसी, वीना, डब्बू, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, और ये हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत। और आगे चलते हैं, ये है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल, और आगे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, और मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और फारूक अली खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और आगे चलते संबल कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जैसे जयवीर, जस्सी, सीता और गीता भी हमारे साथ है। भवरपुर बसाना से राधेश्याम देवगन, चंपा, जगदीश देवगन जी हैं। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं रंजीता जी की। 15 साल बाद 2005 में एक्ट्रेस रंजीता ने फिल्म अनजाने से बड़ी पर्दे पर कमबैक किया। फैंस के लिए इनकी फिल्मों में लौटना अपने आप में खास था। 2008 में इन्होंने अपने को एक्टर सचिन के साथ फिल्म जाना पहचाना में काम किया। ये फिल्म आंखियों के झरोखों से का सीक्वेल थी। इसके बाद 2012 में इन्होंने जिंदगी तेरे नाम फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिर काम किया। इस तरह लंबे अंतराल के बाद रंजीता और मिथुन की जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखा गया। रंजीता की वापसी ने ये भी साबित किया कि अच्छे कलाकारों की पहचान केवल इनकी लोकप्रियता के दौर से नहीं होती, इनकी पहचान उन किरदारों से भी होती है जिन्हें दर्शक सालों बाद याद करते हैं, और यही रंजीता जी की लाइफ का को दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म सत्य पर सत्ता का ये एनर्जेटिक सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग भी।

श्रोताओं, बतौर एक्ट्रेस रंजीता कौर ने अपने करियर में करीब 47 फिल्मों में काम किया। फिर पति के साथ अमेरिका में 7-11 स्टोर्स का बिजनेस संभाला और बेटे स्काई का भी ध्यान रखा। मौजूदा दौर में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंजीता जी अपनी फैमिली के साथ पुणे के गोरे गांव पार्क में रहती हैं। 70 साल की रंजीता का लुक भी काफ़ी हद तक बदल गया है, पर इनकी फिल्मों को देखकर फैंस आज भी इन्हें बड़े पर्दे पर मिस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को इस प्रोग्राम से अनुमति दीजिए, क्योंकि हम अगले प्रोग्राम में 3 बजे हाजिर होंगे मैटिनी मेलोडीज़ के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का, जिसमें हम 60 और 50 के दशक के फिल्मी गानों को आपके साथ सुनते हैं और सुनाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी किसी गीत को सुनने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी धुन बसती है और हम पहुँच जाते हैं उस दौर में जहाँ प्यार में शरारत भी थी, नज़ाकत भी थी और बातों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। 1954 की फिल्म आर पार का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। गीता दत्त की आवाज में वो चुलबुलापन, ओपी नैयर का दिलकश संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के खूबसूरत बोल, तीनों मिलकर एक ऐसा रंग रचते हैं जो आज भी सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। प्यार की राह में जरा संभल कर चलने की सलाह देता है ये गीत, अपने अंदाज में छेड़छाड़ भी करता है और एक मीठी सी चेतावनी भी है। तो आइए कुछ पल के लिए लौटते हैं उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। तो सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म आर पार का ये बेहद लोकप्रिय गीत, बाबूजी धीरे चलना।

जी हाँ दोस्तों, बाबूजी धीरे चलना। अब जरा सोचिए, जब दो दिल पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो बात सिर्फ मुलाकात की नहीं होती। दिल कुछ कहता है, आंखें कुछ और कहती है, और एहसास अपनी ही कहानी लिखने लगती है। फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ऐसा ही खूबसूरत गीत है, दिल से मिला ये दिल। साल 1954 में रिलीज हुई इस फिल्म में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी नजर आई थी। गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन ने। और जब इस गीत को अपनी आवाज़ देती हैं लता मंगेशकर, तो प्यार का ये एहसास और भी नर्म, मीठा और दिल के करीब हो जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितना भी पीछे छोड़ना चाहें, वो किसी न किसी बहाने लौट ही आती हैं। बीता हुआ वक्त, पुराने रिश्ते और वो दर्द जिसे शायद वक्त भी पूरी तरह मिटा नहीं पाता। फिल्म देवर का ये गीत भी कुछ ऐसी ही भूली बिसरी यादों को फिर से सामने ले आता है। इसे दर्द भरे गीत को अपनी भावपूर्ण आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं रोशन। तो आइए कुछ पुरानी यादों के साथ सुनते हैं फिल्म देवर का ये बेहद भावुक नगमा।

श्रोताओं, किसी के नज़र में जब दिल बेचैन हो जाए तो हर धड़कन जैसी एक ही बात कहती है, अब और इंतज़ार नहीं, बस तुम लौट आओ। ये गीत है फिल्म मधुमति का और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। मुंबई यानी सपनों का शहर, जहां हर रोज न जाने कितने लोग अपनी किस्मत आजमाने आती हैं। किसी को यहां कामयाबी मिलती है, किसी को संघर्ष, और किसी को मिलती है जिंदगी को नए अंदाज में देखने की वजह। इस शहर की रफ्तार रंग और मस्ती को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश करता है फिल्म CID का ये यादगार गीत। ये है बॉम्बे मेरी जान। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में सजा ये गीत मुंबई की ज़िंदगी और यहाँ के अल्लड़ अंदाज की एक खूबसूरत तस्वीर खींचता है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार OP नैयर की इस

0: श्रोताओं, शादी दो लोगों का साथ, दो परिवारों का मिलन और जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत होती है। लेकिन जब इस रिश्ते को गीत और संगीत का रंग मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत शादी जैसे रिश्ते को बड़े ही दिलचस्प और अपने खास अंदाज में सामने रखता है। हम तुम जिसे कहता है शादी, इस गीत को अपनी आवाज दी है सदाबहार गायक मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं कागज के फूल का ये खूबसूरत सा गीत।
1: ओ पीटर, ओ ब्रदर हैरी, ओ वल्ला, ओ मिस्टर वेरी।
2: मिस्टर आयर, आर यू देयर?
1: हम तुम जिसे कहता है शादी, जो नो है पूरा।

0: माइंड हो जाएगी आजादी।
1: दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। कभी कभी किसी से दूर होकर भी ऐसा लगता है कि शायद उस पल कहीं कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा, एक ऐसी मुलाकात की उम्मीद जो अभी हुई नहीं लेकिन दिल को उसका इंतजार पहले से है। फिल्म फिर कब मिलोगी का ये गीत भी इसी इंतजार और उम्मीद की कहानी कहता है, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मुकेश की आवाज में ये गीत की उदासी भी है और एक मीठी सी उम्मीद भी। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

0: सामीन आदाब, आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम बज़्मे नौबहार और मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज आलम। आज का मौजू नहायत अहम, दिलचस्प और हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। सामीन, ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज पर नहीं बल्कि हमारी आने वाली पूरी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। कैरियर का इंतखाब भी ऐसा ही एक अहम फैसला है। जब नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो उसके जहन में कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या मैं वो शोबा इख्तियार करूं जिसमें मेरी दिलचस्पी और पसंद है, या फिर ऐसे शोबे का इंतखाब करूं जिसमें रोजगार के ज्यादा मौके और माशी इस्तेहकाम मौजूद हो। एक तरफ वालिदैन की तवक्कात होती हैं तो दूसरी तरफ मुआशरे का दबाव, और इन सब के दरमियान नौजवान की अपनी ख्वाहिशात, सलाहियतें और ख्वाब होते हैं। तो फिर सही फैसला कैसे किया जाए, क्या पसंद को तरजीह दी जाए या मुस्तकबिल के इम्कानात को? आज की हमारी गुफ्तगू में हम इन्हीं सवालात पर गौर करेंगे, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैरियर के इंतखाब में जज्बात, सलाहियत, दिलचस्पी और मुस्तकबिल के इम्कानात के दरमियान तवाजुन कैसे कायम किया जा सकता है। तो आइए इसी अहम मौजू पर आज की गुफ्तगू सुनते हैं। मौजू है कैरियर के इंतखाब में पसंद और मुस्तकबिल की कश्मकश। शुरका हैं मोहतरमा रिदा फातमा, मोहतरमा सारा परवीन और जनाब फैजान अजहर। मुजाकरे की निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब मुदस्सिर राशिद। तो आइए सुनते हैं आज का ये मुजाकरा।
1: वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू

0: जिसके तमाम सामईन की खिदमत में मुदस्सर राशिद शमसी का पुरखलूस आदाब। सामईन, बज़्म नौबहार प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। सामईन, नौबहार यानी एक नई बहार, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, और हमारा ये प्रोग्राम भी कुछ इसी ख्याल के साथ सजाई गई एक ऐसी महफिल है जहां हम नौजवानों से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं जो उनकी ज़िंदगी, उनकी सोच और उनके मुस्तकबिल को मुतासिर करते हैं। ये वो दौर है जहां हर नौजवान के दिल में कुछ बनने के ख्वाब होता है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना होती है और अपनी एक अलग पहचान बनाने की जस्तजू होती है। लेकिन ख्वाबों के साथ सवाल भी होते हैं, कभी हालात सवाल करते हैं, कभी घर वाले, कभी समाज, और कभी हम खुद से पूछते हैं आखिर मुझे जिंदगी में करना क्या है। इसीलिए बज़्म नौबहार सिर्फ एक गुफ्तगू का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी महफिल है जहां हम नौजवानों की सोच को सुनने, उनके सवालों को समझने और उनके तजुर्बों से सीखने की कोशिश करते हैं। और जब नौजवानों के मुस्तकबिल की बात हो तो एक सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, करियर। सामईन, तो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है करियर के इंतखाब में पसंद और मुस्तकबिल की कशमकश। सामईन, आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तीन नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों और तजुर्बात की रोशनी में इस मौजू को मुख्तलिफ पहलू से समझने में हमारी मदद करेंगे। हो सकता है किसी का सफर आपको अपना लगे, किसी की उलझन आपकी उलझन हो और किसी का तजुर्बा आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। हमारे साथ मौजूद हैं सारा परवीन जो डाइटिशियन और डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका खैर मकदम है। हमारे साथ डॉक्टर फैजान अजहर मौजूद हैं जो कि BOMS यानी यूनानी की डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं, और हमारे साथ रिदा फातिमा हैं जो उर्दू की तालिबा हैं। आप तीनों का खैर मकदम है। सारा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि जब आपने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया था, क्या आपको उस वक्त पता था कि आपको क्या करियर एग्जैक्टली करना है, या फिर जैसे हम सोचते हैं, हम कहते हैं ना कि देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो वैसे ही फेज में थी आप?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग करना चाहती थी जब मैं अपनी 11th में आई थी, तो मुझे था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, वहां पे जाऊंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करूंगी। पर जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, अपने 11th में गई, तो मुझे फिजिक्स और कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उल्टा मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट आने लगा और उसके बाद मैंने वही परस्यू किया।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है इंजीनियरिंग से आप लाइक ताल्लुक रखती थी, आप उसमें करती हैं, आपको फिर बायोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का आपका रोल था जो आप इस करियर में शिफ्ट हुई?
1: जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो उस टाइम पे मेरी पसंद की ज्यादा बात थी कि मुझे क्या पसंद है, पर पसंद होने में और एक चीज समझ आने में दोनों में बहुत फर्क होता है। मेरा मानना है कि करियर, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, करियर के अंदर आपका ये जरूरी नहीं होता कि आपको क्या चीज पसंद है। एक चीज आपका पैशन होना चाहिए, आपको एक चीज पसंद होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप वो कर सकें। सिर्फ एक चीज पसंद करने से नहीं होता।
0: भी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इसी से मैं फैजान साहब पे आता हूँ कि फैजान साहब, आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप डॉक्टर कैसे बने, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था सबसे पहले किसने देखा, फैजान ने देखा या फैजान के घर वालों ने देखा?
2: मुदस्सर साहब, मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो मैंने खुद देखा, और इस ख्वाब के पीछे मेरी अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला वाक़या जो मुझे याद आता है वो मेरे छोटे भाई का बीमारी का है, जिसको एक कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज थी, जिसको आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसे आम जुबान में दिल के सुराख के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस टाइम पे उसको ये डिजीज हुई थी, तो मैं 2nd या 3rd क्लास में रहा हूँगा, उस वक्त हमारे मम्मी पापा हर वीक पे उसको लेके दिल्ली आते थे उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं ये सोचता था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज हमारे अपने शहर में नहीं हो सकता। तो उस वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आया कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमें अपने शहर के अंदर और अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है जो इलाज अच्छे से कर सकें, हर शहर के अंदर इलाज हो सके, हर बीमारी का इलाज हर शहर में मुमकिन हो सके। उसके अलावा जो एक दूसरा वाक्य है जो मेरे जहन में है और जिसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर दिया है, वो 2011 का है, जब मेरी मदर को, मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ। उस वक्त मैं क्लास 7th में था, और उस वाक्य ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जब उनके रिपोर्ट्स और स्कैन्स आए, डॉक्टर्स ने उनको देखा और उनको बताया कि आपके पास चंद महीनों की ही ज़िंदगी बाकी है, बट फिर मैंने देखा कि डॉक्टर्स की कोशिश, मेहनत और अल्लाह ताला का करम, उन्हें 10 साल की ज़िंदगी दी। वो 2021 के अंदर उनका इंतकाल हुआ,

0: मेहनत, उस लगन और उस कोशिश को जो मैंने डॉक्टर्स की देखा, तो एक अलग ही इमेज, एक सुपर हीरो वाली इमेज मेरे मन में बन गई डॉक्टर्स के लिए, कि दीज आर द पीपल्स विच मेक द लाइफ बेटर ऑफ द पीपल। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। वो मेरे दिल के अंदर एक ख्वाब, एक सपना पैदा हो गया कि मुझे अपनी जिंदगी में एक अच्छा और कामयाब डॉक्टर बनना है।
1: जी बहुत, हमें बड़ा अफसोस के साथ आपको दिखता है कि आपका जो करियर रहा है

0: करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। इससे मुझे अपना भी केस थोड़ा सा याद आता है कि जब मुझे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पसंद था बहुत ज्यादा, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो लोगों ने कहा इसमें क्या करोगे, इसमें क्या मिलेगा। और सच बताऊं कभी ये बातें अंदर तक आपको ना कहते हैं ना कि टच कर जाती हैं कि आपको क्या होगा, कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आपका जो सफर था क्या उस वक्त भी ऐसा कभी ना कभी आपके चॉइस पे डाउट आया था आपको कि मैं क्या पता मैं नहीं कर पाऊं, क्या पता मुझसे नहीं हो पाए, क्या पता मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा?
1: मुदस्सिर साहब, ये जो आपका सवाल है वो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे पॉइंट्स आए जब मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने गिव अप करने की सोची। मगर फिर जो एक मेरी पर्सनल स्टोरी थी, जो एक मेरी मम्मी की बीमारी थी और पूरा जो एक इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैंने 12th के बाद जब नीट की तैयारी करी तो पहले साल में मेरा नहीं हो पाया, दूसरे साल मैंने तैयारी करी तब भी मैं कुछ मार्क्स से रह गया। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं गिव अप करने के पॉइंट पे था। उस टाइम मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से BSc बायोटेक ज्वाइन किया, मैंने 1.5 साल वो कंटिन्यू किया। बट उस दरमियान कोविड आया, और जब कोविड आया मैंने डॉक्टर्स को दोबारा एक सुपर हीरो के रूप में देखा। तो मेरा जो ख्वाब था, एक सपना था, जो मेरे दिल में एक पौधा था जो मुरझा गया था डॉक्टर बनने का, उसको दोबारा से जान मिल गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और अपनी सोसाइटी को सर्व करना है। तो मैंने फिर अपना बायोटेक की फील्ड को छोड़ के, जो कि बहुत अच्छी फील्ड है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, उसको छोड़ के मैं दोबारा अपने सपने की तरफ लौटा और मैंने नीट की तैयारी करी। और जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था BUMS का, वो मैंने ऑप्ट किया और अब मैं एक डॉक्टर की फील्ड में हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी तरीके आपने बताया। फैजान, आपकी बात तो सुनकर लगता है कि कभी ना कभी आपकी एक चाह होती है कुछ बनने की, कुछ पसंद होती है, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। तो आपकी कहानी से अब मैं आता हूँ रिदा पे। रिदा, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब ये दौर ऐसा है कि लोग नए नए फील्ड्स में जा रहे हैं, प्रोफेशनल करियर में जा रहे हैं, आपने मैनेजमेंट को अपना छुआ, जो आप बताते हैं, आपने बताया कि आप BBA से ताल्लुक रखती हैं, तो कहा जाता है BBA BCOM जो डिग्रीज थी, अब उसके जगह लोग जो हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या सोचा था आपने कि मैं इसमें करना चाहूंगी, और इससे आपका क्या ख्वाब थे जो आप चाहती थी अपने करियर के लिए?
2: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि तमाम लोग जो हैं आफ्टर कॉमर्स, जब वो 12th अपना कंप्लीट करते हैं तो उनके पास कुछ दो चार ही ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि हमें पता है CA बचता है, CS बचता है, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, BCOM BBA। मेरा जब मैंने स्टार्टिंग से अपना 10th कंप्लीट किया था, तब से ही मुझे ये था कि मुझे बिजनेस लाइन में जाना है, मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, और मुझे हमेशा से बिजनेस ही करना था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख के इंस्पायर्ड होती थी, बड़े बड़े बिजनेसेस को देख के, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ को देख के, कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से कंपनी बिल्ड की जाती है। तो हमेशा से वही था कि मुझे भी ये चीज़ कभी ना कभी जिंदगी में करनी ही है। तो इस वजह से मैंने अपना कॉमर्स फील्ड लिया था। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे बोला कि ये क्यों कर रही हो, इससे बेहतर और ऑप्शंस हो सकते हैं। जब मैं 10th भी अपना कर रही थी और 11th में, जैसे हम सबको पता है कि फील्ड्स हमें चूज़ करने पड़ते हैं, तो बहुत से लोगों ने अपने राय मशवरे दिए कि साइंस साइड में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। तो जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ प्रोफेशंस को लेके हमेशा से एक बहुत हाई रिस्पेक्ट बनी हुई है, और कुछ को लेके, कुछ कोर्सेज को लेके एक बहुत ही ऐसा लगता है कि जिसको कुछ नहीं आता वो इन सब फील्ड्स में चले जाते हैं। लेकिन जब इंसान का एक पैशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको मुझे लगता है बरकरार करना चाहिए, बजाय इसके कि जो सोसाइटी कह रही है हमें उस पे ना जाकर अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। इस वजह से मैं अपने BBA लाइन में आई। और BBA में आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि आप कैसे बिजनेस बिल्ड करेंगे, आप मैनेजमेंट सीखते हैं। और मैनेजमेंट ये नहीं है कि सिर्फ कंपनीज में होगा, ये हर जगह, आप अपने घर में भी अगर देखें तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मैंने ये फील्ड इसलिए भी चूज किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं लोगों को समझ सकूं, इंटरेक्ट कर सकूं, क्योंकि हमें इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हम अगले को कैसे समझ पाते हैं या अगला क्या महसूस कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ाई जाती हैं। हमें लीडरशिप करना सिखाया जाता है, हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, या दूसरे को अगर हम कोई लीड कर रहे हैं, कोई ग्रुप बना रहे हैं, कहीं भी हम हैं, तो हम कैसे अगले को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें इसमें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर और इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसलिए मैंने इस करियर में आना सही समझा।
0: जी, मैं भी आपकी बात से बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो कहा कि लोग सोचते हैं कि इसमें फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, पसंद की जो आप बात कर रही थी, तो मैं भी जब मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जा रहा था, तब मेरा भी ये खुद से सवाल था कि इस फील्ड में फ्यूचर है भी कि नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे इसी काम में खुशी मिलती है तो क्यों ना मैं इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूं, और शायद इसीलिए मैंने सिर्फ डिग्री पर रुकने के बजाय अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जैसा आपने बताया कि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, बोलचाल की भाषा को और अच्छा करना चाहिए, राइटिंग पर काम करना चाहिए, अपने स्टेज फेयर को कम करना चाहिए, और धीरे धीरे चीजें आपकी जो वीकनेस होती है वही आपकी ताकत बनती जाती है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा सारा आपसे, आपने अपना करियर

0: शिफ्ट किया, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपके सफर में कोई ऐसा शख्स रहा है जो आपके पहली पहचान बना होता है, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था बहुत, इन्होंने कहा था कि तुम ये करो तो बहुत अच्छा कर पाओगी।
1: मेरे सफर के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं था, पर ऐसा एक वक्त आया था जब मेरे को एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला था एज अ करियर काउंसलर। तो मैंने बहुत करीब से देखा था कि करियर काउंसलर कैसे काम करता है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर चार लोगों को एक ही चीज पढ़ा दी जाए तो भी चार लोग एक जैसा करियर नहीं बनाते। हर किसी का सोचने का, जिंदगी को समझने का, उनके एक्सपीरियंस सब बहुत अलग होते हैं। तो उस सब के ऊपर डिपेंड करके एक इंसान की चॉइस जाती है और उसके हिसाब से बनाते हैं। उस टाइम पे जब मैंने इंटर्नशिप की तो अपने बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं मास कम्युनिकेशन कर रखा था, मैंने फूड न्यूट्रिशन किया, मैं डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट कर रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक कैसे बनाया जा सकता है। फिर मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे जाके अपना क्लिनिक खोलूंगी। उस बीच के सफ़र में भी मैंने अपनी दो तीन जॉब की, अमेजोन और यूनिसेफ में काम किया, स्किल सीखी, ये समझा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। आज मैंने अपनी जॉब ख़त्म की है, एक क्लिनिक में मैं काम करती थी यूनिसेफ के बाद चेन्नई के, एंड वो ऑनलाइन काम करते थे और वो पूरी चीज़ ऐसी थी जैसा मैं बनाना चाहती हूँ, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मुझे उस एक एक्सपीरियंस से, एक इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।
0: जी मैं समझ पाऊँ। जैसे आपने एक इंटर्नशिप जब आपने कही, जब आपने काम किया तो आपको मज़ा आने लगा, इसका लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ सीख पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, और आपको लगने लगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ आगे।
1: एक्चुअली जो इंटर्नशिप थी वो तो करियर काउंसलर की थी और मैं आज डाइटिशियन हूँ।
0: हाँ
1: मुझे उससे ये समझ आया कि एक करियर बनाने में कितना टाइम लगता है। लोग कह देते हैं आ जाओ ये कर लो, कोई आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, रिश्तेदार, आप ये कर लीजिए, आप ये ले लीजिए, साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है। पर सच्चाई में बात यह है कि हर फील्ड के अंदर लोग आगे जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: कोई फील्ड कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, और हर फील्ड के जो लोग आगे होते हैं वो अच्छा कमाते भी हैं, एक अच्छी जिंदगी भी बिताते हैं। पर जरूरी यह है पहचानना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और इंटरेस्ट और पैशन के बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पैशन की बात यह समझना बहुत जरूरी है, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आप में वो काबिलियत है। और लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत लोग साइंस ले लेते हैं पर आगे नहीं कर पाते। काबिलियत होना बहुत जरूरी है, समझ होना बहुत जरूरी है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है क्या आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे ड्रामे में होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, पर जो सुविधा शायद किसी बड़े एक्टर को या उनके बच्चों को मिलेगी वो एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलेगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तो दोनों का सफर एक बहुत अलग जाएगा। और ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है, तो इस प्रैक्टिकलिटी को समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मैंने अपनी इंटर्नशिप से ये सीखा और फिर मैंने ये सीखा कि कैसे मैं इस सब को, अपनी नॉलेज को, अपने पैशन को मिला के कैसे मैं अपना करियर बना सकती हूँ।
0: जी जी, आपकी बात से एक बात और मुझे महसूस हो रही है कि कभी कभी करियर का इंतखाब हम अकेले नहीं करते हैं, किसी की बात, किसी का एक मशवरा पूरी डायरेक्शन भी बदल देता है। इसी बात पे मैं फैजान आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जब आप अपना करियर को सिलेक्ट कर रहे थे, चूज कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि अपना यार ये मत करो, बहुत वक्त लगेगा। लाइक कहते हैं कि जब आप डॉक्टर की फील्ड में जाते हैं, जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत वक्त लगता है, पहले तो अपनी पढ़ाई को पूरी करने में बहुत वक्त लगता है, फिर उसके बाद आप जब उसमें ऑन ग्राउंड आते हैं तो उसमें बहुत वक्त लगता है प्रैक्टिस के बाद, तो ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा।
2: दरअसल साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो मेडिसिन फील्ड है, जो एक डॉक्टर की फील्ड है, उसके अंदर बहुत वक्त लगता है। 8 से 10 साल की पढ़ाई, उसके बाद अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करने के लिए 2 से 3 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद कहीं जाके एक आप अच्छी अमाउंट में कमा पाते हो। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मेरे घर वालों ने और मेरे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा बैक किया है कि तुमको जो करना है, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कभी भी मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं आने दिया कि तुमको जल्दी सेटल होना है या तुमको पैसा कमाना है, तुम्हें जो है इतना टाइम हो गया अभी तक तुम कमा नहीं रहे हो। और इसके अंदर मैं अपने बड़े भाई का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने मुझे हमेशा बैक किया और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम्हें जो मन पसंद है तुम वो चीज़ करो।
0: तो आपने बताया कि फैमिली का कितना आपका रोल रहा है, आपको बैक सपोर्ट बहुत मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। तो आपने अपने पैशन को बेसिकली फॉलो किया है, ये आपका पैशन बन गया।
2: जी बिल्कुल, ये मेरा पैशन था और बचपन से, जैसे मैंने आपको अपनी कहानी

0: बताइए, बचपन से ही मेरा एक पैशन था और मैंने इसको फॉलो किया है और उसको जिया है।
1: जी, और आगे भी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं लगभग। तो मैं आप पे आता हूँ रिधा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मैनेजमेंट में, आप कितना इंटरेस्ट था आपको, आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद था, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स आपने इम्प्रूव करी, तो आपका भी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि अक्सर हम माशरे में देखते हैं जो खवातीन होती हैं उनको ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी, तो आप लोग जैसे हमारी जो आज की नौजवान खवातीन हैं वो इस बात को बताती हैं कि कैसे आज भी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
2: जी, तो मैं अगर आपसे हकीकत बयान करूं तो मेरे जो करियर में या जो मैंने अपना ये चूज़ किया है बिज़नेस मैनेजमेंट, इसमें मेरे घर वालों का कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ये आज़ादी दी कि मैं क्या करना चाहती हूँ ज़िंदगी में। उन्होंने मुझ पर कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें साइंस ही लेनी है, तुम्हें आर्ट्स ही लेनी है, तुम्हें कॉमर्स ही लेनी है। उन्होंने सारी ही चीज़ें मुझ पर रखी कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है तुम उस पर जाओ, तुम जो करना चाहती हो, तुम्हारा जो पैशन है तुम उसको फॉलो करो। दूसरी बात, आपने जो ये मुझसे पूछी है कि ख्वातीन आजकल ये बहुत ज़्यादा हर काम को करने में ये शो कर रही हैं कि हाँ, हर काम वो भी कर सकती हैं जिस तरीके से मर्द हज़रात करते हैं, तो पहले के तौर पे जैसे लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया करता था कि वो पढ़ेंगी नहीं, सिर्फ घर में ही रहेंगी। और आज भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ घरों में या कुछ हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़की को पढ़ाओ लेकिन एंड में उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आफ्टर शादी या मैरिज के बाद उन्हें काम ही करना है घर का। लेकिन हमारी जो ख़वातीन है, जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हर फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं, और वो ये साबित कर रही हैं कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं। सिर्फ औरतें घर पे बैठना उनके लिए नहीं है काफ़ी,
1: जी
2: वो बाहर जाके भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने पैशन को पूरा कर सकती हैं, जो उनकी जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनका इंटरेस्ट है उसको वो फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि सारा साहिबा ने बताया कि पैशन और जो हमारा करियर है, बहुत से लोगों का पैशन होता है बहुत कुछ, लेकिन हमें पैशन और करियर में ये बैलेंस करना ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसमें आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी फील्ड हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन म्यूज़िक होता है या डांस होता है, लेकिन उसमें इतना अमाउंट या वो इनकम जनरेट नहीं कर सकते, तो वो अपने जॉब्स में चले जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं या अलग अलग फील्ड में जाके वो कर लेते हैं, मगर वो अंदर से खुश नहीं होते। तो वो फिर आगे चल के अपनी 40, 50, 60 साल की जब उनकी ज़िंदगी हो जाती है तो फिर वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं।
1: जी
2: तो मेरा ख्याल ये है कि इंसान को सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस में अच्छा हूँ और मैं अपने आप को किस चीज़ में बेहतर बना सकता हूँ। हमें स्किल्स लेनी चाहिए। आज का जैसे है, तमाम फील्ड्स हैं या तमाम कोर्सेज हैं वो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं,
1: जी
2: वो हमें स्किल्स नहीं सिखा पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थ्योरी के साथ साथ स्किल्स भी लेनी चाहिए। जैसे AI चल रहा है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह ही, मतलब मार्केट में पूरा हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थ्योरिटी डिग्रीज के साथ साथ अपने अंदर स्किल्स भी लेनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले वक्त में और अच्छा रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर सकती हैं।
1: जी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरह से आज हमें जो है टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, और हमें चलना भी चाहिए, और हमारा नौजवान चल भी रहा है साथ में। तो सारा, मैं आप पे आना चाहूँगा, करियर को बहुत फाइनल चीज़ समझ लेते हैं लोग आजकल, कि 18 से 20 साल की उम्र में ही एक डिसीजन लेना है और फिर लगता है बस ज़िंदगी भर यही करना है। लेकिन जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि आपने कितने करियर शिफ्ट करते रहे हैं, आपने बदले, तो अगर कोई यंग पर्सन 25 से 30 की एज में भी या आगे बढ़कर भी कहता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊंगा, मुझे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको रास्ता बदल लेना चाहिए अपना?
3: मेरा मानना है कि अपनी लाइफ के अंदर सीखते रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे एक ही चीज़ करनी है। जैसा रिदा ने बताया, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। जाएं, कुछ भी सीखें, आगे जाएं, फील्ड बदलें, देखें आगे, इंटर्नशिप करें, जॉब करें। आप जितना सीखते हैं आप उसे उतना ही अप्लाई कर पाते हैं। अगर आज आपको नहीं समझ आ रहा कि कुछ नहीं करना या क्या करें, तो कश्मकश में नहीं बैठें, रोए नहीं, सोचे नहीं, जाएं, जो पहली चीज़ मिल रही है उसे करना शुरू कर दें। धीरे धीरे धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि कहाँ आपको कितना करना है, तो कल ये आप स्किल्स बढ़ा बढ़ा के अपने करियर को यूनिक बना सकते हो। ये एक इतना यूनिक करियर होगा जो दूसरा बंदा कर ही नहीं पाएगा। कोई इंसान आगे बढ़ने के लिए उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप चाहे एक कछुए की तरह हल्के हल्के चलें, पर खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जाके फिर भटक जाएं, फिर जाएं, वैसे नहीं करना चाहिए। आप का गोल एक ही होना चाहिए

0: कि आप चलते रहें। चलते चलते चलते चलते रास्ते भी मिलते जाते हैं और आपको समझ भी आने लगता है कि आपका क्या पैशन है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या आगे करना है,
1: और मंजिल भी मिलती जाती है। तो यही वाली बात है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और यही एक नौजवान को सोचना चाहिए कि हमें कहीं रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अब हम इसमें हैं तो अब इसके आगे हम और कुछ नहीं है। आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं वो बच्चा था जो कभी माइक पर बोल भी नहीं पाता था। एक वक्त तो ऐसा था कि मेरे हाथ कपकपाते थे, डरता था कि माइक पे कैसे बोलूंगा यार, माइक के नाम से डर लगता था। पर एक उस्ताद थी जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही करते करते एक अपना पैशन बन गया, आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए, डायरेक्शन हो गए। और बचपन में अक्सर ये होता है, हमें कहते हैं नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये करना है, वही पुरानी जितनी भी सोच है ये सब करना है आपको। पर कोई ये नहीं सोचता कि कुछ आगे भी आप, और आजकल अपॉर्चुनिटी कितनी आ गई है जब से AI आया है, जब से टेक्नोलॉजी आया है, नौजवानों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी और खुल गई हैं। पर हमें महदूद नहीं करना है, हम लोग अपने आप को महदूद कर लेते हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो फैजान साहब, मैं आप पे इस बारे में आना चाहूंगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जब फेल होते हैं ना, हमें लगता है कि यार इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ। मैं भी बहुत बार फेल हुआ। मुझे लगा कि एक बार क्या हुआ था, मैं माइक पर गया तो मैं बिल्कुल भूल गया था, मैं सोच रहा मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो ऐसा होता है तो मुझे लगा यार शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ। पर उसके बाद मैंने अपने आप को समझाया, मुझे किसी ने समझाया कोई बात नहीं, एक बार गिरोगे, चींटी की कहानी याद है ना, एक बार चढ़ती है फिर गिरती है फिर चढ़ती है, तो वो लास्ट तक कोशिश करती रहती है। और कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, जब आप लास्ट में, जब आप कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप फेलियर का आपने सामना किया होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आगे, मैं अब गिर गया, मैं हार मान रहा हूं, तो उस वक्त आपने क्या किया था?
2: मुदस्सर साहब, मेरा एक मानना यह है कि कभी भी इंसान जो फेल होता है तो उसको अफसोस नहीं करना चाहिए, उसको जो है दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। जब तक कोई इंसान फेल नहीं होगा तब तक वो यह नहीं सीख पाएगा कि उसने क्या गलती करी। तो जितना ज़रूरी किसी को इंसान को सक्सेस मिलना है, उतना ही ज़रूरी मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ फेलियर्स होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सक्सेस उसे उतना नहीं सिखाती जितना एक फेलियर उसे सिखाता है। और फेलियर उसे मजबूर करता है कि वो अपनी जर्नी को देखे, अपने सफ़र को देखे कि उसने कहाँ क्या कमी करी है। और मैंने अपनी फेलियर से बहुत सीखा है, और मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। और जिस इंसान ने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लिया कि हाँ मैं, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग फेल होते हैं, मुझे अब यहाँ से रिवाइव करना है, मुझे यहाँ से दोबारा उठना है, दोबारा शुरू से शुरू करना है, तो वही इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, एक बेहतर मुस्तकबिल बना पाता है।
1: जी, आपने बहुत ठीक कहा इस बात पे फैजान साहब। और जिस तरीके से आपने कहा कि नौजवान को कोशिश करते रहनी चाहिए, तो फैजान साहब आपकी बात से मुझे एक भी चीज़ याद आ रही है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो रिदा, मैं आप पे इसी बात पे आ रहा हूं कि आपको भी कभी कभी लगा होगा कि मुझे सब कुछ हासिल करना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं फेलियर का आपने भी सामना किया होगा, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया, और आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो ओवरकम करें?
3: मैं फैजान साहब की बात से ही आगे बढ़ना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से हम यूथ को या हम हर एक बच्चे को जो भी अपना करियर चूज करता है या करियर में आगे बढ़ रहा है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है वो अपने अपने में मुख्तलिफ होता है। हर एक बंदे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर अलग इंटरेस्ट होता है, अलग स्किल्स होती हैं, तो हमें अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी वीकनेस को सीखना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, और हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और उससे नई नई चीज़ें और हमें सीखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने इंटरेस्ट और पैशन को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और उसी में काम करना चाहिए। जैसे कि सिर्फ एक करियर को लेकर आप ना चलें, आप उसको स्विच कर सकते हैं, स्विच ना भी करें तो आप आगे नई चीज़ें सीखें, आप उसमें, आजकल देखें हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं हमारे इंडिया में, अगर देखें सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट का इसमें इतना हाल है कि इसमें इतना हाथ है कि उन्होंने नई नई यूथ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाई हैं, स्किल इंडिया ले लें, विकसित भारत ले लें, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चों को स्किल सिखाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे लिए काफ़ी नहीं है आज की दुनिया के लिए, हमें स्किल सीखना, हमें नई चीज़ें सीखना, अपने अंदर नए काम को सीखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, रोज़गार की बात करी। तो रिदा, आपकी बात से मुझे ये भी पता चला कि हम अपनी नस्ल को सिर्फ रोज़गार के लिए तैयार कर रहे हैं, हालांकि रोज़गार ज़िंदगी के लिए होता है, ज़िंदगी रोज़गार के लिए नहीं। सामईन, तो आज की इस गुफ्तगू से शायद हम इतना ज़रूर समझ पाए कि करियर का इंतखाब सिर्फ एक पेशा का इंतखाब नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने, अपनी सलाहियत पर यकीन करने और अपने मुस्तकबिल को अपने अंदाज में तराशने का सफ़र है। हमारे साथ मौजूद

0: थे सारा फैजान और इदा फातिमा, जो कि बीबीए से ताल्लुक़ रखती थी। तो उन्होंने, इन सब ने अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक शेर के साथ कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
1: करियर के इंतखाब में पसंद और मुस्तकबिल की कश्मकश समीन इस मौजू के तहत अभी आप ये मुझा

0: आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक शेर के साथ कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
1: करियर के इंतखाब में पसंद और मुस्तकबिल की कशमकश। समीन, इस मौजू के तहत अभी आप ये मुज़ाकरा सुन रहे थे। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को

0: और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में अपने रेडियो से जुड़े सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ।
1: Cinema lovers across the nation and around the globe, where Narmada flows with a timeless grace under Sardar's gaze in this sacred space, the silver screen weaves its magic untold to crown Indian cinema's masters in gold. Along with my co-commentator, Ms. Neelam Thapliyal, and the team of Akashwani Vadodara in Ahmedabad, I, Dr. Shailendra Singh Jadeja, welcome our listeners to the live broadcast of the landmark 72nd National Film Awards. Good afternoon.
0: जी हाँ श्रोताओं, इस समय हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक समारोह स्थल पर जहां दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आकाश को छूती खड़ी है। आज यहाँ भारतीय सिनेमा के वर्ष 2024 के श्रेष्ठ कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों को देश के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों की गूंज के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने दिल्ली की सीमा लांघी है और यह ऐतिहासिक क्षण अपने आप में एक फिल्मी पटकथा जैसा लगता है।
1: For the first time in our half a century, this historic ceremony has moved beyond the national capital to the majestic bank of the river Narmada. Today, Ekta Nagar serves as the ultimate crossroads where art, culture and national unity converge.
0: श्रोताओं, कुछ कहानियां पर्दे पर उतरती हैं और कुछ सीधे दिल में। सिनेमा उन दोनों के बीच का वह पुल है जहां भारत अपनी कहानी खुद सुनाता है। कहानियां हमारी विरासत हैं, किरदार हमारी पहचान और सिनेमा वह आईना है जिसमें दिखता है हमारा महान, अतुल्य, समृद्ध, गौरवशाली, विविधतापूर्ण, शक्तिशाली, सांस्कृतिक, अखंड भारत।
1: To truly appreciate the weight of this afternoon, we must look back to 1954 when the government of India instituted these honors as the state awards for films. Established under the Ministry of Information and Broadcasting, their founding vision was to promote cinematic excellence, encourage artistic craftsmanship, and build a unified national identity through the medium of films.
0: श्रोताओं, आज मेरे सामने जो दृश्य है उसे केवल भव्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। सभागार रोशनी से जगमगा रहा है, मंच पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रतीक चिन्ह अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई दे रहा है। सामने की पंक्तियों में भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन, धनुष, ममूटी, संजय मिश्रा, रणदीप हुड्डा, अनंत नाग और मनोज मुंतशीर जैसे कई जाने पहचाने चेहरे देख सकते हैं।
1: Over the past seven decades, the National Film Awards have evolved into the highest and most respected cinematic honor in our country. Unlike commercial award shows driven by box office collections, these awards celebrate artistic depth, socio-cultural relevance, and technical mastery across all 22 constitutional languages, bringing mainstream blockbusters, regional gems, and independent non-fiction onto the same prestigious national platform.
0: इन पुरस्कार पाने वाले चेहरों पर किसी पर उत्सुकता है तो किसी पर वर्षों की मेहनत के बाद मिलने वाले सम्मान की प्रतीक्षा। ऐसे अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्रोताओं, सिनेमा की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना।
1: And now let us listen to what Secretary INB श्री चंचल कुमार जी has to say as his welcome address begins।
2: गौरव का विषय है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल सिनेमा की उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की यात्रा का आईना भी है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाली फिल्में हमें बदलते भारत की झलक, भारत की कहानियाँ और इसमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। हमें प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो आत्मविश्वास अर्जित किया है, भारतीय सिनेमा उसका साक्षी रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की उपस्थिति दिखाई देती है। आज फीचर फिल्म श्रेणी में 34 भाषाओं की कुल 400 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से ज्यूरी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नॉन फीचर फिल्म में 24 भाषाओं की 161 फिल्मों के आवेदन थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में आज 23 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 3 पुरस्कार दिए गए हैं। इन पुरस्कार के चयन की पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम और विशेषज्ञता योगदान करने वाले सभी श्रेणियों के सम्मानित ज्यूरीगण को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सिनेमा, जिसे कभी केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है। गढ़वाली और तुलु जैसी भाषाओं में बनी फिल्मों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है। लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर और अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं। हमें खुशी है कि बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने तकनीक में ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान बना ली है। इस वर्ष की विजेता फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा की व्यापकता और रचनात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। आर्टिकल 370 का प्रभावशाली ऐतिहासिक कथानक, श्रीकांत में दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणादायी कहानी, मिथ्या का गहन आत्मविश्लेषणात्मक तथ्य, ब्रह्मयुगन का वातावरण, सिनेमाई शिल्प और उत्कृष्ट प्रस्तुति, इसी प्रकार पुष्पा 2 और कल्कि 2898 AD जैसी लोकप्रिय फिल्मों की सफलता मुख्य धारा के सिनेमा की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से ओझल रहती थी। भंगार, श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंतनाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारी किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरू होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है, उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सम्मानीय अतिथि

0: देवियों और सज्जनों, आइए आज की इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
1: The National Film Awards are divided into three comprehensive primary sections: Best Writing on Cinema, Non-Feature Films, and Feature Films. And finally, the icing on the cake is the Dadasaheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the Best Writing on Cinema.
2: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर केचनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानी रूवुदे निमा गागी, नानी रूवुडे नाना गागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकिया।
1: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that, let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations, and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honors like Swarna and Rajat Kamal medals, are the final epitome of these awards.
2: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
1: The best book on cinema publisher is also now getting felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. The work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
2: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
1: श्री संजीव श्रीवास्तव टेक्स होम द स्वर्ण कमल फॉर हिज इनसाइटफुल हिंदी फिल्म क्रिटिसिज्म। हिज राइटिंग्स डेमोंस्ट्रेट अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमैटिक फॉर्म, नैरेटिव न्यूएंसेस एंड सोसाइटल रिफ्लेक्शंस इन मॉडर्न फिल्म। The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Sri Lakulesh Ghai receives a certificate and a special mention.
2: श्रोताओं, यह documentary film पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
1: डायरेक्टर लकुलेश गाय रिसीव्स अ स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट फॉर हिज सटल पोर्ट्रेल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट्स। द शॉर्ट फिल्म वीव्स अ पोएटिक विजुअल थ्रेड अराउंड क्राफ्ट हेरिटेज एंड ह्यूमन इमोशन। द ज्यूरी कमेंडेड इट्स स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज अ स्पेशल मेंशन चोला डोरा और सुई। Director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
2: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक

0: कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
1: In progress are the non-feature films awards. Next in line is the best script, Obur, Hindi and Kashmir. Script writer Shri Faraz Ali receives a Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।
1: The next award in the category is Best Narration Voiceover, Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Miss Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for an engaging, warm and articulate voice-over narration. A vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
0: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
1: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, परत 41 डिग्रीज चा मागावर। म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स अ रजत कमल। शिवपाल सिंह कांग विंस फॉर हिज इवोकेटिव म्यूजिकल स्कोर दैट एलिवेट्स द फिल्म्स इमोशनल लैंडस्केप, ब्लेंडिंग एकॉस्टिक टेक्सचर्स with traditional melodies. His composition provides a subtle sonic heartbeat to the narrative. The score elevates key visuals, beats without overpowering the storytelling.
0: श्रोताओं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए चलिए आपको सीधे मंच से जोड़ते हैं।
2: अधिकारियों की भावनाओं को एक मार्मिक कथा का रूप दिया है। बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए रजत कमल, तमिल फिल्म ब्लू के लिए श्री टी एस हरिहारा सूदन को प्रदान किया जा रहा है।
3: As you would have figured, for exceptional sound design and immersive sonic textures, waves, silence and ambient shifts that evoke a child's wish to see a whale, blending hope, emotion and the vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
4: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every weaver's lived.
2: श्री एडमंड रैंसम को अपनी भावपूर्ण काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, जो भारत के प्राकृतिक दृश्यों को एक जीवंत कैनवस में बदल देते हैं, जहां मनोहर छायांकन, गति, हथकरघा बुनाई की कालातीत कलात्मकता और भावना का उत्सव मनाती है। और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में गोल्डन लोटस अवार्ड, करतल ध्वनि के साथ तैयार हो जाए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान।
5: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा।
3: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Sri Narendra Shanti Kumar Ferodia receives the Silver Lotus.
2: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हमसफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है।
3: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void स्पार्क

0: a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
1: बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जेबी प्रोडक्शंस को मूक फिल्म टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर, निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट।
0: द फिल्म इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स सिंपल येट प्रोफाउंड आर्टिस्ट्री। The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss, and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi Rajasthani English language film Piplantri, a tale of eco-feminism. On behalf of Johnson Suraj Film International, Ms. Garima Singh is receiving the Silver Lotus.
2: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत, ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है।
3: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है, आपको दिख रहा है कि।
4: श्रोताओं, इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने, जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह। यह फिल्म हिंदी, राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है। इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गाँव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। इस गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी।
5: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नाम इन हिंदी। प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत, रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो। शी इज गोइंग टू रिसीव रजत कमल। प्रोड्यूसर लिनेट डिमेलो एक्सेप्ट्स रजत कमल फॉर बैकिंग दिस स्ट्राइकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन द राम नामी सेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
4: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री राम नामी समुदाय पर केंद्रित है। यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवाकर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है।
5: Acclaimed director Bharat Bala Ganapati receives the Rajat Kamal for Best Documentary Ram Nami in Hindi. Next in line is Best Arts Culture Film Mai Nida in Hindi. Producer is Sampreshan Multimedia, represented by Shri Atul Gangwar, and he is going to receive a Rajat Kamal.
4: श्रोताओं, मै निदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है। उनके शेर दिल को छू जाते हैं। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं।
5: नेक्स्ट इन लाइन इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी इज बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फिल्म काकोरी इन हिंदी। प्रोड्यूसर KSR ब्रदर्स एंड मिंटी मिश्रा, रिप्रेजेंटेड बाय श्री जसविंदर सिंह, ही इज गोइंग टू रिसीव अ रजत कमल।
4: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है। फिल्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
5: The same film, Best Biographical Historical Reconstruction Film Kakori receives the Best Director Award in the Non-Feature Film category, and to receive the award comes Shri Kamlesh Kumar Mishra. He is going to receive the Rajat Kamal.

0: डायरेक्टर कमलेश कुमार मिश्रा विंस फॉर हिज मेटिकुलस हिस्टोरिकल रिसर्च एंड शार्प नैरेटिव पेसिंग. He brings revolutionary figures to life with clarity, avoiding sensationalizing while honoring sacrifice. The jury praised its educational value and dramatic tension.
1: श्रोताओं, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संथाली भाषा की फिल्म अंगेन को, और इसके लिए निर्देशक रवि राज मुर्मू को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है. श्रोताओं, इस फिल्म में एक लोक कथा का उपयोग आधुनिक सामाजिक मुद्दों, विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है. यह दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा, संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है.
0: नेक्स्ट इन लाइन इज द फिल्म मेकर सुमेरा रॉय क्लेमिंग द टॉप नॉन फीचर अवार्ड द स्वर्ण कमल एज बोथ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. फिल्म भंगार explores urban waste, informal labor, and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
1: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है. फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देता है. यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है.
0: And now

निर्माता, निर्देशक और टेक्नीशियंस और देश विदेश से पधारे अतिथिगण, मीडिया के साथियों और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमय बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की, ऑल ऑफ यू वर्क्ड वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन, एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। गेटिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड इज सच अ ग्रेट ऑनर, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द विनर्स। हर फिल्म के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। आज का सम्मान न केवल जो विजेता यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं, बल्कि उस पूरी टीम का है जो पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से और अपनी डिसिप्लिन से फिल्म को फिल्म के देखने लायक जैसा बनाते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टेक्नीशियंस, सिनेमाटोग्राफर्स, ऑल ऑफ यू हु मेक दी Make it possible for the winners to come here and stand on the stage. आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के विजेता श्री अनंत नाग जी भी हैं। आज आपका विशेष अभिनंदन। We wish you so many congratulations. You have done great service to the film world. A very versatile talent. I've interacted with Mr. Nag. He has served the film world for more than 5 decades. Give him a huge round of applause. Standing ovation for Anant Nag ji. Great. Thank you. Thank you. आप सब जानते हैं कि जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को एक अलग तरीके से पूरे देश में, कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स

not get the opportunity to be mentored or be guided by some really important personality from the film world, how do we create a program for that talent? हमने आपके फिल्म वर्ल्ड से हमारे प्रसून भाई जोशी को सरकार में ले लिया दूरदर्शन में. प्रसून भाई, why don't you wave at the, so now he is with us. So he was always with us. Now we have given him a very big task. Young talent को, raw talent को identify करने के लिए प्रसून भाई will be making a team, and I'll be requesting all of you from the film world जो यहाँ पे present है और जो प्रेजेंट नहीं है उनमें से भी प्लीज वॉलंटियर, प्लीज दोज हु वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस जर्नी वेयर रॉ टैलेंट, वेयर गुड टैलेंट, वेयर टैलेंट विच इज हिडन इन दी विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स ऑफ आर कंट्री, उस टैलेंट को एक नया मंच मिले, उस टैलेंट को एक बड़ा स्टेज मिले, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. हेल्प करोगे? कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे? कैन आई सी वन हैंड, टू हैंड्स, थ्री हैंड्स? ओ वाओ, ये तो बात बन गई, इतने लोग तैयार है साथ. प्रसून भाई, आपका काम आधे से ज्यादा पूरा हो गया. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट. दूसरा है वेव्स 2027. वेव्स 2027 अगले साल अक्टूबर में करेंगे. अब तक बहुत अच्छे तरीके से वेव्स का फॉलोअप चल रहा है. वेव्स बाजार में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और अब इस अगले एडिशन का 2027 में विल डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स एंड मेक वेव्स एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी देयर फॉर द क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स.

0: into my co-commentator Neelam's territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi ye aina hai aur cinema us aina e wajood par chamakti hui roshni. Har parda ek dastaan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi dastaanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films, Maya Jahan in Thalem, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
1: श्रोताओं, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवा ध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है। यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है।
0: प्रोड्यूसर सुनील नायक टेक्स होम द रजत कमल फॉर ब्रिंगिंग गढ़वाली कल्चर टू द नेशनल स्टेज। ढोली फिल्म सेंटर्स अराउंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस इन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन द हिमालयन हिल्स। द फिल्म वॉज कमांडेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रिजर्वेशन वैल्यू।
1: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता।
0: बेस्ट गढ़वाली फिल्म ढोली डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स अ रजत कमल। ही विंस फॉर हिज सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ माउंटेन लाइफ एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज। His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is best Telugu film Kamiti Kurallovu. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
1: Shrotaon, Kamiti Kurallu, Andhra Pradesh ke ek gaon ki prishthbhoomi par bani ek film hai, jisme bachpan ke doston ke beech ke gaadhe rishton, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
0: सेम फिल्म आल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। श्री यदु यामसी विंस फॉर हिज डायनेमिक एंसेंबल स्टेजिंग एंड नॉस्टैल्जिक नैरेटिव फ्रेमिंग। ही मैनेजेस अ लार्ज कास्ट ऑफ न्यूकमर्स व्हाइल मेंटेनिंग क्रिस्प ड्रामेटिक कंट्रोल। हिज डायरेक्शन कैप्चर्स ऑथेंटिक रूरल वार्मथ एंड इमोशनल कमिंग ऑफ एज मोमेंट्स। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट ओडिया फिल्म लहरी। Producer Jilik Motion Pictures, represented by Miss Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमृत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई उड़िया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
0: Lahari delves into human relationships, artistic passions and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line

0: Mine is the best Marathi film, Mukkam post Bombivli Vadi. Producer Vivek Films, represented by Shri Bharat Dilip Shitode. He is there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है। इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है।
0: नेक्स्ट फिल्म इन द लैंग्वेज कैटेगरी इज बेस्ट मणिपुरी फिल्म सुनीता, प्रोड्यूसर स्काईलाइन पिक्चर्स एंड कंपनी, रिप्रेजेंटेड बाय श्री यमुनम ब्रजेन सिंह। Producer Yomanam Brajen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the northeast to national prominence.
1: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है, जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है।
0: डायरेक्टर श्री यमुनम अजीत सिंह ऑल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म सुनीता। He wins for his realistic, compassionate and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the best Malayalam film, Feminichi Fatima, producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
1: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है। ज्यूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है।
2: शरद मित्तल को रजत कमल का सम्मान।
3: The story beautifully blends grief, love and cultural identity with remarkable sensitivity. The film offers deeply rooted narrative marking significant milestone for Konkani cinema. And the director of the film, Sri Radhesham Tipalwa, is receiving the Silver Lotus.
2: Film Mog Asum ko ek aisi bhavnatmak kahani ke liye puraskrit kiya ja raha hai, जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है। अपनी जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
3: Also, the director of the film, Shri Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.
2: मोग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए।
3: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
4: What is your name, young man?
5: Sir, my name is Shrikant Bola.
2: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है, जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्र पुरस्कार। इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदानी।
3: श्रीकांत ट्रांसेंड्स द कन्वेंशंस ऑफ बायोग्राफिकल ड्रामा टू डिलीवर अ स्टोरी ऑफ होप विद ऑनेस्टी एंड ग्रेस। The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran produced by Cineman Productions.

0: admitted, and Sri Amit Desai to receive the Silver Lotus.
1: Beauty and a Beast. भेगा था।
2: फिल्मारण अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
0: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

73वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 73वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है।

मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब ने दृढ़ संकल्प से तत्कालीन रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके एक और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक और अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के महत्वपूर्ण योगदान को इस एकता नगर में लोह पुरुष सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से यथा योग्य गौरव दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का एकता नगर में पहली बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम, हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है, क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमीकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाएं हैं, गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन है, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास है। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सव से समृद्ध है। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कसुम्बो, काइपोचे, फोर्स 3 और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहां हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है।

0: गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, VFX या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के आयोजन से गुजरात की यश कीर्ति में एक नया मोरपंख जुड़ा है। हमें इस अवसर का सौभाग्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने में गुजरात को अग्रसर रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: द फिल्म इज रायन, प्रोड्यूसर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस कावेरी कलानिधि, शी वुड बी देयर टू रिसीव द रजत कमल।
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से श्रीमती कावेरी कलानिधि को रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है और निर्देशक धनुष को भी रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
2: The production combines high technical scale with visceral family drama. It stands as a commercial and critical highlight of modern Tamil cinema. Feature film best in the category of the language Tamil is Rayan, and the director is Shri Dhanush. Dhanush claims his second award of the ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film, Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: श्रोताओं, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
2: प्रोड्यूसर नील दत्त एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर दिस डीपली पर्सनल होमेज टू लेजेंडरी ऑशियर मृणाल सेन। द फिल्म एक्सप्लोर्स द मेंटर डिसिपल रिलेशनशिप इन 1980s कोलकाता फिल्म सर्कल्स। इट इज ऑल्सो रिसीविंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म चलचित्र आइकॉन। एंड हियर कम्स श्री अंजन दत्त। वेटरन आर्टिस्ट अंजन दत्त विंस फॉर डायरेक्टिंग अ डीपली रिफ्लेक्टिव सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिब्यूट टू हिज मेंटर।
1: श्रोताओं, अब श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म में जुई फूल को दिया जा रहा है सम्मान। इसके निर्माता श्री जादुमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसे फिल्म के निर्देशक श्री जादुमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
2: Best Assamese film Joyful receives awards for producer and also for the director. Shri Jadumani Datta is also there to receive the award as a director. It is one for guiding Joyful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope

0: In shared humanity, the resurrection delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film Maharaja in Tamil language, wins the best action direction film award. Stunt choreographer Sri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन में तमिल पिक्चर महाराजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिल रहा है अनिल अरसु को। इन्हें मंच पर पुरस्कार ग्रहण किए करते हुए हम देख सकते हैं।
0: The next in line is the award for the best choreography and in Hindi Stree 2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम।
0: The sequence became a national pop culture moment demonstrating choreography's power in mainstream cinema. Here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, मैदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मनोज मुंतशिर को दिया जा रहा है पुरस्कार। फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है।
0: The poetic lyrics that capture national pride and sporting grit, Manoj Muntashir comes on the stage and receives the award for his lyrics in the film Maidan. Next in the category is best music direction background score. Amaran film Tamil, music director Shri G.V. Prakash Kumar is there to receive the award on stage.
1: Film Amaran, Tamil film Amaran के लिए background music G.V. Prakash Kumar के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
0: The powerfully and emotionally charged background score really touches the heart. Film Amaran, music director Shri G.V. Prakash Kumar receiving the best background score award. Next in line is the best music direction songs for the film Article 370. Music director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
1: श्रोताओं, संगीत निर्देशन और गीत में अब मिल रहा है आर्टिकल 370 के लिए गीतों के संगीत निर्देशन के लिए शाश्वत सचदेव को रजत कमल का सम्मान।
0: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category best makeup for Kamiti Kurolu Telugu film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है। और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलु के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान।
0: The next award is best costume design for the film Pushpa, The Rule Part 2. Telugu film costume designer Shri Sheetal Iqbal Chand Sharma receives the award. Sheetal Iqbal Chand Sharma wins for creating distinct, larger-than-life character attire rooted in rustic textures. His designs give distinct visual identity to rival factions and regional cultural attire. The costumes played a massive role in shaping the film's iconic visual style. The next award is Best Costume Design again. Pushpa The Rule Part 2, Telugu costume designer Miss Dipali Noor also receives the co-award.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दो डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया है। पुष्पा द रूल पार्ट 2 में दीपाली नूर और पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लिए ही शीतल शर्मा को रजत कमल से सम्मानित किया गया है।
0: नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कल्कि 2898 एडी इन तेलुगु प्रोडक्शन डिजाइनर श्री नितिन जिहानी चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर दिस फिल्म कल्कि 2898 एडी बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन।
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो तमिल में बनी है मूवी कल्कि 2898 एडी

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर

सर्वश्रेष्ठ लेखन की जूरी के अध्यक्ष मान्य श्री ए के चंद्रशेखर जी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मान्य श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे। पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आजाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। एक छोटा सा निवेदन भी मैं जरूर करूंगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे, किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खानपान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में

0: विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा जो सारे देश में एक जैसी है, आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है, सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजय लक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है, और गीत है अंगुवाना कोनिलो।
2: वैकोम विजय लक्ष्मी अर्न्स रजत कमल फॉर कमांडिंग पिच परफेक्ट वोकल डिलीवरी ऑफ अंगुवाना कोनिलो। Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Kikothing in Bengali. Child Artist, Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
1: Shrotao, category hai Sarvashreshth Bal Kalakar ki, aur aapko bata de कि ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें ओंको की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए, जो बंगाली फिल्म है, उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती, जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं।
2: यंग गीता श्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्टवार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस। शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस। हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर। नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट तपोमोय देव। तपोमोय देव शेयर्स टॉप चाइल्ड आर्टिस्ट ऑनर्स फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड विटी परफॉर्मेंस। हिज कॉमिक टाइमिंग एंड अनइनहिबिटेड एक्टिंग bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Onko Ki Kathin in Bengali is Shri Riddhiman Banerjee.
1: Shrotaon, 35 Chinna Katha Kadu Telugu film ke liye Arundev Pothula ko bhi mil raha hai Rajat Kamal ka samman. Aur movie Mithya, yani Kannad movie Mithya ke liye अतीश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है, शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी।
2: श्री अरुण देव पोथुला विंस रजत कमल फॉर पोर्ट्रेइंग अ यंग बॉय स्ट्रगलिंग विद स्कूल मैथमेटिक्स।

0: performance captures frustration, innocence, and determination with absolute sincerity. He anchors the film's narrative heart alongside veteran actors. And next in line is the child artist, Shri Atish S. Shetty. He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion, and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight. His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the Best Actress in a Supporting Role. Kannada film Mithya, supporting actress Miss Roopa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दो अभिनेत्रियों को मिला है। कन्नड़ा फिल्म मिथ्या के लिए रूपश्री वरकाड़ी को मिलता है रजत कमल का सम्मान और दूसरी फिल्म तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, दो अलग भाषाएं, दो अलग फिल्में, लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है।
0: Both the supporting actresses, Ms. Roopashree Varkadi and Ms. Sanchana Namidas, have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bakshak in Hindi, supporting actor, one and only, Shri Sanjay Mishra.
1: श्रोताओं, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, जो मिल रहा है संजय मिश्रा को। अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं। भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, रजत कमल का सम्मान।
0: संजय मिश्रा's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His character serves as the conscience of hard-hitting story and the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370।
0: नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। नाउ द डायस इज शेयर्ड बाय टू ग्रेट चैंपियंस ऑफ एक्टिंग। फर्स्ट कम्स For the movie Chandu Champion in Hindi, actor Shri Karthik Aryan. He earns a historic shared award with the one and only Shri Mammootty for the film Brahmayugam in Malayalam.
1: श्रोताओं, मंच पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा से लोकप्रियता पाई, सोनू के टीटू की स्वीटी से मजबूत पहचान, भूल भुलैया 2 से बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब चंदू चैंपियन में एक बिल्कुल अलग चुनौतीपूर्ण भूमिका। इसके बाद मिल रहा है ममूटी को बेस्ट एक्टर का सम्मान।
0: Screen legend Mammootty shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the best direction award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periaswamy receives the Swarna Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी। यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन

0: जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है।
1: राजकुमार पेरिया स्वामी इन द फिल्म अमरन, हिज डायरेक्टोरियल विजन ऑनर्स रियल लाइफ हीरोज विद एस्थेटिक ब्रिलियंस एंड डिग्निटी। ही बैलेंसेस ऑथेंटिक टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन विद टेंडर पर्सनल स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, 35 चिन्न कथाकोडु, तेलुगु फिल्म, प्रोड्यूसर एस ओरिजिनल्स एंड वॉल्टर प्रोडक्शंस, रिप्रेजेंटेड बाय श्री सृजन यरबोलू।
0: जी हाँ श्रोताओं, बच्चों की दुनिया, उनकी जिज्ञासा, उनके सवाल और उनकी नजर से समाज को देखने का प्रयास, सिनेमा की यही खूबसूरती है। वह हर उम्र के बच्चों से, लोगों से संवाद कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को मिल रहा है रजत कमल, नहीं स्वर्ण कमल का सम्मान।
1: इस फिल्म को दोनों कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। द फिल्म इज रिसीविंग अवार्ड्स इन बोथ द कैटेगरीज फॉर प्रोड्यूसर एज ऑल्सो द डायरेक्टर। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू, प्रोड्यूसर एस ओरिजिनल्स एंड वॉल्टर प्रोडक्शंस, फॉलोड बाय डायरेक्टर श्री नंद किशोर इमानी। Director Nandakishore Imani shares the Swarna Kamal for directing an engaging narrative about overcoming learning fears. His light-hearted direction treats children with dignity while delivering a vital message on empathy in education. The next is the category of best feature film promoting social values, and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satyajyoti Films, represented by Shri Thyagrajan T.G. comes on to receive the Rajat Kamal.
0: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को। तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है।
1: Producer Thyagrajan accepts the Rajat Kamal for his scale, epic tackling operation, caste barriers and freedom struggle story. Next in category is the best feature film promoting social values. Captain Miller in the film in Tamil receives the best director award. Shri Arun Matheshwaran comes on stage. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.
0: श्रोताओं, अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को। बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार।
1: The wholesome entertainer Kalki 2898 AD receives the award for best producer and director both, received respectively by Shri Chalasani Ashwini Dutt and Shri Nag Ashwin Singareddy. Next in line is the best debut film of a director, Swatantra Veer Savarkar in Hindi, directed by Shri Randeep Hooda, wins the honors.
0: Shrotaon, Sarvashreshth Navodit Nirdeshak का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई, और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
1: After the best debut director comes the turn of the best feature film, and that is the Hindi feature film Article 370. Producer Geo Studios and B62 Studios, represented by Shri Aditya Dhar, is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal, for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film, Article 370, Hindi director, Shri Aditya.

0: We go through the history, reminiscing those times of Malgudi days and the film Kaliyug, where he portrayed an aristocratic businessman, or a loving male character with Simi Garewal. He has received Karnataka State Best Actor Award, Filmfare Awards, and Karnataka Rajyotsava Award, Karnataka Sahitya Academy Award, Karnataka State Lifetime Achievement Award, and now is the time for him to achieve the Dada Saheb Phalke Award. He walks to the screen and receives the award from the president as the hall is coming up in thunderous applause. His various characters are being depicted on screen. Let's now go on to the actual stage to listen from him.
1: University ने सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। केवल कला में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। ये 1988 से 1994 तक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे तथा 1994 से 1999 तक ये न केवल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे बल्कि इस दौरान कर्नाटक के मंत्रिमंडल में बतौर बेंगलुरु विकास मंत्री कार्य भी किया। चाहे मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा हो या न्यू वेव सिनेमा, दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर इन्होंने अपनी अभिनय परिपक्वता का प्रमाण दिया। आज भारत सरकार भारतीय सिनेमा में इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर रही है।
2: Best Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to confer Dada Saheb Phalke Award for the year 2024 upon Sri Anant Nag, and I now invite Sri Anant Nag to come forward and receive the highest and the most distinguished recognition in Indian cinema. Let's put our hands together as we give a standing ovation to Sri Anant Nag ji, for the artist who is recognized for more than 5 decades of natural performances, from landmark parallel cinema classics to beloved Kannada comedies and nuanced later roles. Sri Anant Nag has enriched Indian cinema with rare versatility, grace and humanity. Ladies and gentlemen, Sri Anant Nag getting Dada Saheb Phalke Award for the year 2024.
3: Kartal Dhwani ke saath Abhinandan Bharatiya Cinema ke atyant sammanit aur lokpriya kalakar ka, jinhone vibhinn bhashaon mein apni vishisht kala sadhana se desh ki vividh cinemai paramparaon ko samriddh kiya, जिनकी सादगी में गरिमा, सहजता में प्रभाव और प्रत्येक भाव अभिव्यक्ति में असाधारण गहराई दिखाई देती है। अपने बहुआयामी प्रतिभा और स्मरणीय प्रस्तुतियों से भारतीय सिनेमा की विरासत को गौरवान्वित करने वाले श्री अनंत नाग जी।

0: परम सम्मानीय श्री अनंतनाथ जी, आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाएँ जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। अपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और स्वजन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्रों और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और स्वजन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीयता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भोंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री समीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों स्वजनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल सांतोनियो वीर सावरकर उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से खेल जगत के प्रसिद्ध होने का सपना देखने वाले भारतीय सैनिक श्री मुरलीकांत पटकार 1965 के भारत पाक युद्धों के दौरान घायल हो गए। गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती हूँ। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म अंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कृत श्री रविराज मुर्मू को मैं बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश सेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी भी क्षेत्र में महिलाओं के, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: Thank you, Honorable President. Let us all rise for the national song and the national anthem.

0: अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्य केन्द्र शासित प्रदेशानां मादक द्रव्य विरोधी विशेष बल प्रमुखानां तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् द्विदिवसात्मकं सम्भाषणं भावि संततेः मादक द्रव्य दुर्व्यसनात् सुरक्षा प्रदानाय एका महती सुदृढ़ा पीठिका भूत्वा सेविष्यते। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन संयोजिते अस्मिन् अधिवेशने 37 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः एएनटीएफ प्रमुखाः भागं गृह्णन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अहमदाबाद विमानपत्तनं संप्राप्य महतीं नीतिगत घोषणाम् अकरोत्। तेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रेरणया प्रभावितः सन्तः अग्रिमाः राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कार समारोहाः देशस्य श्रेष्ठ पर्यटनस्थलेषु आयोजयिष्यते। अहमदाबाद विमानपत्तने वार्ताहरान् आहूय तेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः स्वपर्यटनस्थलानां प्रस्तावाः आहूताः। यस्य राज्यस्य प्रस्तावः श्रेष्ठो भविष्यति तत्राज्यम् अग्रिम पुरस्कार समारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 53वें अधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धिः गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्। सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधन मण्डलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्। वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यद् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायां अनिश्चिततायां सत्यां 53 अधः मंदकाले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपं अबाधित गत्या संवर्धते। कुआलालंपुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति येन अतिवासः अवैध स्थिति शोषणम विधिसम्मत कार्याचरणम च भवन्ति। उच्च आयोग अवदत् यत् वास्तविक पर्यटका वैधम सत्यापनीयम च प्रलेखम अवश्यम वहन्तु यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकाया पुष्टि आवासारक्षणम आगमन दिनांकस्य दिनत्रयानंतरम मलेशियन डिजिटल आगमन पत्रस्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरणम षट्मासस्य वैधतायुत पासपोर्ट च। भारतीय वायुसेना दलेन जापान वायु आत्मरक्षा दलेन च अद्य जोधपुर वायुसेना स्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यासः वीर गार्डियन 20-26 इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां अद्य सनो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पंचक्षेप चक्रीय 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रीडायां आदित्ये जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दल

0: अद्य जापान देशम् आयोजिते उपान्त्य पूर्वचक्रे आयोजक जापान देशम् पराभूय भारताय पदकम् प्रासाधि इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। राजेश भाई, हम अपने कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में सबसे पहले खास बात कर लेते हैं कि आज किसी खास का की जयंती है।
1: बिल्कुल।
0: और वो है वी एस श्रीनिवासन शास्त्री।
1: बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनिवास शास्त्री भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी जयंती उनके राष्ट्र सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुधार के योगदान को आज याद करने का दिन है। वी एस श्रीनिवास शास्त्री का पूरा नाम वालंगाईमन शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री था। उनका जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के वालंगामाईन में हुआ था। वे प्रसिद्ध शिक्षक और विद्वान थे।
0: जी हाँ, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सामाजिक सुधार और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। शास्त्री जी अपने उत्कृष्ट वक्तृत्व और प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सिल्वर टांगिट ऑटर के नाम से भी जाना जाता था। वे भारतीयों के अधिकारों और सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके को महत्व दिया।
1: बिल्कुल। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े रहे। उन्हें शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना। वे दक्षिण अफ्रीका सहित विदेशों में भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रहे। उनके भाषण और विचारों का व्यापक प्रभाव था। उनका जीवन ईमानदारी, सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक कर्तव्य का उदाहरण माना जाता है। 22 सितंबर को उनकी जयंती पर उनके योगदान और विचारों को याद किया जाता है। मतलब ये कि वी एस श्रीनिवास शास्त्री का जीवन हमें
0: शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था श्रीनिवास जी की जयंती की बात। और कार्यक्रम के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम क्यों ना मनोरंजन करें अपने भाई बहनों का।
1: बिल्कुल। तो कृष्णपाल रातूर रागनी के जरिए क्या कह रहे हैं तेरी भोली भाली शान देख के, तो आइए सुनते हैं। पहले रागनी से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम।

0: है उससे बहुत आकर्षित होते हैं और वो गांव में जा करके अपनी छुट्टियां मनाना पसंद करते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: वो देखना चाहते हैं, वो अपना अनुभव एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं वहाँ जाकर। तो आइए सुनते हैं इस पे एक बातचीत कृषि पर्यटन को लेकर कि क्या कुछ संभावनाएं हैं। इस पे प्रगतिशील किसान हैं हर्षवर्धन त्यागी, इनसे बात कर रहे हैं नीलम मदान। तो आइए पूरी बातचीत सुनते हैं।
2: याद आती है मुझको खेतों की वो कच्ची मेड़, बहुत याद आता है मुझको बरगद का वो घना पेड़, बहुत याद आती है मुझको सोंधी सोंधी वो खुशबू, बहुत याद आती है मुझको शाम अपने गांव की। हम सबके भीतर एक गांव बसा हुआ है और हम सब चाहते हैं कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी जिसके लिए हम अपने गांव से निकल कर आए थे, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन एक कसक, एक याद हमारे गांव की हमेशा हमारे साथ रहती है। और ये बहुत जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि जहां से जो हमारी जड़ें हैं उनको हम याद रखें और उनकी तरफ कभी कभी लौटें भी सही। और इसके लिए एक पूरा जो वातावरण तैयार किया है वो है हमारा ग्रामीण पर्यटन, जिसके लिए सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में जाएं, वहां की संस्कृति देखें, वहां के पकवानों का स्वाद लें और वहां से जो हमारे आदर्श गांव है वहां से हम कुछ सीख के आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो इस संस्कृति को संभाले हुए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व हमारे साथ है, हर्षवर्धन त्यागी, जो हमारे साथ स्टूडियो में है और इन्होंने ग्रामीण पर्यटन के लिए एक बड़ा काम किया है और हम उनकी यात्रा के बारे में उनसे ही जानेंगे। तो आइए हम उनका करते हैं स्वागत। हर्षवर्धन त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम जानना चाहते हैं कि ये आपकी जो परिकल्पना थी, जो कॉन्सेप्ट था ग्रामीण पर्यटन का, ये आपके मन में कैसे आया? क्या आप गांव से जुड़े हैं? आपके जो पूर्वज थे वो गांव से जुड़े हुए थे? आपके मन में क्या आया, मतलब हम सब जानना चाहते हैं।
3: देखिए, मैं शहर में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे जो फोर फादर्स हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, वो सभी किसान परिवार से जुड़े हुए थे। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई सब शहर में हुई, दिल्ली जैसे राजधानी में हुई, हमारे गांव का जो जुड़ाव जो परिवार का था वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों से मिला हुआ था, और गांव अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, आकर्षित करते थे। तो जो हमारे पूर्वजों की हमारे पुश्तैनी जमीनें थी वहां हम साल में एक दो बार जाया करते थे घूमने फिरने के उद्देश्य से, और ऐसे ही हर साल जाते जाते जब धीरे धीरे वो लगाव धीरे धीरे और बढ़ने लगा उम्र के साथ साथ, तो अंदर ये उत्साह पैदा हुआ कि क्यों ना अपनी जड़ों के साथ जुड़ा जाए, और जो भी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से मैंने सीखा है शहर में, उस शिक्षा का इस्तेमाल हमारी जो देहात की जो हमारी जो जमीनें हैं, खेती किसानी है, उसके साथ जुड़कर कुछ ऐसा किया जाए जो कि मेरे, जिससे उनको एक संतोष मिले कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमारी धरोहर को जो है आगे बढ़ा पा रही है। तो वहीं से ये प्रेरणा मिली और वहीं से ये उत्साह जगा, और मैंने जो है 2019 में अपने गांव की तरफ रुख किया वापस, और सोचा कि वहां कुछ ऐसा किया जाए जिससे आत्मा को शांति भी मिले और अपने परिवार को जो है एक अच्छा वातावरण दे सकूं, और अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जा सकूं कि मेरी अगली पीढ़ी मुझे याद रख सके।
2: हम सब जानना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये है कहाँ के, कौन सा उनका गांव है?
3: देखिए, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बदशाना गाँव में हमारी जो है खेतीबाड़ी है, और वैसे में जो मेरा मूल गांव है वो उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का मकनपुर गांव है, लेकिन जब 1988 में हमारी यहाँ पे जमीनें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी तो फिर हमारे दादाजी जो तीन भाई थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ जनपद के बदशाना गाँव में ये जमीनें ले ली थी। तो 88 से हमारी खेतीबाड़ी जो थी, और हमारे जो दादाजी वगैरह थे वो खेतीबाड़ी कर रहे थे, फिर मेरे फादर क्योंकि शहर में रहते थे, मैं भी शहर में पला बड़ा, मेरी शिक्षा शहर में हुई, और हर साल हम जाते थे खेतों की तरफ, उस माहौल को जीते थे। लेकिन 2019 में एक अचानक से मेरे अंदर जो है ये उत्साह जगा, अपनी जो ये जमीनें हैं जो हमारे दादाजी ने धरोहर के रूप में रखी हुई हैं, इनको जो है हम इस्तेमाल करें आज की आधुनिक कृषि की पद्धति को इस्तेमाल करते हुए। और मैं जब गांव की तरफ जाता था देखता था बहुत ज्यादा मात्रा में किसान जो थे केमिकलों का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं खेतीबाड़ी में, और जब आप उस चीज को देखोगे बारीकी से तो आपको लगेगा कि आपके भोजन में जो केमिकल है उसको आपको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, जिसके कारण दुनिया भर की बीमारियां हमें होती हैं। तो वहां से प्रेरणा मिली कि मैं अपने खेतों को रसायन मुक्त करूंगा पहले, और अपने खेतों पर अपने परिवार के लिए रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक विकल्पों से या जैविक विकल्पों से खेतीबाड़ी करेंगे और अपने परिवार का जो है हम जो खाना पीना है उसको शुद्ध करेंगे। यहां से शुरुआत 2019 में मैंने की व्यक्तिगत रूप से। और जैसा कि आपने ग्रामीण पर्यटन की बात की, ये कोई उद्देश्य नहीं था ग्रामीण पर्यटन का, बस पहली शुरुआत थी अपने लिए।

0: रसायन मुक्त खेती करना, अपने परिवार के लिए रसायन मुक्त खेती करना
1: जी।
0: और जब मैंने वो खेती करी और जो उसका उत्पादन मेरे परिवार के लिए मैं करता था, उससे जो सरप्लस जो था, जो एक्स्ट्रा मेरे पास होता था, उसे बेचने की एक बड़ी समस्या थी कि उसे बेचने के लिए हम कहाँ जाएं। अगर हम बाजार में मंडी में ही जाएं जहां पर और रासायनिक किसान जाते हैं, वही भाव मिलेगा जो उनको मिलता है, जबकि हम प्राकृतिक खेती में उत्पादन जो है वो उत्तम गुणवत्ता का करते हैं, बिना रसायनों का करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसान चाहेगा कि उसको उसका अच्छा दाम मिले, और वो दाम देने के लिए शहर के लोग तैयार होते हैं, लेकिन शहर तक जो किसान है उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती। मैं क्योंकि शहर में पला पड़ा था, मेरे नेटवर्क थे, मेरे परिचित लोग थे, मित्र थे जो शहर में रहते थे, वो चाहते थे रसायन मुक्त चीजें मिले, और मैं खुद पैदा करने लगा था, तो मैंने उन्हीं के साथ संपर्क साधा और उनके माध्यम से और लोगों से मैं धीरे धीरे जुड़ता गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने हमारे जो फार्म है उसको जो है इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें बागवानी और फल सब्जियों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनाज भी होते थे, साथ में हम मधुमक्खी पालन हमने शुरू किया, शहद उत्पादन शुरू किया। तो ये सब चीजों को हमने डेमोस्ट्रेट करने के लिए जो शहर में हमारे उपभोक्ता भाई थे उनको हमने अपने ग्राम में अपने अपने जो फार्म पे वहाँ आमंत्रित करना शुरू किया। वो परिवार के साथ आते थे, एक दिन का वहाँ स्टे करते थे, वहाँ के वातावरण को देखते थे। चूंकि हमारा गाँव जो है जहाँ हम खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं वो बहुत ही नजदीक है माँ गंगा के, तो गंगा स्नान करने का उन्हें अवसर मिल जाता था। ऐसे करते करते लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारे फार्म पे आते थे तो अपने सोशल मीडिया पे माध्यम से फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करते थे, उनसे और परिचित लोग उनसे जुड़ते थे, तो देखते देखते और लोगों को जानकारी मिलने लगी, वो उनके संपर्क के माध्यम से हमारे साथ संपर्क में आने लगे। और आज के समय में हमारी स्थिति है कि हम हर शनिवार इतवार कोई ना कोई परिवार शहर से जो है हमारे फार्म पर आता है और वो वहां पर जो है समय व्यतीत करता है, उस वातावरण को जीता है, हमारे उत्पादों को खरीदता है, और साथ में जो है जो रूरल टूरिज्म जिसकी भारत सरकार भी आज बहुत कोशिश कर रही है कि प्रमोट किया जाए, उस तरफ वो ऑटोमेटिकली ही चलने लगा। और आज लगभग मुझे जो है 7 वर्ष हो गए हैं खेतीबाड़ी करते हुए, और ग्रामीण पर्यटन की तरफ जो है हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अपने फार्म को हमने इस तरह से विकसित किया है, हम लोगों को जो है फार्म स्टे का आनंद भी लोग वहां उठाते हैं, साथ में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, प्राकृतिक खेती कैसे होती है ये हम सिखाते भी हैं, मधुमक्खी पालन हम लोगों को सिखाते हैं, अन्य किसानों को सिखाते हैं। कुल मिला के इस तरह का छोटा मोटा प्रयास हमने किया है, हम जो है अपने तरफ से जितना हो सकता रहा है कर पा रहे हैं
1: जी। यानी कि जो आपका परंपरागत ज्ञान था, है ना, जो आपने थोड़ा बहुत कृषि के बारे में जानते थे, उसमें आपने विज्ञान को मिलाया,
0: बिल्कुल
1: वैज्ञानिक विधि से, और इसे कृषि को एक ज्ञान आधारित उद्यम बनाया, एक व्यवसाय की तरह किया। तो सबसे पहले जब हम परिवार से शुरुआत करते हैं तभी तो गांव के बारे में सोच सकते हैं, तभी तो देश के बारे में सोच सकते हैं, हम आगे बढ़ें और सबको साथ लेके बढ़ें। तो अभी जो आपने वहां पे फार्म टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे कितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है?
0: देखिए, जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं वहाँ के जो किसान होते हैं उनके पास। लेकिन जैसा कि हमने आगे बढ़ते हुए इस ग्रामीण पर्यटन को अपने साथ अपना एक एक्टिविटी का पार्ट बनाया, साथ में हमने एक अपना FPO बनाया 2022 में।
1: FPO बनाया
0: जी, उस 2022 में FPO बनाने के बाद हमने जो है अपने साथ और किसानों को जोड़ा, और आज लगभग 800 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी FPO की कड़ी में ही हमने ग्रामीण पर्यटन को साथ में लेते हुए फूड प्रोसेसिंग को साथ में जोड़ा, जिसमें हम अपना तेल का एक्सपेलर लगा चुके हैं, अपना खुद तेल हम तैयार करते हैं। उसके अलावा हमने जो है अपना शहद उत्पादन की छोटी सी यूनिट लगाई हुई है। उसके अलावा हम जो है वहाँ पे फल और सब्जियों की ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर मार्केट तक पहुंचाते हैं, अपने उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो इस सभी कामों में लगभग 50-60 जो लोग हैं गांव देहात के हमारे साथ जुड़े हुए, उनको रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। और उसके अलावा 800 किसानों को जो हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं, और उनका भी प्राकृतिक तरीके से उत्पादन कराकर सीधे उपभोक्ताओं तक बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें उचित लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 800 किसानों के परिवार जो है वो आज हमारे इस FPO के माध्यम से लाभ उठा पा रहे हैं।
1: तो ये FPO का जो आपने बनाना जब बनाया तो आपने कहाँ मतलब जाके बात की और कैसे सहायता मिली आपको, किससे संपर्क किया आपने?
0: देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने पूरे देश भर में 10,000 FPO बनाने का एक लक्ष्य रखा था, और उस लक्ष्य के अंतर्गत हमारे जो देश में जो FPOs बनाए गए उसी में ही एक FPO बनाने का लक्ष्य जो था वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से हमारे हापुड़ जनपद में था। हमारा जो FPO है ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और शुरुआती दौर में जो है लगभग 300 किसानों से शुरुआत की थी, और आज 800 किसान हमने रजिस्टर करा लिए। इसमें हमारे जो सदस्य हैं और उन्हीं का जो उत्पादन है उसको कैसे प्रोसेस करके, प्रसंस्करण करके, या उसमें जो है वैल्यू एडिशन करके हम जो है उसे उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और पंजीकरण सहकारिता विभाग से है, तो हमने हमारे किसान के जो KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो सहायक आयुक्त सहकारिता का जो विभाग है हापुड़ का, वहां पर इसका पंजीकरण कराया शुरुआत में। और साथ में हम जो है अभी निर्यात के भी अवसर जो है अपने FPO के माध्यम से किसानों के लिए खोल रहे हैं। बीते वर्षों में

0: हमने कुछ सब्जियों का निर्यात किया था, तो इस प्रकार से हम जो है सभी किसानों के हित में इस एफपीओ को लेके चल रहे हैं।
1: जी, गुणवत्ता होगी तो निर्यात के लिए अवसर भी ज्यादा हमारे सामने आएंगे। और युवा प्रगतिशील किसान हैं आप, और व्यवसायी कहूंगी, व्यवसायी किसान हैं आप, जिन्होंने कृषि को एक व्यवसाय की तरह किया है, आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, मैं तो देश के सभी युवाओं से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि हम बात करते हैं विकसित भारत की, और विकसित भारत जो है वो तभी संभव है जब इस देश का युवा, इस देश की जो आत्मा है जो कि गांव में बसती है, उसको तरफ रुझान बढ़ाएगा। और गांव के विकास की तरफ जब हम चलेंगे, हमारे देश के युवा जो है गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण रोजगार के तरफ जो है विकल्प बढ़ाने की तरफ प्रयास करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की तरफ प्रयास करेंगे और मुड़कर देखेंगे अपने गांव की तरफ, तभी हम विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और मैं अपने देश के सभी युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो बजाय रोजगार ढूंढने के, रोजगार पैदा करने के अवसर बनाने की तरफ चलें, जिसमें भारत सरकार और राज्यों की सरकारें भी जो है मदद करती हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री लघु सूक्ष्म लघु उद्योग की तरफ से जो है पीएमएफएमई योजना चलाई जाती है, जिसमें किसी भी किसान परिवार हो या कोई अन्य परिवार भी हो, उसमें कोई भी युवा अगर रोजगार करना चाहता है तो 35% तक का अनुदान जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी भी छोटे रोजगार को करने के लिए। और उसी के माध्यम से हमारे जो हापुड़ जनपद में है, हमारे कई किसान परिवारों को हमने जो है रोजगार के लिए छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाई। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास कर अगर देश के युवा रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने के अवसर अगर बनाना शुरू करेंगे तो भारत भी विकसित होगा, वो स्वयं विकसित होंगे और उनका परिवार जो है वो आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश तभी आगे बढ़ेगा अगर हमारे गांव आगे बढ़ेंगे, और गांव को आगे बढ़ाने में अगर आप जैसे युवा प्रगतिशील किसान आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हम जो हमारे विकसित भारत का लक्ष्य है हम उसे जरूर प्राप्त कर पाएंगे। और हर्षवर्धन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये बातचीत सुन रहे थे प्रगतिशील किसान से कि क्या कुछ संभावनाएं हैं कृषि पर्यटन को लेकर। और अब बात करेंगे किसानों के लिए वैज्ञानिक भंडारण तकनीक, उस तकनीक के बारे में जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ फसल की सही तरीके से भंडारण करना भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरिता, और वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों से अनाज, दाल, तिलहन, फल, सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, साथ ही नमी, कीट और फफूंद से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
3: जी हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है कि किसान को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और वैज्ञानिक भंडारण तकनीक अपना कर आप इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इस तकनीक की अगर हम बात करें तो इसमें है कि आप अनाज को अच्छी तरह से सुखाना, जैसे कि आप भंडारण कर रहे हैं तो उसके पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखाएं, और अनाज में अधिक नमी रहने पर देखा जाता है कि फफूंद और कीट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए फसल को धूप या उचित यांत्रिक ड्रायर से आप सुखाकर सुरक्षित नमी स्तर तक ला सकते हैं।
2: बिल्कुल, इसके अलावा साफ सफाई जैसे टूटे, संक्रमित और खराब दानों को अलग कर देना चाहिए। हवादार भंडार गृह हो, मतलब वेंटिलेशन हो, यानी गोदाम में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि नमी जमा ना हो। फर्श से ऊंचाई पर भंडारण रखकर जरूर करें। अनाज की बोरियों को सीधे जमीन पर रखने के बजाय लकड़ी के पैलेट या प्लेटफॉर्म पर रखें। नमी से बचाव की आपने बात की तो गोदाम की छत, दीवार और फर्श में सीलन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कीट नियंत्रण की बात करें तो भंडारण से पहले गोदाम की सफाई और आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक कीट नियंत्रण उपाय जरूर किए जाएं। इसके साथ ही एयरटाइट भंडारण यानी उपयुक्त परिस्थितियों में हरमेंट या वायुरुद्ध कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: और कहते हैं कि भंडारित अनाज की का ना समय समय पर जांच करते रहें, यदि तापमान, नमी, बदबू या कीड़े या फफूंद दिखाई दे तो तुरंत उचित कार्रवाई आपको कर लेनी चाहिए। और भाई अगर लाभ की बात करें तो वैज्ञानिक भंडारण से अनाज की जो गुणवत्ता है ना वो बनी रहती है, कटाई के बाद होने वाला जो नुकसान है वो घटता है, फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और किसान अपनी उपज को उचित समय पर बेचकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, इसके अलावा धातु के डिब्बे और साइले यानी छोटे और बड़े स्तर पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी है धातु के डिब्बे या फिर साइलो। इसके अलावा तापमान और नमी की निगरानी जरूर होनी चाहिए, जैसे बड़े गोदामों में सेंसर के माध्यम से तापमान और आर्द्रता की निगरानी की जा सकती है। नियमित निरीक्षण हो, समय समय पर दानों में कीट, फफूंद, बदबू या नमी की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है यानी जल्दी खराब होने वाले उपज के लिए

0: नियंत्रित तापमान वाली सुविधाएं उपयोगी है।
1: यानी कि अच्छी फसल का सही मूल्य आपको तभी मिलेगा जब फसल कटाई के बाद भी सुरक्षित रहे। तो वैज्ञानिक भंडारण आप अपनाते हैं तो नुकसान घट जाएगा और किसान जो है अपनी आय को सुरक्षित बनाए रख सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: वैज्ञानिक भंडारण के फायदे की बात सरिता आपने की, तो फसल की बर्बादी और भंडारण नुकसान कम होता है, अनाज की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है, कीट और फफूंद से होने वाला नुकसान कम होता है, किसान को अपनी उपज तुरंत कम कीमत पर बेचने की मजबूरी से बचने में मदद मिल सकती है, बेहतर गुणवत्ता वाले उपज से बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है और साथ ही खाद्य सुरक्षा और किसान की आय दोनों को मजबूती मिलती है।
1: तो ये बात हम कर रहे थे किसानों के लिए वैज्ञानिक भंडारण तकनीक के बारे में, और अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अगर सरल शब्द में अगर इसका अर्थ समझाए तो जो वस्तुएं भारत में बनाई जा सकती है उसका उत्पादन भारत में बढ़ाना और भारत को दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना। इसका मतलब है केवल विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ भारतीय कंपनियां छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स, कारीगरों, उद्यमियों को भी उत्पादन बढ़ाने के अवसर देना जरूरी है। और भाई अगर बात करें राजेश भाई, तो इस प्रक्रिया में तीन बहुत जो बातें हैं महत्वपूर्ण, एक तो निवेश है, उत्पादन है और रोजगार है। अगर देश में कारखाने लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और कई अन्य सेवाएं हैं जिसकी मांग भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम समय के साथ बहुत सारे क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे बहुत सारे हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, मेडिकल डिवाइस और सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में भारत की घरेलू जो ज़रूरतें हैं पूरी करने के साथ साथ निर्यात क्षमता बढ़ाने की भी संभावना बनती है।
0: बिल्कुल, आपने मेक इंडिया की जो बात की तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई और दरअसल इसके शुरू करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था कि क्योंकि भारत एक श्रमिक प्रधान देश है, क्योंकि अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है और एक बड़ा जो लेबर है उसके लिए कोशिश हुई कि हम सर्विस सेक्टर है या फिर दूसरे सेक्टर से जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पर मेक इन इंडिया एक प्रोडक्शन हब बनाया जाए ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हो उसको बाहर भेजकर एक तरीके से वो इस कोशिश ये थी कि विदेशी कंपनियों को हम या तो FDI लगे या विदेशी कंपनियां यहाँ के एस्टेब्लिश करें, यहाँ प्रोडक्शन करें सामान का और वो फिर हम एक्सपोर्ट हो। तो इसको लेकर काफी हद तक सरकार को इसमें मदद भी मिली, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और इसके साथ ही घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी था इसका उद्देश्य। इसके अलावा युवाओं को, यूथ को लगातार इससे रोजगार मिल रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है और इंडस्ट्री से लेकर तमाम वो सेक्टर्स जो है मेक इन इंडिया से सीधा हम देख रहे हैं। आज अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो लगातार वहां पर स्वदेशी जो है जो अलग अलग चीजें बनाई जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से डिफेंस सेक्टर में काफी खर्च किया गया है ताकि जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया को बूस्टअप किया जाए। तो ये एक कोशिश है कि यहाँ पर उन उत्पाद को बनाकर और एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बने और दूसरा कि इससे अपने जो GDP है, देश की GDP है, अर्थव्यवस्था है, उसको एक तरीके से एक बूस्टअप मिले। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके।
1: जी हाँ, भारत में निर्माण, भारत के लिए विकास और दुनिया के लिए अवसर, ये इसका फायदा है। तो बात थी मेक इन इंडिया की। और राजेश भाई, अगर हम समय की तरफ देखें
0: बिल्कुल, तो घड़ी कह रही है कि अब
1: कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। तो सभी ग्राम संसार सुनने वाले भाई बहनों को राम राम, राम, राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। अब से कुछ ही देर में यानी शाम को 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 एडी को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिका आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगली चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:05 हुए।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, इस कार्यक्रम के जरिए हम सब खेतीबाड़ी की नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, चाहे वो नई तकनीक हो, फसल प्रबंधन की बात हो, बागवानी, पशुपालन या सरकार की किसान हितैषी योजनाएं ही क्यों ना हो।
4: और प्रतिमा, देखिए आज हम बातचीत करेंगे सब्जियों के सुरक्षित प्रबंधन, तोड़ाई से भंडारण तक। साथ ही हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर।
3: साथ ही हम जानकारियां भी देंगे, जैसे कृषि सलाह, मौसम और आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के भाव के बारे में। साथ ही लोकगीत भी सुनवाएंगे। तो पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर।
4: जलवायु परिवर्तन के सामने खेती को मजबूत, टिकाऊ और अधिक उत्पादक बनाने की एक पहल जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि को मौसम और जलवायु के बदलावों के प्रति सुरक्षित और लचीला बनाना, साथ ही मिट्टी और नमी के संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना।
3: जी हाँ, और मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग और उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग, जल संरक्षण और जल दक्षता, कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देना।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, इसीलिए जल प्रबंधन के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद अधिक फसल के जरिए जल उपयोग की दक्षता भी बढ़ाई जाती है। साथ ही सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का आंकलन करना भी इस मिशन का उद्देश्य है।
3: इस मिशन में एकीकृत कृषि प्रणाली, फसल के साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी आदि को जोड़कर किसान की आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, पानी और जैव संसाधनों का टिकाऊ उपयोग।
4: और प्रतिमा, हम हमेशा कुछ नए नए विषयों पर बात करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है सही आहार, और सही और संतुलित आहार के लिए जरूरी होती हैं साग सब्जियां। लेकिन अच्छी साग सब्जियां हमें तभी मिलेंगी जब उनका सही उत्पादन होगा।
3: बिल्कुल, और सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तोड़ाई से भंडारण तक, ये बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि पूरे वर्ष जब किसान भाई बहन सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं रजनीश, जिनका भंडारण करना बहुत जरूरी होता है ताकि वर्ष भर वो उपलब्ध हो सकें। आज का हमारा विषय भी यही है, सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तोड़ाई से भंडारण तक।
4: और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीएस तोमर, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
5: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनका देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है, और उसी तरीके से जो हमारी सब्जी फसलें हैं उनका भी महत्व रहता है, लेकिन सब्जी फसलों की जो भंडारण क्षमता होती है वो कम होती है, जिसके कारण किसान उसको भंडारित नहीं कर पाते, उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या किसान भाइयों को जानकारी देना चाहिए?
6: देखिए, मैं दो तीन बातें इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगा
5: जी,
6: कि जो शाकीय फसलें हैं जिनको हम सब्जी फसलें भी बोलते हैं, इनकी जो भंडारण क्षमता है

0: वो दूसरी फसलें हैं जैसे दलहन है, तिलहन है या धान्य फसलें हैं, उनकी अपेक्षा कम होती है। और गौरव की बात यह है कि भारत दुनिया में दूसरा बड़ा सब्जी उत्पादन का देश है और इसमें हमारे किसान भाई उत्पादन करने में बहुत परिश्रम करते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो जो उपभोक्ता तक पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने में उसका काफी नुकसान होता है और उस नुकसान की जो मात्रा है वो कई देशों की जीडीपी नहीं है जितना नुकसान हमारा होता है। 20-25 साल पहले तो ये नुकसान की दर 25 से 40% होती थी सब्जी फसलों में, लेकिन वैज्ञानिक शोध, किस्मों के विकास, भंडारण क्षमता का विकास देश में पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सभी सरकारों ने इसको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए कटाई के उपरांत होने वाले नुकसानों को कम करने की दिशा में प्रयास हुआ। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, हम पोषण सुरक्षा की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भाई हमने खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन हमें पोषण सुरक्षा भी प्राप्त करनी है और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी आहार या साग सब्जियों का हमारे भोजन में बहुत बड़ा योगदान उभर के सामने आता है क्योंकि इनसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ये मिलते हैं जो हमारे छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और सभी प्रकार की आयु वर्ग के लोगों के लिए ये एक वरदान है। इसलिए हमारा ये नुकसान उत्पादन के बाद कम से कम हो तो इससे हमारे संसाधनों में उनका बचाव होगा, उपभोक्ता को ताजी बेहतर सब्जी मिलेगी और हमारा पोषण सुरक्षा पे भी जो सरकार का ध्यान है उस पे योगदान होगा। तो अब बात आती है कि भाई ये जो नुकसान होते हैं कारण क्या हैं और उन कारणों को हम किस प्रकार से निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि भाई हमारा जो ब्रीडिंग करना है, हमें ऐसी किस्मों का विकास करना होता है जिनमें कटाई के उपरांत अपने आप सुरक्षित रहने की क्षमता लंबे समय तक रहे और बहुत सारी फसलों में इस प्रकार के प्रयास हुए हैं जिनकी भंडारण क्षमता का विकास हुआ। चाहे आप उसमें भिंडी का नाम लें, चाहे करेले का नाम लें, लौकी का लें, प्याज और आलू, लहसुन, शकरकंद लें या हमारी और दूसरी फसलें हैं, इन सब में भंडारण क्षमता के अनुरूप कार्य किया गया या उनकी उत्पादन जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उनका विकास किया गया ताकि उसमें कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को कम कर सकें। उसमें मैं प्याज, आलू, लहसुन ये तीन ऐसी सब्जी हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैदा होती हैं, भंडारण में जाती हैं और इनका उपयोग भी बहुत होता है। तो इनमें वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण आज हमारा आलू का जो सड़ने का दर है या इसमें स्प्राउट आ जाता है या मीठापन आ जाता है और दूसरा प्याज फूटना शुरू हो जाती है, स्प्राउट आता है, श्रिंकेज होता है, तो भंडारण क्षमताओं के विकास उसमें सरकारों का योगदान है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया और वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्मों का विकास किया जिनमें कटाई के उपरांत भंडारण के दौरान में जिसमें नुकसान कम होता है, श्रिंकेज कम होता है, लॉस कम होता है, PLW, तो ये किस्मों का विकास भी है। ऐसे रसायनों की पहचान की गई जिनका खड़ी फसल में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करने के बाद उसमें भंडारण में लेके जाते हैं तो उससे हमारा नुकसान कम हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक या जो दवाएं प्रयोग करते हैं इनका भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
0: निश्चित रूप से ये माना जाता है भंडारण में अगर हमें होने वाले नुकसान को कम करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना कि खेत में जो उत्पादन हो रहा है वो उच्च गुणवत्ता का हो। जितनी इनिशियल क्वालिटी अच्छी होगी भंडारण के दौरान उसमें होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, बैंगन है, टमाटर है, अगर वो कीड़े से ग्रसित है तो वहां पे पानी जा सकता है, सफाई के दौरान ड्राई करने में कमी रह जाती है क्योंकि जब उनको वाश किया जाता है उसके बाद तेज हवाओं का बुछार उसमें की जाती, तेज हवा से गुजारा जाता है ताकि फालतू की नमी उसे हट जाए। लेकिन अगर उसमें कीड़े का आक्रमण है तो वहां पानी भर जाता है, फिर वो भंडारण में जाता है तो वहां पे वो सड़ना शुरू हो जाता है, 2-4 आसपास के टमाटर हैं उनको खराब कर देता है। इसी तरह से बैंगन में होता है, ऐसे ही दूसरी फसलों में भी होता है। तो ये खेत में उत्पादन के दौरान भी हमें सुनिश्चित करना कि खेत से जो भंडारण के लिए उत्पाद जाए वो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। जैसे हम बात करें बैगन की, जैसे हमारे किसान भाई तुड़ाई करते हैं और तुड़ाई करने के बाद हम किसान भाइयों को बताते रहे हैं कि आप तुड़ाई करने के बाद फलों को छायादार जगह में ढेर लगाओ।
1: तुड़ाई का समय और तरीका ये भी प्रभावित करता है?
0: बिल्कुल करता है। तुड़ाई का समय अगर हम तेज धूप की अवस्था में, मतलब दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में तुड़ाई करते हैं जब तापक्रम सबसे अधिक होता है, तो ऐसे फलों को अगर हमने तोड़ करके सीधे बोरों में भर दिया उनको पैकिंग कर दिया तो उसमें हीट जो होती है वो इतनी होती है कि उससे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। जब उसका सांस लेने की दर बढ़ती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, तो उसके अंदर का जो पानी है वो श्रिंकेज होता है और जो फल 5 दिन तक बाजार के लिए सुरक्षित रहना है वो 3 दिन में ही खराब हो जाता है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाती है, ये भी एक नुकसान है। तो अब तुड़ाई का समय क्या है, हम किसान भाइयों को सिफारिश करते हैं भाई अगर तैयार बैगन है दूसरे दिन तीसरे दिन आप तुड़ाई करते हैं तो आप दोपहर के 3 बजे के बाद तुड़ाई शुरू करिए या प्रातः काल में सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तुड़ाई करिए। और तुड़ाई करने के बाद फलों को आप छायादार जगह पे जहां छाया हो, हवा हो, पंखा हो तो और बेहतर है, क्योंकि किसान खेत में पंखे तो होते नहीं लेकिन वहां पे पेड़ होते हैं, तो ऐसी जगह पे साफ जगह नीचे अच्छा उसमें प्लास्टिक डाल के या कपड़ा डाल के उनको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उनको 2-3 घंटे के लिए ऐसी जगह पे रखें ताकि उसकी जो लेटेंट हीट है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे शिमला मिर्ची हो, लौकी हो, तुरई हो, ये बात सब पे लागू होती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा हीट है वो डिफ्यूज हो जाएगी, हट जाएगी। तो जब उसके बाद उसको फिर श्रेणीबद्ध करेंगे, उसमें जो छोटे फल हैं, कई फल बड़े हो जाते हैं या कई फल कीटग्रस्त हो जाते हैं, उनको निकालते हैं। ये भी हमारे भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम बढ़िया गुणवत्ता का एक रूपता का फल भंडारण में लेके जाएंगे कटाई के बाद, तो उसका धीरे धीरे होने वाला जो श्रिंकेज है, PLW जिसको हम बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट, वो भी कम होता है और बाजार तक जाते जाते उसकी चमक दमक बनी रहती है और किसान को उसके 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम उसको ग्रेडिंग करने के बाद जब उसको हम पैकिंग करते हैं, अगर हम उसको पानी में से डुबो के निकाल दें, एक हम कई बार कहते हैं कि भाई फलों को लाए तोड़ के और सीधा जितना बोझ है उसको ट्यूबवेल होती है, पानी होता है, पानी चलता रहता है, उसमें 5 से 10 मिनट के लिए गट्ठर को उसमें डाल देते हैं तो उसकी जो हीट है वो निकल जाती है, हीट निकल जाती है, उसके बाद उसको छायादार जगह में फैला के रख देते। ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई अपने खेत में अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और उससे निश्चित रूप से भंडारण क्षमता में प्रभाव पड़ता है।
1: कई चीजें हैं डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर अलग तरीके से तुड़ाई होती है, आपके बैंगन है, लौकी है, कद्दू, ये तो बेलदार उसमें लगते हैं, तो इसकी कटाई होती है कि जिससे उसके जो बेल है उसको भी प्रभावित ना कर सके, क्या इसकी जो तुड़ाई का तरीका है?
0: बिल्कुल,
1: तुड़ाई फल खराब होने,
0: ये कई बार जो हमारे श्रमिक तुड़ाई करते हैं तो झटके से तुड़ाई करते हैं
1: जी,
0: जब झटके से तुड़ाई करते हैं तो खास तौर से बेल वाली सब्जियां हैं या टमाटर भी हैं, उनकी या तो शाखाएं टूट जाएंगी या फल का डंठल उससे हट जाएगा। बैगन के अंदर जो चमक दमक है उसके डंठल के साथ है, उसके ऊपर लगे कैलिक्स के पास है
1: जी।
0: टमाटर में वो अगर रहेगा तो उतना शानदाई है उसका, हालांकि किसी किसी किस्म में वो अटैच रहता है और उससे भी आकर्षण बढ़ता है, फल लाल होगा और उसके ऊपर कैलिक्स जो अटैच है वो हरा रंग का रहता है, लेकिन ज्यादातर किस्में ऐसी हैं कि जो बिना कैलिक्स के ही होती हैं, लेकिन बैगन में कैलिक्स जुड़ा होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू को प्रभावित करता है। उसकी कटाई जो है ज्यादातर हम देखते हैं किसान भाई खेतों में अपने हाथों से तुड़ाई करते हैं, और हाथ से तुड़ाई करते हैं बैगन में, मिर्ची में, किसान भाई या महिलाएं जो विशेष रूप से काम करती हैं वो हाथों में कोई कपड़ा भी नहीं बांधती ताकि उनके हाथों में के जो पत्तों से लगने वाली जो रोएं हैं वो उनकी स्किन के संपर्क में ना आए, तो वो सावधानी से काम नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई 5 रुपए का हमने बचत कर लिया। तो अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो कपड़े के ऐसे थैलियां बनाई जा सकते हैं जो तुड़ाई करते वक्त किसान भाई उसको यूज कर लें और उसको चाकू से काटें या स्केटियर से काटें, मतलब कटर से काटें
1: जी।
0: भिंडी तोड़ने के लिए विशेषकर कई चीजों का विकास, क्योंकि भिंडी में सबसे ज्यादा चुनौती आती है, लाल पकी मिर्च होती है जब उसकी तुड़ाई करते हैं तो उसमें बहुत चुनौती आती है कि वो पंजेंसी होती है और वो जो है हाथों के लग जाती है तो जो श्रमिक काम करते हैं खेत में उनको बड़ा ईचिंग होता है, अनहाइजीन हो जाता है, तो ऐसे में कटर का इस्तेमाल करते हैं। कटर में हमें जैसे लौकी के ऊपर है, लौकी का डंठल कम से कम 2 से 2.5 इंच की ऊपर से कटाई करनी है, ऐसे ही करेले में करनी है और कद्दू में भी हमें 1 इंच की ऊपर से कटाई करनी है, हमें ऐसे झटके से तोड़ना नहीं है, तोड़ते हैं तो उसका जो रस होता है, ऊज होता है, वो निकल जाता है और वो सूखने के बाद लाल हो जाता है, तो फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे सीताफल हो या हमारी ककड़ी हो, खीरा भी है, तो ये सावधानी हम रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि किसान बहुत तोड़ता है लौकी के विशेष रूप से या सीताफल जहां ज्यादा उपज होती है तो तोड़ करके फेंकता है, जगह जगह ढेर बनाता है फिर इकट्ठा करता है। इससे क्या होता है, जब हम तुड़ाई करके फलों को ऐसे फेंक के खेत में इकट्ठा कर देते हैं तो मिट्टी लगती है, उसमें चोट लगती है, ब्रूजिंग होती है, बाद में वो वहां से काला पड़ जाता है। तो बाजार में ऐसा फल जाएगा तो उसका मूल्य भाव

0: कम मिलेगा, पहले मंडी में उसका मूल्य भाव कम मिलेगा, मंडी में सस्ते दरों पर फिर उपभोक्ता उसको लेने में, कुल मिलाकर के तुड़ाई किस प्रकार से करें वो हमारा काफी हद तक इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसमें नुकसान ना हो।
1: बहुत से किसान भाई मशरूम की भी खेती करते हैं, तो उसकी चुनाई कैसे?
0: मशरूम एक बहुत ही स्पेशल क्रॉप है जिसमें हमारे अधिकतर किसान निरंतर जो लोग करते हैं उनको इस चीज का अनुभव है कि हमें बटन का साइज कितना होना है और किस अवस्था पे तोड़ना है, क्योंकि मशरूम तो सुरक्षित आकृतियों के अंदर है तो उसमें तुड़ाई के समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुड़ाई का कटाई का तो समय, क्योंकि वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर है तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बटन का बाजार के मांग के आधार पर तैयार हो गया, तो मटर को भी बड़े जेंटली निकाला जाता है। अगर बहुत फोर्स के साथ निकाल दिया तो क्या होता है कि उसके साथ जो छोटे बटन्स हैं वो भी निकल जाते हैं, उससे किसान को नुकसान होता है। तो उसमें भी हम ये किसान भाइयों को बोलते हैं कि भाई आप जब तैयार बटन है उनको निकालते हैं तो वहां आप ऐसे नुकीली चीज का इस्तेमाल करिए, कटर का इस्तेमाल करिए, ताकि आप उसको सरफेस से काट सकें, आपका भार में भी कमी ना हो और जो साथ में दूसरे बटन्स ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जब फसल तैयार होनी शुरू होती है ये हर 5-6 दिन के बाद या तीसरे दिन इसकी तुड़ाई होती रहती है। बटन तैयार हुए निकाले और छाया में रखे, फिर उसको वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करके उसका फिर पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, और तब वो कोल्ड कंडीशन में ही जो हमारी रेफ्रिजरेटेड वेन है उसी से ही बाजार के लिए लेके जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब अब बात करते हैं पैकिंग के, क्योंकि पैकिंग करने से भी इनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है।
0: निश्चित रूप से पैकेजिंग की हालांकि काफी सुधार हुआ है, पहले हम देखते थे अब से 20 साल 30 साल पहले किसान भाई अपनी सब्जियों को ज्यादातर गट्ठर बनाते थे,
1: बोरियों में भर के
0: बैंगन लौकी बोरियों में भर के आते थे और बोरियां भरी और धड़ाम से फेंक दी और उसका चिंते गए, गाड़ी में भरते वक्त ऊपर चढ़ रहा आदमी उनको लगा रहा तो उसे बड़ा नुकसान होता था, उसे गुणवत्ता खराब होती थी, भंडारण क्षमता भी उससे खराब होती थी। तो अभी क्या विकास हुआ, इसमें मैं विकास ही कहूंगा कि वो जो जूट वाले बोरे थे या गट्ठर का सिस्टम आज ऑलमोस्ट पूरे देश में बंद हो गया, अब उसका स्थान ले लिया प्लास्टिक के बैग्स ने और क्रेट भी आए, और उन दोनों का फायदा क्या हुआ कि करेट किसान जब लेके आता है तो उसे दोबारा मंडी में ला करके फिर खाली करेट ले जाने का मानसिक दबाव बढ़ता है या खर्चा बढ़ता है
1: जी।
0: तो किसान उस करेट सिस्टम से भी हट गया, हट करके वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स आ गए, तो वो लौकी है, तुरई है, भिंडी है, करेला है, आप देखेंगे पूरे देश की सारी सब्जियां जूट के बैग में नहीं आती, कपड़े के गट्ठर में नहीं आती, करेट में कुछ आती हैं। मशरूम आएगा वो करेट में ही आएगा, टमाटर करेट में आएगा, क्योंकि वो डेलिकेट चीज है, अगर वो ऐसे बोरों में भर के भेजेंगे तो वो सारी का सारा नुकसान होने की संभावना। तो पैकेजिंग में आज प्लास्टिक का बड़ा रोल है, प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक की करेट्स, तो किसान उसको 10 किलो की 15 किलो की 20 किलो की करेट जो आसानी से हैंडल होती हैं और उनको इस प्रकार से रखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जब करेट रखी जाती है तो फल दबते नहीं है, उसमें फलों के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ा। तो ये जो विकास हुआ हमारा पैकेजिंग में, चाहे वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स हैं या हमारी प्लास्टिक की कैरेट हैं, इन्होंने हमारे लॉस हैं। हमने कई अध्ययन किए, PhD करने के बाद मुझे 2.5 साल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एस के राय काम करते थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो हम नींबू में, अंगूर में, संतरे में, किन्नू में, हमने कई ऐसे और आलू प्याज में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में काम करते थे, तो यही हम अध्ययन किया कि बोरों में भर के रख दिया, जूट के ऊपर बोझ करते गए, करेट में रखा, तो करेट में रखा तो कम से कम 8-10% हमारा नुकसान कम हो गया। तो इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का अगर फायदा लेते हैं तो उसके हमारे कटाई के उपरांत जो नुकसान होते हैं उनकी मात्रा में कमी आती है, गुणवत्ता बेहतर बनी रहे।
1: तो डॉक्टर साहब अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जो सब्जियों में पोषण ह्रास कम से कम हो तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, एक तो जो हमारे उपभोक्ता हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको तो मैं कहूंगा कि अपने जो पत्तेदार सब्जियां विशेषकर उनका अपने आप स्वयं उत्पादन करें, अपने खेत में उत्पादन करें, ट्यूबवेल गार्डनिंग करें, और ताजी सब्जियों का पालक है, धनिया है, मिंट है, मरुआ है या साग सरसों है, ये चीजें, चने का साग है, हालांकि शहर के लोग भी कर सकते हैं, किचन गार्डन के रूप में कर सकते हैं, अपने गमलों में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप अगर छत है या बालकनी में कम से कम पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि न्यूट्रिशन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, इनको उगा सकते हैं और उगाया जा सकता है, कठिनाई होती है लेकिन उनका जब स्वाद आता है तो एक विशेष अनुभव होता है, गुणवत्ता युक्त सब्जी हमें खाने के लिए मिलती है।
1: जी डॉक्टर साहब आपने आज काफी विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से सब्जियों का प्रबंधन किया जाए और उसका कटाई और भंडारण के बारे में जानकारी दी, और निश्चित तौर पे इससे किसान भाई फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सब्जियों का सुरक्षा

0: चित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक।
1: और प्रतिमा देखिए, जानकारी तो हमें मिल गई है और अब सुनते हैं जयवीर की आवाज में ये रागिनी।
2: हे रे मैं जानू मेरा राम।

0: अभी आप सुन रहे थे जयवीर की आवाज में रागिनी। और देखिए रजनीश, ये इस तरीके की जो रागिनी होती हैं कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति को भी इंगित करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कृषि की बातों के साथ साथ हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। और अब हम जान लेते हैं मौसम का हाल।
0: बिल्कुल। और देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगर वर्षा की बात करें तो बारिश का कोई अनुमान नहीं है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा।
1: ये तो रहा मौसम का हाल। और अब जान लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है।
0: और साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। साथ ही हमारे किसान भाइयों को सलाह है, इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों की निगरानी करते रहें।
1: और प्रतिमा, अब बात कर लेते हैं कि आज आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के क्या भाव रहे।
0: सब्जियों में आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा 15 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम और प्याज का मूल्य रहा 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं टमाटर की बात करें तो ये रहे लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो। और अगर हम कुकुम्बर यानी खीरा की बात करें तो इसका मूल्य रहा 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: फलों के भाव भी बता देते हैं। सेब का भाव रहा 100 से 120 रुपए किलो, वहीं केला बिका 25 से 30 रुपए किलो। अमरूद का भाव है 65 से 70 रुपए प्रति किलो और वहीं पपीते का भाव चल रहा है 30 से 35 रुपए प्रति किलो। तो ये तो थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव।
0: और रजनीश, देखिए हमारे कार्यक्रम में तमाम जानकारियां भी शामिल होती हैं और इसीलिए हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे किसान भाई बहन अपनी फीडबैक यानी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं।
1: हमारा ईमेल है feedback@gmail.com।
0: तो किसान भाई बहनों, सही जानकारी, परिश्रम, सही समय पर किया गया कार्य हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट भी देता है।
1: तो इसी मुस्कुराहट के साथ हम अपने किसान भाई बहनों से लेते हैं विदा। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:35 होने वाले हैं। आइए लुफ्त उठाते हैं चंद गजलों का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली गजल मिताली और भूपेंद्र सिंह के युगल सुरों में।

अभी आपने सुना मिताली और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गज़ल अभिजीत दामोदरन की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल, और इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: रात के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृह मंत्री अमित शाह

0: मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, नालियों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे।
1: नजफगढ़ की 7 अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से 10 अन्य विकास कार्य पहले से प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से नजफगढ़ की कॉलोनियों में सड़कें बेहतर होंगी, जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ हजारों परिवारों का जीवन और सुगम होगा।
2: दिल्ली की रीडेवलपमेंट होने से लोगों का जीवन जो है सुविधाजनक होगा। आने वाले समय में ये रजिस्ट्री की फीस भी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लगेगी। एक एक व्यक्ति को अपने मकान का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा।
1: वहीं मीडिया से बातचीत में परवेश साहिब सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 843 करोड़ रुपए की लागत से कुछ विकास कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं कुछ कार्य अलग अलग चरणों में जारी है।
3: आज 843 करोड़ रुपए के काम या तो हो रहे हैं या भी होने वाले हैं। हर जगह पर अच्छी सड़क, अच्छी ड्रेन, नालियां, गलियां, ये सारी सुविधाएं अभी होने वाली हैं।
1: उन्होंने क्षेत्र में शुरू हुए विकास परियोजनाओं को लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनीश शुक्ला।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास और दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। इसी संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनिंदा क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ साथ नई दिल्ली की विशिष्ट विरासत और पहचान को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सज्जन सिंह यादव ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान जल आपूर्ति, नालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन, नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य, सेफ्टीज, सफाई मशीनों की तैनाती और यमुना के पुनर्जीवन सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि आवश्यक सुविधाएं उनके क्षेत्र तक पहुंचें। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे श्रमिकों को पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी दिहाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा।
4: हमारे मजदूर भाई बहन जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की एक सुविधा देंगे। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने इस काम को जनता की सुविधा के अनुसार पूरा प्लान किया और आज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या लेबर चौक पे पाए जाते हैं, ये सारी वैन हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन हम देंगे। ऐसी 13 वैन चलेंगी और वो उन जगहों पे जाएंगी जहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना काम करते हैं।
0: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि इन मोबाइल वैन्स के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
5: ये वैन उनके कार्य स्थलों पर जाएंगी और वहीं पर इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी किया जाएगा। किसी भी हमारी श्रमिक बहन भाई से संबंधित योजना उनके लिए अप्लाई करने का काम भी इन्हीं वैन के माध्यम से हो जाएगा और उनकी जानकारी देने का काम भी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली

0: से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। नीदरलैंड्स और जर्मनी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में भागीदार देशों के रूप में शामिल हैं। ये आयोजन भारत और विदेश के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और युवाओं के साथ साथ वैश्विक जल पक्षकारों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत जल प्रबंधन में वैश्विक विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सक्षम बनाना है। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन और सभ्यताओं का आधार है। उपराष्ट्रपति ने इसके विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में भारत में नीदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि जल सहयोग भारत नीदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
4: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 96 घंटे में 17 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें 8 मामले वाणिज्यिक मात्रा और 9 मामले मध्यम मात्रा से जुड़े हैं। पुलिस ने लगभग 45 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक अन्य मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के आवासीय परिसर से 10 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नकली दवाओं के माध्यम से लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेबीज एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है।

0: इसलिए रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विभाग के अनुसार जांच में सामने आया है कि जब्त वैक्सीन का संबंध कानपुर की एक एजेंसी से है। 120 नमूने जांच के लिए कस्टडी में लिए गए हैं, वहीं बाकी 361 यूनिट और खरीद संबंधी चालान जब्त किए गए हैं। मामले में वैक्सीन की आपूर्ति और पूरे गिरोह की जांच जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने राजधानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों को मिल रहे नोटिस से संबंधित मामलों का जवाब दिया है। श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जानकारी के अभाव की स्थिति में निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उससे आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाता को अपने दस्तावेजों या विवरण से जुड़ी कमी को स्पष्ट करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले मतदाता 30 सितंबर तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के समक्ष अपना जवाब दे सकते हैं।
1: कोई भी नागरिक को, कोई भी वोटर को अगर ये लगता है कि उसका नाम SIR प्रक्रिया से छूट रहा, तो उसको पूरा चांस भी दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा करके नोटिस का जवाब भी दे। 29 अक्टूबर तक ये पूरा स्क्रूटनी चलेगा, 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद भी अगर किसी का नाम नहीं आता है तो भी वो अपना नाम, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में आज विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गैंडों की 5 शेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है 5 शेष गैंडों की प्रजातियों को संरक्षित रखें। इसके अंतर्गत गैंडों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, शिकार रोकने और गैंडों के सींगों के अवैध व्यापार पर नकेल कसने का आह्वान किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि राजधानी में आज से नमो सेवा की अनकही कहानियां अभियान शुरू किया जा रहा है। ये अभियान दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1250 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं और आइए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए श्रोताओं, गीतों के संगीत में सफर की शुरुआत करती है फिल्म परदेस के इस गीत के साथ सोनू निगम की आवाज़ में।

0: परदेस फिल्म से सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, हमराज फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म बेवफा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मलिका। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म जीत से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

आप सुन रहे थे जीत फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत सनम बेवफा फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मलिका में आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल सुरों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का एक कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर समाप्त होता है। तब तक ले मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम

0: देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडु ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में, कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच the rich and diverse

0: कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार मिला रही है।
3: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
4: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
5: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
3: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जैम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medal tally to 7. men's badminton team and wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
4: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन योर स्टेट, टेल अस व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू विल मेक इन इट। योर डेस्टिनेशन विल बी सेलेक्टेड एंड वील हैव द नेक्स्ट राउंड ऑफ NFA इन द सेलेक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
2: At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saab Phalke Award. Mammootty, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. We have a report.
5: In a historic ceremony held against the grand backdrop of Statue of Unity in Ekta Nagar, Gujarat, President Draupadi Murmu honored a total of 92 awardees from the film industry across the country. Legendary actor Anant Nag was honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award for the 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema spanning over 5 decades. In the feature film section, the political thriller film Article 370 bagged the Golden Lotus Award for the Best Feature Film. Director Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantra Veer Savarkar, while Nag Ashwin Singareddy's science fiction film Kalki 2898 ED won the award for the Best Popular Film providing wholesome entertainment. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Trophy for the Tamil movie Amaran. The Telugu film 35 Chinna Katha Kadu took home the Best Children's Film honor. In the acting categories, the Best Actor in a Leading Role Award was jointly presented to veteran actor Mammootty for Brahmyugam and Karthik Aryan for Chandu Champion. Yami Gautam won the Best Actress in a Leading Role Award for her performance in Article 370. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Speaking at the ceremony, legendary actor Anant Nag thanked everyone who supported him throughout his acting journey.
6: I am very lucky to got this highest award in films, Dada Saheb Phalke Award, at the hands of Srimati Murmu ji, and I am very grateful all the people who have been with me throughout these 55 years of being an actor. This award does not belong to me alone. It also belongs to every producer, director, dialogue writers, songwriters who have worked with me tirelessly. The award belongs to millions of people who have opened their hearts and minds to my characters over the last 5.5 decades.
2: This is Akashwani giving you the news.
0: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
2: India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
7: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression

0: and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: A depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh, South Odisha coast and is likely to intensify into a deep depression. Due to the weather system, Odisha is witnessing heavy rain with extremely heavy rainfall expected in isolated areas. We have more from a correspondent.
2: The state government has deployed 33 ODRAF teams, kept cyclone and flood shelters ready and directed authorities to monitor vulnerable areas. Schools have been closed in Khordha, Puri, Jagatsinghpur, Ganjam and Gajapati, while Malkangiri schools will remain closed till Thursday. Ferry services between Satapada and Jahanikuda in Chilika have also been suspended till Friday as a precaution. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: The Indian Meteorological Department IMD has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said that the national capital will witness mostly clear skies with no rain. On to sports now. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue reasserting its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Games, thrashed Sri Lanka by 147 runs in the final at Nisin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Ushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-finals tomorrow. In Wushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60-kilogram event. She secured a 5-0 win over Chu Man Sin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumanish Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano today. Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for the year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saab Phalke Award, Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty receive Best Actor Awards, India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029, Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Udaan scheme. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. And at the Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medals tally to 7. And that is all in the news at 9. Good night.
3: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ रखा है। आइंदा 2 रोज के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है, जिसके बाद तमगों की कुल तादाद 7 हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया है कि सिनेमा भारत की वसी सकाफती गुनागुनियत की अक्कासी करता है और यह मुख्तलिफ जबानों, इलाकाई नुक्ते नज़र और जामे कौमी उमंगों को मरबूत करने के एक पुल के तौर पर काम करता है। गुजरात के एकता नगर में तारीखी 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों और फिल्म साजों को भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली तख्लीकी तआवुन के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क के मुश्तरक ख्वाबों और समाजी सफर के इजहार में एक कलीदी रोल अदा करता है।
4: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
3: तख्लीकी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फ़रोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
5: गुजरात के एकता नगर में मुजस्मा इत्तेहाद के अजीम शान पस मंजर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर के कुल 92 अवार्ड याफ्तगान को एजाजात से नवाजा। सरकर्दा अदाकार अनंतनाग को 5 दहाइयों पर मबनी भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली फिल्मी सफर के लिए 2024 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल मिला। सरकर्दा अदाकार ममूती को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मुश्तरक तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गैर फीचर फिल्म जुमरे में मराठी फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोजा तकरीब में आबो हवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नेदरलैंड और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकतदार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैनुल अक्वामी इश्तराक को फरोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मुअसर बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोभा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निपट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार पर जोर दिया।
6: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
3: नायब सदर जमहूरिया ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कसीर फरीकी और कसीर रुखी तरीक़ेकार की जरूरत है, ताकि तकनीकी इख्तरा, माकूल पॉलिसी, साइंसी मालूमात, मकामी तजर्बात और कम्युनिटी की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली के सबब

0: बारिश की सूरत हाल ज्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज्यादा बारिश और ज्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश ना होने से निपटने के लिए तरीक़ाकार की जरूरत पेश आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को ज़खीरा करना और मौसर आबपाशी की पानी की बचत के जामे तरीक़ेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को महफूज और माकूल पीने का पार साफ पानी फराहम करने के लिए अहदबस्ता है। उन्होंने कहा कि पानी एक मुश्तरका वसीला है, लिहाजा सबके लिए पानी की यकीनी फराहमी भी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में भारत में नैदरलैंड की सफीर मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि पानी की बचत भारत नैदरलैंड कलीदी शराकत दारी का एक अहम सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का इरादा किया है। तर्जुमान ने फजाई हमलों में जान गंवाने वाले शहरियों के तई ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर कि पाकिस्तानी मुसल्ह फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुसलसल अहदबस्ता हैं, जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में कार्रवाई और पुख्ता आज़म का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को इससे पहले कि दुनिया उनके कहे पर यकीन करे सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मुअसर कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात की तिजारत के खिलाफ ये कहते हुए सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है कि मुनशियात मुल्क और दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की मुनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के तहफ्फुज़ और भारत को मुनशियात से मुबर्रा करने के लिए 2029 के लिए एक नक्शेराह तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने के लिए मुनशियात से मुबर्रा भारत का हदफ इंतहाई अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के जरिए लोगों की जिंदगियों में अक्सर तब्दीली लाई जा रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के जरिए किस तरह इस नजरिए को हकीकत में तब्दील किया गया।
1: अगस्त 2016 में शुरू किया गया हुकूमत का ई मार्केट प्लेस GEM मुल्क में सरकारी खरीद के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ये प्लेटफॉर्म बेचने वालों और खरीदने वालों को एक मुश्तरक ऑनलाइन प्लेस तक लेकर आता है। 2023 में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने पर बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि GEM पोर्टल ने किस तरह छोटी सनत के मालिकान और रेड़ी पटरी लगाने वालों को हुकूमत की खरीदारी के अमल में शामिल होने के लिए बाइख्तियार बनाया है। छोटी बहुत छोटी सनतों, खवातीन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और दीगर फरोख करने वाले अफराद की शमूलियत से GEM मुल्क में डिजिटल सरकारी खरीदारी की पहुंच में मुसलसल इजाफा कर रहा है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अगले मरहले के तहत एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तोसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपैड्स तामीर।

0: करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थीं, जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई हैं और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज़्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदेह फजाई सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस तकरीब में एरोडोम डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया और उड़ान रूट की बोली के अगले मरहले के लिए स्कीम दस्तावेज जारी किए गए। गेंडे के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक सींग वाले गेंडे नहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ़ में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिल सताइश हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने कहा है कि कौमी राजधानी खत्ते के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीत कर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर ख्वातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में मेज़बान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तजारत को ख़त्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक,
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम मनी टॉक Now we bring a discussion on strengthening global trade ties, India's push for new free trade agreements. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
3: Namaskar and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lake. Today we are discussing a major shift in India's trade strategy, the push to deepen global ties through new free trade agreements. To unpack what this means for exports, jobs and growth, we are joined by economic analyst Dr. S.P. Sharma. A warm welcome to Money Talk, Dr. Sharma.
4: Thank you.
3: Dr. Sharma, the India-New Zealand FTA enters into force on October 20th, 2026. In one line, why is this deal strategically important for India right now?
4: Yes, India's FTA with New Zealand, which is now to be implemented from 20th October, is a unique FTA, I would say, because they have provided 100% market access to us. and that is opening more than

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: भारत की प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा और उपचार पद्धति को पूरी देश दुनिया में प्रसारित करने के मकसद से हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और बीते वर्षों में सरकार की बड़ी सफलता रही है कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद जिस तरह से प्रसारित हुआ है उसमें भारत सरकार ने जो पहल की है, मंत्रालय ने जो पहल की है, उस वजह से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति को एक नई पहचान मिली है। तो आगामी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव। बहुत स्वागत है सर और बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी को समय देने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम मनाने जा रहे हैं, किस तरह से ये विशेष है इस बार?
3: इस वर्ष हम 23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं और उसके लिए भी हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, स्वस्थ अच्छा जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए। तो ये इस साल की हमारी थीम है और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं और लगभग 150 से ज्यादा देश ये आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
2: मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बीते वर्षों में

0: आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक आधार दिलाने में या साक्ष्य का आधार दिलाने में सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, कुछ इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, आयुर्वेद ने जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहचान आयुष को आयुर्वेदा को दिलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। 2023 से इसके ऊपर काम चल रहा है और 23 से लेके आज तक WHO के साथ में हमने 2 ग्लोबल समिट भी वहां पर किए हैं कि वहां पर दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। पिछले ये साल दिसंबर में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें लगभग 127 कंट्रीज से लोगों ने उसको सहभागी हुए थे और लगभग 27 मंत्री लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। तो उसके माध्यम से हमने ग्लोबल पहचान साक्ष्य के आधारित देने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे आज पूरे देश में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हमारे हैं और अच्छे तरह से भी वहां पर फुटफॉल है, लोग वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं और आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी हमने 43,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर वहां पर हमने अभी तक प्रसारित किए हैं और एम्स के साथ इंटीग्रेटिव रिसर्च ने आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत काम हमने अभी तक कर चुके हैं।
0: निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का जो एक दृष्टिकोण है वन नेशन वन हेल्थ, इसके तहत देखा गया है कि जो गांव में स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेकर बड़े अस्पतालों तक अब आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। तो किस तरह से ये पूरे देश भर में स्वास्थ्य लाभ की एक बड़ी पद्धति के रूप में ये उभरी है और लोगों को इसका लाभ मिला है?
1: ये देखिए, हमारा जो एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के माध्यम से देते हैं। तो आज प्राथमिक स्तर पर जो है रूरल एरिया में हमारे मैंने 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां पर आयुर्वेदिक और आयुष के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को सस्ता और सुलभ उपचार वहां पर मिल रहा है और आयुष को मुख्य धारा स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के लिए रोकथाम और उपचार दोनों वहां पर सशक्त हुए हैं। आयुष उपचार को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने पर भी हमारा विचार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो है ही, उसके साथ सभी लगभग PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतना ही नहीं एम्स तक सभी जगहों पर आयुष के विभाग खोले गए हैं और वहां पर हमारे आयुष के डॉक्टर बैठकर आयुष के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।
0: अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं या पद्धति है उसको लेकर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय मानक या गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, तो इसको लेकर दुनिया भर में दूसरी पद्धतियों के मुकाबले आयुर्वेद के प्रति कैसे भरोसा बढ़ा है, इस पर कुछ आप कहेंगे?
1: अभी तक हमारे आयुष मंत्रालय ने फार्माकोपिया मानक और आयुष वर्टिकल पर 50 से अधिक लैब टेस्टिंग को अनिवार्य हमने किया है। आयुष मार्ग को भी हम बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे आज 150 से अधिक देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों पर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग 9 से 10 गुना तक इस 12 साल में बढ़ चुका है।
0: भारत ने अपने जो पारंपरिक ज्ञान और रिसर्च को लेकर जो नए कदम उठाए हैं तो उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, शोध के आधार पर रिसर्च को लेकर?
1: अब देखो, रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है और रिसर्च सुरक्षा से हमने युवा शोधकर्ताओं को भी उससे जोड़ने का काम किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 4 लाख से अधिक फार्मूले को पेटेंट होने से हमने उनको अभी तक बचाया है। ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 1,000 करोड़ तक इंक्यूबेशन फंड शुरू किया है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी पारंपरिक ज्ञान के शोधों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है और इससे हमारे युवाओं में शोध, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी एक नया जोश आया है।
0: सरकार की मंत्रालय की हेल इन इंडिया पहल या जो मेडिकल टूरिज्म की पहल है, इसमें आयुर्वेद को किस तरह से प्राथमिकता मिल रही है, कैसे भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है इस फील्ड में?
1: ये देखिए, भारत का जो मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू ट्रैवल, आयुष वीजा और निर्यात प्रोत्साहन परिषद के जरिए हम आयुर्वेद उत्पादकों को ग्लोबल ब्रांड उनको हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक आयुष

0: बाजार को 23 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर दो गुना करने का लक्ष्य भी हमने रखा है।
1: हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसमें जो एक आयोग का भी गठन किया गया है और उससे कैसे अब जो युवा हैं वो आयुर्वेद को एक करियर के तौर पर अपना रहे हैं और कैसे इससे आगे आने वाले समय में एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी जो आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सामने आएंगे।
0: यानी कि हमारे मंत्रालय के अंदर ही हमने NCISM का गठन वहां पर किया है। अभी हम लगभग 750 आयुर्वेद कॉलेज में पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुख उसमें बनाया गया है। नीट के माध्यम से पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। इससे युवाओं के लिए शिक्षण, अनुसंधान, वेलनेस, टूरिज्म और वैश्विक प्रैक्टिस में हजारों नए करियर के द्वार खोले गए।
1: प्रधानमंत्री जी का मंत्री जी जैसे कि विजन है कि घर घर तक जो पारंपरिक आहार है वो पहुंचे, तो उसमें आयुष मंत्रालय या हमारा आयुर्वेद किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है जिससे कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली में जो पारंपरिक आहार है उसकी गुणवत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो।
0: अभी जो हम देखते हैं कि जो अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो गैर संचारी रोग या बीमारियां जो बढ़ रही है उसका मेन कारण जो है कि खान पान और हमारे लोगों की दिनचर्या, तो उसके लिए भी हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि आयुष आहार को हमने प्रमोट किया है कि अच्छा आहार लेने से और दिनचर्या अच्छे रखने से बहुत सारी जो BP, शुगर, मानसिक तनाव ये जैसी बीमारी के ऊपर हम नियंत्रित कर सकते हैं और लोगों का और युवा पीढ़ियों का भी स्वास्थ्य हम उसके माध्यम से अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड में खासतौर पर डिजिटल सेवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में आयुष की डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है?
0: हमारे आयुष मंत्रालय ने अभी तक आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज तक 5 करोड़ से अधिक नागरिक को घर बैठे हमने उनको परामर्श दिया है। डिजिटल तकनीक जैसे AI की मदद ने आयुर्वेद को लोकल गांव से ग्लोबल तक बढ़ावा देने का काम भी हमारा मंत्रालय कर रहा है।
1: बिल्कुल, अंत में आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है आयुर्वेद इसमें, और कैसे भारत का जो एक निर्माण चल रहा है उसमें आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है?
0: ये देखो, आने वाला जो समय है वो सही मायने में उपचार का नहीं है, वो रोकथाम का समय है।
1: जी बिल्कुल,
0: दुनिया इलनेस से वेलनेस की ओर मुड़ रही है और आयुर्वेद ही जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे बचाव का सबसे सशक्त समाधान आयुष में है। स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या से ही होकर जाता है। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान को स्वीकार कर रही है और यही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: मंत्री जी बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी के साथ आपने अपना समय निकाला और इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आपने विशेष बातचीत हमारे साथ की,
0: धन्यवाद।
2: भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेद पद्धति के महत्व और विश्व स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही नई पहचान पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट।
3: भारत की 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न और सशक्त अंग बन चुकी है। वर्तमान में सरकार एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का कायाकल्प कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 6400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में 12,200 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोगों को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच के माध्यम से अब तक 50 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जहां आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के अनुसार अब आयुष उपचारों को बीमा

0: में शामिल किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता कर कैशलेस इलाज की राह आसान की है। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए देश भर में आयुष कॉलेजों, स्नातकोत्तर सीटों और शोध पहलों का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसे योजनाओं के माध्यम से जड़ी बूटियों की सुरक्षा और प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुवादिनी AI प्लेटफॉर्म की मदद से अनुसंधान पत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति दिला रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत ने भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन और नए संस्थानों की घोषणा से ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम से स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश निरंतर अग्रसर है।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: मंथन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 10 बजने को हुए अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
2: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना

0: व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोडमैप तैयार किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
2: तटीय और दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश जारी है क्योंकि डिप्रेशन तट के करीब आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोरापुट, गजपति और गंजाम के लिए कल और परसों के लिए और कलाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी के लिए इस गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड वार्निंग जारी की है। राज्य सरकार ने ओडराफ की 33 टीमें तैनात की है। चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा है और अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण 4 रजत के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
4: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
3: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saab Phalke Award. Mammootty, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such instances of aggression

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। इसके अंतर्गत आज आपने श्री जितेंद्र सिंह की आवाज में गजल सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे विदुषी उमा गर्ग का राग मिला मियां मल्हार में गायन। आपको तबले पर संगत दी दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर साथ निभाया पारोमिता मुखर्जी ने और सारंगी पर साथ दिया एहसान अली ने। तो आइए सुनते हैं विदुषी उमा गर्ग का राग मियां मल्हार में गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विदुषी उमा गर्ग का राग मिया मल्हार में गायन। आपको तबले पर संगत दी दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर पारोमिता मुखर्जी ने और सारंगी पर रहे साथ एहसान अली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को

0: हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: स्पीकिंग एट द इवेंट, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड दैट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स विल बी टेकन टू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Sahib Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade poses a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, heads of states and union territories in New Delhi today, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said, "Government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. प्राइम

0: मिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे मेट श्री श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी ऑफ श्री पेजावरा अदोक्षजा मठा उडुपी अलोंग विद अदर डिग्निटरीज इन न्यू दिल्ली. ऑन द ओकेजन ऑफ मिस्टर मोदी अनवील द लोगो ऑफ द बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी. इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर मोदी सेड द लाइफ ऑफ डिवोशन लर्निंग एंड सर्विस of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people. He said the various initiatives taken under the run up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal in the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishan. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-final tomorrow. In Wushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60kg event. She secured a 5-0 win over Chu Mansin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarterfinals in the men's 55kg preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano today. The Indian Meteorological Department has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. रात्रि के 11:10 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ, आपके साथी, आपकी दोस्त सविता. आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. और आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे ही विषय पर, एक ऐसे ही टॉपिक पर जो हम सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ है. जिंदगी ऐसी जहाँ पर हम कई रिश्तों के साथ चलते हैं, कई जज्बात हमारे भीतर होते हैं और कुछ संवेदनशील रिश्ते भी हमारे साथ रहते हैं, कुछ संवेदनाएं हमारे साथ रहती हैं. और कभी कभार लगता है ना कि इन संवेदनाओं के साथ रिश्तों को चलाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि हर बार हम किसी के संवेदनाओं को उतने बेहतर तरीके से समझ सकें शायद ये मुमकिन नहीं होता. ऐसे में होता क्या है, अरे होता कहीं कुछ नहीं है भाई, बस जनाब इतना सा हो जाता है, कुछ थोड़ा सा रूठना बनाना हो जाता है. तो आज इसी पर बात करेंगे कार्यक्रम में. पहले कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं आशा भोसले की आवाज में इस गीत के साथ है.

जी हाँ, रुचना। रुचना कितना खूबसूरत सा शब्द लगता है ना। लगता है इसके भीतर कुछ थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा प्यार है और बहुत सारा अपनापन है। क्योंकि जनाब, रूठते अक्सर हम उन्हीं लोगों से हैं जिन पर हमारा सबसे ज्यादा हक होता है। अगर कोई

रूठे ही ना तो मनाने की मिठास का एहसास कैसे होगा। इसलिए रूठते रहिए, मनाते रहिए और मानते भी रहिए। भाई रूठना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनाने वाला आपको मनाता रह जाए और आप रूठे रूठे ही हमेशा रह जाए।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कार्यक्रम फिल्म संगीत का सुन रहे हैं और मन की बात, तो हम भी आपके जानते हैं कि आपको इंतजार रहता है अपने प्यारे प्यारे से संदेशों का, और हमें भी इंतजार रहता है क्योंकि इन संदेशों के जरिए आप अपना प्यार हम तक भेजते हैं और इससे पता चलता है कि आप हमसे रूठे हुए नहीं हैं। फिलहाल जो पहला संदेश हम तक आया है वो आया है, ये लिखकर भेजने वाले हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा, और साथ में है इनके सोनिया और साईराज और विशाल सपकाल। इसके अलावा हमारे पास ये जो संदेश पहुंचा है ये पहुंचा है साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर का, और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। हमने शामिल कर लिया। हमारे पास संदेश आया है हमारे ये जो रेगुलर लिसनर हैं ये हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी, और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और दूरियों से मोहब्बत कभी कम नहीं होती, अगर दिल में वफा हो तो आंखें नम नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कहा, और आपने एक और बात लिखकर भेजी है हमें कि जब हम रूठने मनाने की बात कर रहे हैं, हम कार्यक्रम में आज रूठने के विषय पर बात कर रहे हैं, तो आपने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि रूठा भी उसी से जाता है जिसके साथ अधिकार होता है, और ये रूठना मनाना ही ये बताता है कि रिश्ता अभी तक कायम है, ये कोई औपचारिकता नहीं है। वाकई रूठना मनाना ऐसे ही चलता रहना चाहिए, और आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजे बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुरा से आज़ाद अली अनवर, जवाना परवीन और अब्दुल्ला परवीन है हमारे साथ। ये यवतमाल से हमें लिखकर भेजा है जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता ने, और कह रहे हैं कि हम संघ मित्रा श्रोता संघ से बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित रमेश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डुमराव बिहार से हैं हमारे साथ डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और साथ है दानिश अंसारी, और साथ है हमारे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यदंत आर्य और परमानंद आर्य। सरीमपुर बक्सर से हैं राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हैं श्रोता हमारे जो कि हमें रघुवीर नगर दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू संदेश के साथ। अब हमारे साथ ये जुड़े हैं अस्तलपुरा मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी और साथ है तनवीर आलम अंसारी, और कह रहे हैं कि आकाशवाणी है जो वो सबसे नंबर 1 पर है, मनोरंजन की सबसे बड़ी चीज़ हमें आकाशवाणी लगती है।

बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो संदेश के साथ जुड़े हैं छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद बागबान, अखलाक अहमद, आमना, आसमा, राबिया, परी, आशु, जूही, सदफ, आरजू और समस्त बागवान परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदेश के साथ छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हैं राजेश साबे सा पाटिल और राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, टीडी मल्होत्रा, रितेक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, तो कालका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा और ये बिट्टा बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेशा हमारे पास अगला आया है, ये हमें लिखकर भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित्त आहूजा का। संदेश के साथ जुड़े हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता और जयश्री महत्रे। संदेशा हम तक पहुंच रहा है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का। संदेश के साथ अब जुड़े हुए हैं यमतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। संदेशा हम तक पहुंच रहा है वणीखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। तो ये संदेशा हम तक पहुंचा है करनपुर राजस्थान से, लिखकर भेजने वाले हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मीनू, शिव सेठी, करनपुरी, इस्माइल और पूरा टुटेजा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, राम देवरा से दिनेश सिंह चौहान और ये हमें संदेशा मिला है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। आप हमारे बिल्कुल रेगुलर लिसनर, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका संदेशा मिलता है। बबलेश जी, आप लगातार आप अपना प्यार हम तक भेजते रहिएगा। संदेश के साथ जुड़े हैं गांव कल्याण से मलका जिला भटिंडा पंजाब से हैं ये अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया और परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। संदेशा हमें मिला है श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका का। ये संदेशा हम तक पहुंचा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हिमकेश साहू, करण राहुल और चंपा साहू। संदेश के साथ ये नांदेड़ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हमारे साथ शंकर लाल जसवाल, गणेश लाल, शुभ प्रसाद जसवाल, अर्णव जसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जसवाल। संदेशा हम तक पहुंचा है ये पूरे अहमद भाई फूल वाले का एक और संदेशा हम तक पहुंच गया है। संबल कांकनेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और रुजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से जुड़ा हुआ है ये पूरा परिवार, जिसमें हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल। हमारे पास अगला संदेशा शिवाजी चौक कटनी से मिला है हमें, ये है अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप वर्मा, राजू, रजक, रजन, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या और उनके मम्मी पापा भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में हमें बस शामिल कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। और संदेशा हम तक ये पहुंचा है, लिखने वाले हैं भाई ये लिखा है हमें मुरादाबाद से मेराज अंसारी का, इनका संदेशा हम पहले ले चुके हैं। संदेश के साथ सतीश जी एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं, सतीश रनेजा जो कि चंडीगढ़ सिटी से जुड़े हैं। इन्होंने लिखा है कि जो रूठना मनाना होता है वो सच्चाई और थोड़ा सा धैर्य भी मांगता है, क्योंकि रूठने मनाने में अक्सर जब हम सच्चाई और धैर्य से काम नहीं लेते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक कप चाय या बिना किसी शर्त के सॉरी कह देना बड़े बड़े रूठने वालों को पल भर में पिघला देता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, हम भी यही मानते हैं। नीरज कुमार दल्लूपुरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो संदेश के साथ अब हमारे पास ये स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज का संदेशा मिला है। ये हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से संदेशा भेज रहे हैं। नरेंद्र ज्योतिलिया उषा और ये हमें दिल्ली नांगलोई से संदेशा भेज रहे हैं। संदेश के साथ अब एक छोटा सा विराम लेते हैं और गीतों की तरफ चलते हैं।

बिल्कुल सही, जब कोई रूठ जाए तो उसे मनाने का ये तरीका भी है कि भाई उसे अपने साथ बंद कर लिया जाए और दरिया में फेंक दे चाबी, ताकि ना कोई बाहर निकल सके ना उसे कोई देख सके, क्योंकि रूठना मनाना इंसान के जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो बहुत जरूरी भी हो जाता है। जब रिश्तों में कुछ नई गर्माहट लानी हो तो किसी किसी बात पर कभी रूठ जाना भी अच्छा होता है, और जब मनाने वाला कोई ऐसा हो कि उसके मनाने से लगे जैसे कि सारी दुनिया अब कदमों में आ गई है, तो भाई बात ही कुछ और होती है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: बात हो रही है रूठने मनाने की, और रूठना मनाना किसी भी रिश्ते में गर्माहट का एक बड़ा ही अच्छा तरीका होता है। जब कोई रूठता है तो पता चलता है कि हमारे जीवन में उस व्यक्ति की अहमियत कितनी है, और जब मनाता है तो पता चलता है कि वो अहमियत अब कितनी और बढ़ चुकी है। और कहते हैं ना कि चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान भी कभी कभार आपके रूठे हुए साथी को मना सकती है। तो आप

कभी ये भी कोशिश करके देखिए कि जब कोई हमसे रूठा हुआ है तो उसके सामने कुछ मंद मंद सा मुस्काइए। अगर मंद मंद मुस्काने से वो बात करने लग जाए तो यकीन मानिए वो जो रूठना था वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। वो रूठा नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसे प्यार से मनाएं। और हमेशा ऐसा ही क्यों हो कि भाई के जो फीमेल

वाकई जिंदगी में जब कोई रूठ जाता है तब हमें पता चलता है असल मायने में उसकी अहमियत कितनी है, और खासकर जब वो रूठा हुआ व्यक्ति कभी ना आने के लिए हमसे अलग हो जाता है। फिलहाल तो हम अलग नहीं हो रहे हैं, फिलहाल आपके बारे में बात कर लेते हैं। हमें ये जो संदेश मिल रहे हैं ये हमें बड़े ही रोमांचित करते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है मानेवाड़ा रोड नागपुर से, लिखकर भेजा है सुशीला भटकर और अनिकेत ने। संदेश के साथ अब जुड़े हुए हैं हमारे साथ ये हैं भाई हमारे दोस्त। ये हमें कहाँ से कर रहे हैं, ये संदेशा हमें सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का मिला है। शांति नगर सोनीपत से संदेशा आया है, और कह रहे हैं कि आदरणीय सविता जी सादर नमन, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में रूठना मनाना तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इससे इससे अपना ही एक अलग आनंद महसूस होता है। आपकी रात्रि और जीवन बहुत मंगलमय हो। कोटि कोटि धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी प्यारी बात के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा, जिंदगी में एक सिक्के के दो पहलू हैं, जब रूठना मनाना होता है तभी जिंदगी का फलसफा हमें समझ आता है। फजल का पंजाब खेड़ा से ये पूरा परिवार हमें लिखकर भेज रहा है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालिनी तिवांशी वाणी, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार जो कह रहा है कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये हमारे पास संदेशा मिला है ज्योत गुप्ता का, जो कि थाना बक्सर से हमें संदेशा भेज रहे हैं। आशीष, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता हमारे साथ है कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ ये गाँव नलोई तहसील सिवाना मंडी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश। अब हमारे पास ये संदेश आया है, ये हमें दिल्ली से मिला है। राजेंद्र जाटुलिया का संदेश हम तक पहुंचा है, और अब इसी बात के साथ के आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल तो हम आपको गीत सुनवाते हैं, लेकिन एक और संदेशा कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से अलीन मोहन, अनिल मोहन जी के साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। सूरतगढ़ राजस्थान से भी हमारे पास भूपेंद्र मिशान और प्रभजोत मिशान और बीबी जानविका का संदेशा मिला है। ये राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार जी का फरांसी जिला हिसार से संदेशा हम तक पहुंच गया है। जल्दी जल्दी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये चलते चलते संदेश हम तक पहुंचे हैं। महसूल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरहत रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी और हम सब बहनों को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इरशान हुसैन अंसारी और मेराज अंसारी, मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से संदेशा भेज रहे हैं। तो संदेशे के साथ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद साहिद हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल हम कार्यक्रम में अब ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि भाई अब हम आपको कार्यक्रम का एक अंतिम गीत सुनवा ही देते हैं। आप सभी के संदेश हमें मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, और ये संदेश हमारा हौसला अफजाई करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप संदेशों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए कुछ और संदेश कार्यक्रम में चलते चलते आ गए, ये भी ले ही लेते हैं कि मुझे रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद हैं और ये जो आप कार्यक्रम लेकर आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। एक जानकारी साझा करना चाहूँगा, हमारे कोलकाता में धर्मतला के न्यू मार्केट में एक पुराने पुरानी प्रसिद्ध पान की दुकान है। रात भर यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी जी जो है वो नजर आया करते थे। ये कोलकाता से हमें संदेशा मिला है राम बालक दास का, और इसके साथ अब ये संदेशा हम तक पहुँच रहा है रेखा बसंत सिन्हा, अजय गुप्ता और बेबी अनविका, तनुश्री गुप्ता का, जो कि हमें बेंगलोर से संदेशा भेज रहे हैं। नासिर शेख का भी हमें संदेशा मिला है, तो संदेशा हमें शिवानी चौकटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रजक, पूरे ताम्रकर परिवार का मिला है। गांव बिटोड़ा ये है तहसील मंगरूलपुरा, ये हमें पश्चिम विदर्भ से संदेशा मिला है। योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती, कविता, विशाल, कुशाल और श्याम गोविंद मस्के, गोपाल मस्के और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार दल्लूपुरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे पास ये गुन्नौर से आदिल कुमार, आदिल कमर
तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब इसी बात के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल सविता को कार्यक्रम करने की यहीं पर मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि और बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय मध्यरात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी है। रात्रि के 12 बजने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म जूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई गंभीर तनाव और चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना उनके लिए

0: मान की बात है और अमेरिका काफी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, अवैध प्रवासन रोकने और अपराध पर लगाम लगाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए की। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया। श्री ट्रंप ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने के समझौते में देरी का आरोप लगाया। भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 1 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Shri Shri Vishwa Prasanna Teerth Swamiji of Shri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi, along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Shri Vishvesha Teerth Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Shri Vishvesha Teerth Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को, प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का इतिहास ऐसे कई सितारों से रोशन है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ऐसे नगमे और कहानियां रची जो आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिनेमा जगत के एक बहुमुखी फनकार अख्तर रुमानी साहब के बारे में। तो आइए इस संगीत में सफर का आगाज करते हैं हमारे पहले नगमे के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। और क्या बात है, क्या खूबसूरत धुन थी। अख्तर रमानी साहब के बारे में बात करें तो उनका शुरुआती जीवन और कॉलेज के दिन बेहद दिलचस्प रहे हैं। अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्हें नाटकों का, थिएटर का और उर्दू भाषा व शायरी का बहुत गहरा शौक था। उर्दू पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनकी कॉलेज के दौर के दोस्तों में निर्देशक विजय आनंद, पार्श्व गायक महेंद्र कपूर और रेडियो की दुनिया की महान हस्ती अमीन सयानी साहब शामिल थे। 50 के दशक में उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया और अपनी कलम का जादू बिखरना शुरू किया। उनकी शुरुआत रेडियो प्रचार अभियानों यानी पब्लिसिटी कैंपेन्स और नाटकों से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा।

0: 50 के दशक के उत्तरार्ध में जब रेडियो पर बिनाका गीतमाला का दौर था, तब अख्तर रुमानी साहब ने अमीन सयानी साहब के साथ मिलकर कई फिल्मों के प्रचार अभियानों के लिए लेखन का काम किया। फिल्म हातिम ताई के गीतों ने उन्हें एक गीतकार के रूप में पहचान दिलवाई। कल्याण जी, आनंद जी, बी एन बाली और अन्य प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने कई यादगार गीत रचे। रुमानी साहब के लिखे गीतों में सादगी भी थी और गहराई भी। उन्होंने रोमांस से लेकर भक्ति और गंभीर नज्मों तक हर रंग में अपनी कलम चलाई। सफर को जारी रखते हैं इस अगले गीत के साथ।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: नहीं, कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं अख्तर रुमानी साहब की। जी हाँ, मशहूर लिरिसिस्ट, रचनाकार, जिन्होंने इतने खूबसूरत गीत और नगमे हमें दिए। उर्दू भाषा के साथ उनका लगाव सिर्फ फिल्मी गीतों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो गजल लेखन में भी बेहद माहिर थे। उनकी शायरी में एक खास किस्म का ठहराव और रूहानी एहसास हुआ करता था। उन्होंने गजलों के माध्यम से इंसानी जज्बात और मोहब्बत के कई छुए अनछुए पहलुओं को पन्नों पर उतारा। दोस्तों, अख्तर रुमानी साहब सिर्फ एक गीतकार ही नहीं थे, बल्कि 60 और 70 के दशक में उन्होंने संवाद लेखक और पटकथा लेखक यानी कि डायलॉग राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग के रूप में भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने उस दौर की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियों और संवादों पर भी काम किया था। राज खोसला और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ उनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही। मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और अजनबी जैसी फिल्मों की स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उनकी कलम का असर साफ नजर आता है।

सुरों का सफर नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है और आज हम बात कर रहे हैं अख्तर रुमानी साहब पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं सिने दुनिया के मशहूर लेखक और गीतकार। 70 के दशक में जब एक्शन और ड्रामा फिल्मों का दौर बढ़ा, तब अख्तर रुमानी के लिखे संवादों ने फिल्मों के किरदारों में जान फूंक दी। फिल्म दो रास्ते, नफरत, कबीला और चुनौती जैसी फिल्मों में उनका लेखन कार्य दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। एक लेखक के रूप में वे जितने सशक्त थे, उतने ही एक इंसान के रूप में सादे और जमीन से जुड़े हुए थे। संगीत में सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खास गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम, और अख्तर रुमानी साहब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनके पुरस्कारों और सम्मान की, तो अख्तर रुमानी साहब उन फनकारों में से थे जिन्होंने कभी पुरस्कारों की दौड़ में भाग नहीं लिया। यद्यपि हिंदी सिनेमा के व्यावसायिक दौर में उन्हें औपचारिक राष्ट्रीय या बड़े कमर्शियल पुरस्कारों की सुर्खियों से दूर रखा गया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के भीतर साथी लेखकों, निर्देशकों और श्रोताओं के दिलों में उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला। राज खोसला और शक्ति सामंत जैसे दिग्गज निर्देशकों का उन पर अटूट विश्वास ही उनके काम का सबसे बड़ा प्रमाण और पुरस्कार था। उनके लिखे डायलॉग्स और गाने आज भी उनके काम की उत्कृष्टता की गवाही देते हैं। चलिए सुनते हैं इस शो का अगला नगमा।

अख्तर रुमानी साहब ने मुंबई में ही अपने जीवन का एक बड़ा और यादगार हिस्सा बताया। 14 जुलाई 2015 को मुंबई में ही इस अजीम फनकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही वे आज हमारे बीच भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे नगमे और सदाबहार फिल्मों के संवाद हमेशा भारतीय सिनेमा के सुनहरे इतिहास में दर्ज रहेंगे। जब भी भारतीय सिनेमा के 60 और 70 के दशक के दौर का जिक्र होगा, अख्तर रुमानी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जिस फिल्म में उन्होंने अपने डायलॉग्स लिखे थे और फिल्म भी काफी हिट रही थी। आइए सुनते हैं ये गीत।

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अख्तर रुमानी साहब का फिल्मी सफर इस बात का प्रतीक है कि अगर आपकी कलम में सच्चाई और भाषा पर पकड़ हो तो आप सिनेमा के हर माध्यम चाहे गीत हो या संवाद में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। उन्होंने जितने भी गानों के बोल लिखे वे सीधे दिल में उतर जाते थे। समय तेजी से बीत रहा है और अब हम अपने इस खास शो के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला सुरीला गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सुरों का सफरनामा कार्यक्रम, जो समर्पित था हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और संवाद लेखक अख्तर रुमानी साहब की जिंदगी और उनके योगदान को। उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर और रुमानी साहब के संस्मरण पसंद आए होंगे। अब मैं कीर्ति आपसे इजाजत लेती हूँ। सुनते रहिए हमें AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर और मुस्कुराते रहिए। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको आज के इस अंतिम और खास नगमे के साथ।

0: इसी गीत के साथ सुरों का सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे। मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैनसेन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade poses a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and Union Territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Sri Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshara Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishan. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshbina Devi also

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म पतीता से, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत जो आप तक आने वाला है वो है फिल्म आर पार से। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत ओपी नैयर ने दिया था। आइए सुनते हैं गीता दत्त के स्वर में ये गीत।

और अब पेश है 1991 में आई फिल्म अलबेला से अगला गीत लता मंगेशकर, चितालकर व अन्य आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखा गीत है और संगीत सी रामचंद्रन ने दिया था।

आपका कोई दोस्त है, मित्र है, वो आपके लिए कोई कुछ काम कर दे, तो आप उसको क्या कहेंगे? धन्यवाद। और कोई आपके बहुत खास दोस्त है, तो आप उनको क्या कहेंगे जब आपके लिए वो कुछ काम कर दें, आपकी कोई सहायता कर दें? उनको भी आप दिल से धन्यवाद करेंगे, लेकिन मस्ती में आप कह सकते हैं कि एहसान तेरा है मुझ पर। तो समझ गए आप मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ? जी हाँ, फिल्म जंगली से आ रहा है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये खैर मजाक की बात है, पर हम इस गीत को सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के लिखे बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत फिल्म अमर प्रेम से आपको सुनवाने जा रहे हैं, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत आर डी बर्मन साहब का। आइए सुनते हैं, रैना बीती जाए।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: देखिए ना, अब रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटे, गाओ।

अब ये गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान ने इस गीत को लिखा था और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने वाले हैं, जो आपके और हमारे दिल की बात है। जी हाँ, बोल है अभी ना जाओ छोड़कर, फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी की आवाज और साथ में आशा भोसले। साहिर का लिखा गीत है, संगीत से पिरोया है जयदेव ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। हमारे अन्य कार्यक्रम आप सुन सकते हैं या लाइव न्यूज

0: मध्यरात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुएल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला

0: Ashes cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating hosts Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano yesterday. The Indian Meteorological Department has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 2:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। जी हाँ, और मिलकर हम आनंद लेते हैं ठीक 3 बजे तक। तो चलिए निकल चलते हैं इन गीतों के सफर पर और आनंद लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य, अनेक परछाइयां, एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी गजलें, और गजलों के इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक से बढ़कर एक गजल गायकों से। ऐसे ही एक गजल गायक हैं जिन्हें गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है, और वो हैं जगजीत सिंह। जी हाँ, आइए सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारी सी गजल जगजीत सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की मधुर आवाज में। आइए सुनते हैं ये दो गजलें उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल हरिहरन की मधुर आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे सबसे पहले भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 57। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू समाचार। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। ये समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। सुबह 9:30 पर समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का और 10 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 10:10 पर समय होगा कार्यक्रम आपकी पसंद का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 Women Heroes and Agri-Food Systems and Rural Development के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the President will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal Project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The President is on a three-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, President Murmu honored a total of 92 awardees from across the country. Prime Minister Narendra Modi met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adoshaka Matha Udupi, along with other dignitaries in New Delhi yesterday. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
5: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for the sovereignty, for their territorial integrity.
4: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada attended the stakeholder workshop in New Delhi yesterday, focusing on ease of doing business, opportunities arising from free trade agreements and ongoing trade-related reforms. Speaking at the event, Mr. Goyal emphasized the government's strategy to strengthen export facilitation through both physical and digital mechanisms. National Human Rights Commission Chairperson Justice V. Ramasubramanian has emphasized the need for greater collaboration among national commissions to promote and protect human rights. He made the remarks while addressing a statutory full commission meeting with representatives of the 7 deemed members of the NHRC in New Delhi yesterday. At the Asian Games in HI Nagyo, Japan, double Olympic medalist Manu Bhakkar and Tokyo 2020 silver medalist Mirabai Chanu will headline India's Day 4 campaign today with several medal opportunities in the offing. In shooting, Manu Bhakkar will compete in the women's 10-meter air pistol event alongside Suruji Singh and Isha Singh. The trio will compete in the team event and individual qualification this morning with the individual final scheduled later in the day. Weightlifter Mirabai Chanu will take part in the women's 49 kilogram final. India is already assured of medals in men's badminton and women's wushu. On day 3, the Indian women's cricket team clinched country's first gold medal of the games, defeating Sri Lanka by 147 runs in the final. The victory took India's medal tally to 7. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका

अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की

तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।